0: शुभ प्रभात। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तदनुसार 14 अगस्त 2026, आज दिन शुक्रवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। वन में उन्हें प्यास लगी। आनंद पास स्थित पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, लेकिन गंदा पानी देख आनंद पानी बिना लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झरने का पानी निर्मल नहीं है, मैं पीछे लौटकर नदी से पानी ले आता हूँ। लेकिन नदी बहुत दूर थी, तो बुद्ध ने उसे झरने का पानी ही लाने को वापस लौटा दिया। आनंद थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था, पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस लौटा दिया। कुछ देर बाद जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा, तो देखकर चकित हो गया। झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था। कीचड़ नीचे बैठ गई थी और जल बिल्कुल निर्मल हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन की दौड़ भाग मन को भी विशुद्ध कर देती है, मत देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से बैठा देखता रहे तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाती है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है।
1: जीवन सौरभ।
0: पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बारहट की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री नारायण व्यास जी से। इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9 बजे वागर्थ कार्यक्रम में आज हम कविता और सविता भार्गव का कविता पाठ सुनेंगे। सुबह 9:30 पर जैज संगीत समारोह की पर आधारित विशेष कार्यक्रम और सुबह 10:30 पर हिंदोस्ता हमारा कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी भीकाजी रुस्तम जी कामा के जीवन पर। और सुबह 11 बजे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में आज हम पंडित विनायक राव पटवर्धन के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 11:30 पर सुने स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 188 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इद्म, तनूनपात, इड, बहिर, देवी द्वार, उषा सनाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस। तीन देवियां हैं सरस्वती, इला, भारती, त्वष्टा, वनस्पति और स्वाहाकृति। छंद है गायत्री।
1: समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः सहस्रजित दूतो हव्या कविर्वह। हे सहस्रों शत्रुओं के विजेता अग्निदेव, देवों द्वारा तेजस्वी रूप में आज आप प्रदीप्त हो रहे हैं। हे क्रांतदर्शी, आप हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को दूत की तरह देवों तक पहुंचाएं। तनून पादृतम यते मध्वा यज्ञः समज्यते दधत सहस्रिणी ऋषः। स्वास्थ्य संरक्षक पूजनीय अग्निदेव सहस्रों प्रकार के अन्नों में प्राण तत्व को परिपोषित करते हुए यज्ञ भूमि में जाते हैं और वहां हविष्यान्नों में मधुर रसों का संचार करते हैं। आजुहुआनो न ईड्यो देवाम आवक्षि यज्ञियान अग्ने सहस्रसा असि। हे अग्निदेव, आप सहस्रों प्रकार की ऐश्वर्य संपदा के धारण करता हैं, अतएव हमारे द्वारा आवाहित किए जाने पर आप अनेक आदरणीय देवताओं सहित हमारे यज्ञ में पधारें। प्राचीनम बर्हि रोजसा सहस्र वीर मस्त्रणन यत्रादित्या विराजथ। हे आदित्यगण, प्राचीन काल से हजारों देवगणों के साथ आप जिस आसन पर विराजमान होते रहे हैं, ऐसे कुश के आसन को यजमान अपनी शक्ति से यज्ञ स्थल पर बिछाते हैं। विराट सम्राट विभ्वी प्रभ्वीर बहुवीश्च भूयसीश्च याह दुरो घृतान्यक्षरन। विराट तेजस्वी विभु प्रभु यज्ञदेव अनेक द्वारों से घृत की वर्षा करते हैं। सुरुक में ही सुपेश साधि श्रिया विराजतः उषा सावेह सीदताम। उत्तम स्वरूप वाली उषा एवं रात्रि और अधिक शोभा पा रही हैं। हे उषा और रात्रि, आप दोनों हमारे यहां यज्ञ में विराजमान हों। प्रथमा ही सुवाचसा होतारा दैव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामिमम। सर्वोत्तम प्रखर वाणी के प्रयोक्ता दिव्य गुणों से युक्त मेधावी होता हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। भारतीडे सरस्वती या वह सर्वा उपब्रुवे ता नश्चोदयत श्रिये। हे भारती, इडा और सरस्वती, हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप तीनों हमें ऐश्वर्य विभूतियों की ओर प्रेरित करें। त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून विश्वान समानजे तेषां नः स्फातिमा यज। त्वष्टा देव स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हैं, वही पशुओं के निर्माता हैं। हे त्वष्टा देव, आप हमारे लिए पशुधन की वृद्धि करें। उपत्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सृज अग्निर्हव्यानि सिस्वदत। हे वनस्पते, आप अपनी सामर्थ्य से हव्य पदार्थ उत्पन्न करें, तब अग्निदेव हव्य का सेवन करें। पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण समज्यते स्वाहा कृतिषु रोचते। देवताओं में अग्रणी रहने वाले अग्निदेव गायत्री मंत्र के उच्चारण से सुशोभित होते हैं, पश्चात स्वाहा शब्द के साथ प्रदत्त आहुतियों से वे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 188 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। बीते समय को बदला नहीं जा सकता, इसलिए पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। नए दिन का सकारात्मक सोच के साथ स्वागत करें और अपने काम की नई शुरुआत करें, तभी सफलता मिल सकती है।

हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तो परेशानियां कभी दूर नहीं होंगी। हमें दूसरों पर नहीं, अपने आप पर ध्यान देना होगा। अपनी तैयारी पक्की रखें, तभी परेशानियां हल हो सकती हैं।

सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही कुछ हासिल नहीं होता, असफलता से सीखकर काम करने से ही सफलता मिलती है।

साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। विद्वान व्यक्ति में दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करने का गुण होता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बदला लेने की भावना रखते हैं।

हमें सिर्फ भलाई के काम करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। सारी बुराइयां ठीक उसी तरह दूर हो जाएंगी जैसे बहते हुए पानी में कचरा किनारे आ जाता है।

जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे तब तक हल मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य कभी भी बिना काम के पूरा नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है।

जो व्यक्ति मुश्किलों से दुखी नहीं होता, सावधानी के साथ अपने काम करता है और दुखों को सकारात्मकता के साथ सहन कर लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 MHz पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम है महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग। आज का कार्यक्रम ठाकुर केसरी सिंह बारहट की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कृतित्व को समर्पित है।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की, जिन लोगों ने समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे विरले पुरुषों का नाम इतिहास में अमर रहता है। राजस्थान के चारण घराने से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि हुए थे केसरी सिंह बारहट। उन्होंने केवल अपनी वाणी और लेखनी से ही वीरता का वर्णन नहीं किया, बल्कि केसरी सिंह बारहट ने उस वीरता को अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। देशप्रेम के दूसरे कवियों की तरह उन्होंने देशभक्ति और आजादी के केवल गीत नहीं गाए, उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। उन्हें राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट और दामाद ईश्वरी सिंह ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केसरी सिंह बारहट आजादी के दीवाने और राष्ट्र चेतना के अमर गायक थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए उनका लालन पालन उनकी दादी मां ने किया। 6 वर्ष की आयु में केसरी सिंह की शिक्षा शाहपुर में महंत सीताराम की देखरेख में आरंभ हुई। 2 साल बाद कृष्ण सिंह ने उदयपुर में काशी से एक विद्वान पंडित गोपीनाथ शास्त्री को बुलवाकर उन्हें संस्कृत की शिक्षा भी दिलवाई। केसरी सिंह बारहट के अपने पढ़ने के लिए उनके पिता कृष्ण सिंह का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास भी उपलब्ध था। केसरी सिंह ने संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं, बांग्ला, मराठी और गुजराती का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। ज्योतिष, गणित और खगोल शास्त्र का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। कुछ समय बाद केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य करना शुरू किया, लेकिन प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने ये नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। केसरी सिंह बारहट का पक्का विश्वास था कि आजादी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है।

केसरी सिंह बारहट ने अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। उस समय राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज में राजाओं और राजकुमारों के लिए अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू कर रखी थी जिसमें ढलकर वे अपनी प्रजा और देश से कटकर अलग थलग पड़ जाएं। इसलिए उन्होंने सन 1904 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता की तरह अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई जिसमें राष्ट्रीय भावना की शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के माध्यम से केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान की आम जनता को सुशिक्षित, सुसंगठित और सुसंस्कृत कर देश को स्वतंत्रता दिलाने का एक भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया था। उनकी इस योजना में सामाजिक और राजनैतिक क्रांति के बीज थे। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ केसरी सिंह बारहट ने एक बिल्कुल ही नए विषय अक्षर के स्वरूप पर अपना शोध कार्य आरंभ किया था। अमेरिका जैसे देश लाखों रुपए खर्च करके भी इस विषय पर शोध कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि शाहपुरा जैसी छोटी रियासत में रहने वाले एक व्यक्ति के दिमाग में अक्षर के स्वरूप की शोध की बात कैसे आई होगी। बहरहाल केसरी सिंह बारहट रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल भी थे। उन्हें जब सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं तो राजस्थान में क्रांति का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला और अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को रास बिहारी बोस के पास भेज दिया। केसरी सिंह बारहट ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखीं। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। देश भर से राजा महाराजाओं को इस दरबार में आमंत्रित किया गया था। ऐसे दरबार का आयोजन अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे, साथ ही राजा महाराजाओं को सम्मानित कर उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की कूटनीतिक चाल भी इसमें शामिल होती थी। दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने सोचा कि इसमें बुराई ही क्या है, दरबार में ही तो शामिल होना है। वीरभूमि राजस्थान की कीर्ति इससे धूमिल हो रही थी। वो राजस्थान जिसके वीर सपूतों की गाथा इतिहास भी गाता रहा है, जिनके पराक्रम और राष्ट्र प्रेम पर अनगिनत कविताएं लिखकर देश भर में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाती थी, उस राजस्थान के लिए ये एक अपयश का विषय था। राजस्थान के क्रांतिकारियों को ये उचित नहीं लग रहा था कि महाराणा उस दरबार में शामिल हों, इसलिए उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सबने क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट को सौंपी। उस समय केसरी सिंह बारहट ने 13 चेतावनी के सोरठे लिखकर राजा को भेजे, जो चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें केसरी सिंह बारहट ने लिखा, पग पग भम्या पहाड़ धरा छाण राख्यो धर्म, महाराणार मेवाड़ हृदय बसियां हिंदरे, घना घलिया घमसाण राणा सदा रहिया निडर, पेखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। अर्थात भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाईं, फिर भी उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसीलिए आज मेवाड़ के महाराणा जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। महाराणा कभी किसी युद्ध से न तो विचलित हुए और न ही कभी डरे। ऐसे शूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हो गई है, ये समझ से परे है। इन सोरठों का प्रभाव ऐसा हुआ कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। केसरी सिंह बारहट की कलम ने उनकी अंतरात्मा को जागृत कर दिया।

केसरी सिंह बारहट ने सन 1910 में आमेर में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही वे इस कार्य में जुट गए थे। उन्होंने अपने दो रिवॉल्वर क्रांतिकारियों को दिए और कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा और रियासती और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। एक गोपनीय रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार ने कहा कि केसरी सिंह राजपूत रेजिमेंट से संपर्क करना चाह रहे थे। उनका संपर्क बंगाल के विप्लव दल से भी था और वे महर्षि अरविंद से बहुत पहले सन 1903 में ही मिल चुके थे। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी बोस से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था। केसरी सिंह बारहट पर ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल नाम के एक साधु की हत्या और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत और केंद्रीय सरकार का तख्ता पलट और ब्रिटिश सैनिकों की स्वामी भक्ति खंडित करने के षड्यंत्र रचने का संगीन आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। 2 मार्च 1914 को शाहपुरा पहुंचकर वहां के राजा नाहर सिंह के सहयोग से केसरी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे में केसरी सिंह बारहट को 20 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई गई और राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया। जेल में उन्हें पहले चक्की पीसने का कार्य सौंपा गया, जहां वे दाल और अनाज के दानों से क ख ग आदि अक्षर बनाकर अनपढ़ कैदियों को अक्षर ज्ञान देते और अनाज के दानों से ही जमीन पर भारत का नक्शा बनाकर कैदियों को देश के प्रांतों का सही ज्ञान भी कराते थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वो लगातार लिखते रहे। सन 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर केसरी सिंह बारहट सपरिवार वर्धा चले आए। वर्धा में उनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। वर्धा में ही केसरी सिंह बारहट गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे घनिष्ठता हुई। गांधी जी की सलाह पर ही उन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट ने हरिओम तत्सत के उच्चारण के साथ 14 अगस्त सन 1941 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य

अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी में हमने स्वाधीनता संग्राम सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बाराहट के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारतीय की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री पुरातत्वविद नारायण व्यास से। इनसे बातचीत कर रही हैं मनीषा चतुर्वेदी।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।

0: 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी, वरिष्ठ पुरातत्वविद, जिन्होंने लगभग 4 दशक भारतीय पुरातत्व को समर्पित किए हैं। वर्ष 1972 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े और 2009 में अधीक्षण पुरातत्वविद के पद से सेवानिवृत्त हुए। रानी की वाव, सांची, सतधारा, भीमबेटका सहित अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर आपके खोज, उत्खनन, संरक्षण और शोध कार्य हम सभी के सामने हैं। भारतीय शैलचित्रों के अध्ययन और संरक्षण में आपका विशेष योगदान रहा है। आपके पुरातात्विक जीवन को दिशा देने में आपके गुरु पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध, लेखन और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के माध्यम से आप ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हाल ही में आप पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, श्रोताओं को भी ये अनुमान है कि ये बहुत चिर प्रतीक्षित मुलाकात थी।
1: जरूर
0: जी। सर, आपके गुरु डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर जी का आपके जीवन और आपके कार्यों पर गहरा प्रभाव रहा है। उनके साथ काम करते हुए आपको पुरातत्व को समझने की कौन सी ऐसी दृष्टि मिली जो आगे चलकर आपके काम का पूरा आधार बनी?
1: इसके विषय में थोड़ा ये बताना चाहूँगा अपने बचपन की बात।
0: जी।
1: कि जब मैं छोटा था तो ड्राइंग वगैरह बनाया करता था, 9वीं 10वीं क्लास पढ़ता था, तो घर में कोई पेंसिल से या कोयले से जगह जगह ड्राइंग बनाता रहता था। तो उसे घर के लोग भी थोड़ा परेशान जैसे हो गए थे कि इतना काला पीला करता रहता है, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कुछ इन्हें लाइन दी जाए जिससे ये अपना काम कर सके। सौभाग्य से क्या, मेरे जो पिताजी हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उज्जैन में, उनके मित्र थे डॉक्टर वाकनकर जी। एक बार वो आर्य समाज में उन्होंने उनका व्याख्यान रखा वाकनकर जी का वैदिक सभ्यता पे, और मुझे भी साथ में ले गए पिताजी। जब समाप्त हुआ जब कार्यक्रम, तो वाकनकर जी से मिलाए और कहा ये मेरा पुत्र है नारायण, वो इसको ड्राइंग का बड़ा शौक है, बनाता रहता है किताबों में, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन हम चाहते हैं इसको एक लाइन मिल जाए।
0: जी।
1: तो वाकनकर साहब बड़े प्रसन्न, उन्हें कहा नहीं, मेरा यह भारतीय कला भवन उज्जैन में चलता है, आप इन्हें वहाँ भेज दीजिए। अगले दिन मेरे पिताजी और बड़े भाई साहब मुझे वहाँ ले गए और उनके कला भवन में भर्ती कर दिया। उसी दिन से जो मैं उसे जो मार्ग मिला, गुरु का मार्गदर्शन, वो आज तक मेरे पहले प्रत्यक्ष में था, आज अप्रत्यक्ष में भी है। तो मैं फाइन आर्ट सीखा करता था, ये 9वीं 10वीं 11वीं जो भी क्लास पढ़ता रहा, उसके साथ साथ में ड्राइंग की कोई परीक्षाएं थी, डिप्लोमा थे, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षाएं थी, वो पास करता रहा। परंतु जब उनके घर पे देखता था कि वो कई मूर्तियाँ पड़ी हुई है, कई सिक्के रखे हैं, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, तो मुझे उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ें हैं। मैं देखा करता था उनके सामने, तो वाकनकर जी ने देखा कि मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पूछा ऐसी क्या बात है। मैंने सर ये ऐसा है कि ऐसी चीज़ें देखते हैं बड़ी दुर्लभ दिखती है। तो बोले क्या करोगे तुम? मैंने कहा मैं भी इतिहास पढ़ना चाहूँगा। तो उन्हें ठीक है, तब तक मैंने बीए पास कर लिया उनके सामने किया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम एमए पुरातत्व में कर लो। वो वहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में एक क्लास लेने जाया करते थे, वो उत्खनन असिस्टेंट थे वहाँ पर एक्सकेवेशन के, तो उनके साथ में रह के कुछ सीखने लगा, एमए कर लिया पुरातत्व में। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तुम पुरातत्व का डिप्लोमा कर लो, तो दिल्ली से डिप्लोमा भी कर लिया। उसी समय क्या हुआ कि वाकनकर साहब को काम करना था भीमबेटका में।
0: जी।
1: मैं भीमबेटका की खोज उनकी की हुई है 23 मार्च 1957 को, ये लगातार जाते रहे वहाँ। फिर उनका यह मानना था कि इतनी बड़ी साइट है, जरूर आदि मानव की सभ्यताएं और अन्य अवशेष मिल सकते हैं। तो जनवरी 1972 में उन्होंने वहाँ उत्खनन प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी टीम बनाई, तो टीम में मेरे को सबसे पहले मेरे को लिया पुरातत्व के, क्योंकि मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी किया, एमए आर्कियोलॉजी किया, कुछ लोग और भी आए थे। जनवरी 1972 से ला के कई दिनों तक मैं उनके साथ भीमबेटका में काम करता रहा, उत्खनन भी करता रहा, उनके साथ सीखता भी रहा, वो कैसे रॉक पेंटिंग बनाए जाते थे, आदि मानव के पत्थर कैसे बनाए जाते थे, उनकी मैं ट्रेनिंग लेने लगा। तो उस कारण मुझे उन्होंने परफेक्ट कर दिया कि नारायण तुम जाओ, कहीं भी हार नहीं होगी तुम्हारी, खूब काम करो। इस प्रकार मेरी वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सर्विस भी लग गई और लगातार फिर काम करने लगा और वाकनकर साहब से मिलता रहा। तो उन्होंने मेरे काम को बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने यही कहा कि तुम सब काम करो, सेल चित्रों पर विशेष रूप से काम किया करो, जिसमें बहुत लोग कम काम किया करते हैं। तो मैंने वही किया, सेल चित्रों पर काम करना शुरू किया और जो आज तक मेरा काम उस पर चला आ रहा है, नई नई खोज होती है करती है। लेकिन सब ये मेरे को वाकनकर साहब का प्रभाव रहा कि मैं उनके मार्गदर्शन में इतना काम कर सका।
0: आपने जिक्र किया कि वाकनकर साहब के कारण ही पहली बार आप भीम बेटका से परिचित हुए। आपने उन शैलचित्रों को बहुत करीब से देखा है, उनका अध्ययन किया है, लेकिन एक आम आदमी, एक आम श्रोता शैलचित्रों के माध्यम से उस समय के मनुष्य के जीवन और उसकी सोच के बारे में क्या समझ सकता है आपके माध्यम से?
1: शैलचित्रों के विषय में थोड़ा ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो भारत में खोज हुई है शैलचित्रों की 1880 में हुई है, बनारस के पास में यानी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा स्थान है जो वहाँ पहले खोज हुई है, लेकिन धीरे धीरे उतना काम हुआ नहीं, लेकिन आज़ादी के पहले कुछ काम हुआ, आज़ादी के बाद वाकनकर साहब ने काम हुआ। तो क्या है कि आज हम लोगों के जो विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्याचल पर्वतमाला जो संसार में सबसे सुंदर और अच्छी सुदृढ़ और अच्छी क्वालिटी के इसमें पत्थर है, ऐसी पर्वतमाला है इस प्रकार की कहीं नहीं मिलती है। वो प्राकृतिक रूप से यहाँ आदिमानव के रहने के लिए शैलाश्रय भी थे, आदिमानव रहा करता था और यहाँ खाने पीने का शिकार का बड़ी सुविधाएं थी, तो शिकार किया करता था और रहता करता, और उनको जब अभिव्यक्ति होती थी धीरे धीरे कुछ समझ में आई तो अभिव्यक्ति को अपने व्यक्त कैसे करें, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, केवल एक चित्र के माध्यम से लोग समझा करते थे। तो उस समय उन्होंने शिकार करना कैसे शिकार किया करते थे, डांस कैसे किया करते थे, जानवर कौन कौन से होते थे, उनके चित्र वहाँ देखे और बनाना शुरू किया। जैसे गायों का या जानवर का झुंड जा रहा है तो उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वो उन्होंने उस समय जो उनका जो रंग था वो बिल्कुल प्राकृतिक था, आजकल जैसे रंग तो कोई समझते नहीं थे। तो वहाँ जो मिनरल कलर आसपास मिलते थे, जैसे गेरू है, तो गेरू विंध्याचल पर्वतमाला में बहुत मिलता है, जो मुरम होती है मुरम के साथ वो भी उसका एक फॉर्म होता है गेरू का, वो मिलने लगा, खड़िया मिट्टी मिलने लगी और बहुत से मिनरल कलर मिलने लगे। तो वो आदि मानव के लिए ये बड़े अच्छे रंग लगे और उसको पानी मिला के वो कलर बनाया करता था। तो प्रारंभ में कुछ मुरम से मुरम का पाउडर बना के बनाए थे, उसके बाद गेरू के बनाए, कुछ हरे रंग के मिनरल्स आते थे, यहाँ जमीन पर पत्थर निकलते थे कच्चा हरा होता था, उसके हरे रंग के बनाए, कुछ पीले रंग के बनाए, इस प्रकार के अलग अलग रंगों के बनाए। लेकिन उससे हमें तत्कालीन स्थिति की जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले यहाँ जानवर कौन कौन से होते थे। जैसे यहाँ गेंडा भी होता था, दो सींग वाला गेंडा, सिंगल सींग वाला गेंडा, हाथी है, भैंसा है, शेर है, और यहाँ पर तेंदुआ भी मिलता है, बाघ मिलते हैं, इनके सबको चित्र मिलते हैं। और विशेषता यह है कि यहाँ चीतों के भी चित्र मिलते हैं। 1952-53 के पश्चात चीते तो लुप्त हो चुके थे यहाँ, लेकिन उनके चित्र यहाँ थे। तो कई लोगों ने खोज की, मैंने उनको बताया कि रायसेन क्षेत्र में चीता बहुत होता था क्योंकि उनके शैल चित्र यहाँ मिले। तो इस प्रकार लोगों को हम जानकारी भी देते हैं, वहाँ गाँव में कैंप भी लगाते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं कॉलेजों में स्कूलों में जाके, और उनको शैल चित्रों के बारे में स्थानीय लोगों को और दूसरे लोगों को हम समझाया करते हैं कि शैल चित्र क्या होते हैं, एक मन की भावना होती है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कलाएँ हैं दो प्रकार की होती है, एक रॉयल आर्ट यानी राजकीय कला और दूसरी फोक आर्ट लोक कला। रॉयल आर्ट और ये राजकीय आर्ट जिसमें हम अजंता एलोरा या सांची का स्तूप है या मंदिर वगैरह ये सब उसमें आ जाती है जो राजा महाराजा अपने हिसाब से बनते, लेकिन लोक कला ऐसी होती है जो प्राचीन समय से चली आ रही, जो गांव में चलती है प्रचलित, तो उस समय भी चली आ रही थी, आज भी है और चलती रहेगी, जबकि रॉयल आर्ट होती नहीं। लेकिन जो लोक कला है आज भी हमें गाँव में देखने को मिलते हैं अलग अलग रूप में, स्वरूप थोड़ा बदल जाता, परंपरा वही हुई रहती है। लेकिन क्या है, जैसे एक क्षेत्रों में हम जब सर्वे करते हैं पहाड़ों में या शैलाश्रय देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, आम आदमी वहाँ के ये नहीं पता कि ये रॉक पेंटिंग है क्या है, वो इनको चुड़ैलों के दांते बोलते हैं
0: जी।
1: जैसे फीमेल घोष्ट होती है चुड़ैल, कि वो उनका ये कहना है ये चुड़ैलों ने चित्र बनाए हैं, ऐसी लोगों की धारणा है। तो लोगों के मन में भय भी रहता था, इस भय के कारण के वो चीज़ें सुरक्षित भी रही। तो वहाँ अभी भी हम लोग जाते हैं तो उनसे हम पूछते हैं राग सेल्टर कहाँ है या शैलाश्रय कहाँ है, तो वो समझते नहीं थे, तब तो वह चुड़ैल की दांत कहाँ देखने को मिलेगी, तो झट बताते कि भाई उस पहाड़ी पर जाओ, वहाँ बहुत सी गुफाएं हैं, चुड़ैल की दांत है, उसके अंदर दांते बोलते हैं, टोले बोलते हैं, ये जनभाषा में है। तो लोगों की उससे कोई धार्मिकता भी जोड़ रखी है, कुछ अपने पुरानी परम लोक कलाओं से जोड़ के इस प्रकार की उनकी कथाएं वहाँ जोड़ रखी है। वहाँ पर जो ग्रामीण जीवन संबंधित जो चित्र है वो मिलते हैं, लेकिन इन लोगों में जो कलाकार भी होते थे जनजातियों के जिन्होंने रॉक पेंटिंग बनाया, वो जो देखते थे वो बनाते भी थे
0: जी।
1: आज भी अभिव्यक्ति वैसी वैसे पहले भी होती, जैसे सेनाएं जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पहले आपस में राजमार्ग था, तो राजमार्ग रॉयल प्रोसेशन चलते रहते राजा महाराजाओं के, तो वो देखा करते थे रॉक पेंटिंग में उन्होंने उनको बनाया, कैसी सेनाएं जा रही है, कैसे घुड़सवार जा रहे हैं, कैसे सैनिक जा रहे हैं, कैसे उनको हाथ में हथियार है, लिख तो सकते नहीं, तो उन्होंने चित्रों के माध्यम से उन गुफाओं में बनाए, जिससे हमें पता चलता उस समय किस प्रकार की जो परंपराएं थी, ये युद्ध कैसे होते थे, उनकी जानकारी मिलती है। आज हमें देखने को खुदाई में अस्त्र शस्त्र मिलते जरूर है, लेकिन किस प्रकार प्रयोग करते थे वो हमें सेल चित्रों में देखने को सभी ओर देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस समय की जनजीवन किस प्रकार क्रियाकलाप होते वो हमें उसमें सब देखने को चीज़ें मिलती है।
0: आपकी बातें सुनते सुनते मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई हूँ और एक चीज़ सोच रही हूँ कि ईश्वर का कितना बड़ा योगदान होता है कि पहले आपने फाइन आर्ट आपका मार्ग था, फिर उसके बाद आप पुरातत्व में आए और शैल चित्रों पर आपका इतना काम है। सर तो मुझे लगता है कि आप फाइन आर्ट के कारण भी आपको अपने काम में शायद बहुत मदद मिली।
1: नहीं, मेरे को बहुत मदद मिली फाइन आर्ट की, क्योंकि मैं देखता था वाकणकर साहब को, खुद आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, सब थे, जहाँ जाते हाथ से स्केच बनाते थे, तो वो मेरे को वरदान मिला उनका कि मैं भी उनको देख के वो कैसे स्केच बनाते मैं भी बनाना सीख गया, मैं भी बनाता रहता। मैंने अपने जो थीसिस लिखी है पीएचडी के बाद जो डिलीट मैंने किया है वो रॉक पेंटिंग में किया है भोपाल क्षेत्र में, तो जितने ड्राइंग उसमें है वो मैंने अपने हाथों से ही बनाए। कई जगह मैं मूर्तियों का इनका काम करने जाता भी था, बाई चांस कैमरा खराब हो गया तो वो मूर्ति को बनाना या कौन आएगा बाद में, तो वही मूर्तियों की भी हाथ से ड्राइंग बना के अपने रिकॉर्ड में रखता था। ये सब मेरे को फाइन आर्ट से ये फायदा मेरे को
0: बहुत फायदा मिला। जी जी जी, शैल चित्रों के माध्यम से मानव सभ्यता की प्रारंभिक अभिव्यक्ति आपने बताया उसको, तो इन चित्रों का ऐतिहासिक महत्व सर आप कैसे देखते हैं? हम कैसे जाने कि उस समय के आदमी क्या करते थे? शैल चित्रों के अलावा पुरातत्व में ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम जान सकते हैं?
1: हमको शैल चित्रों से ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व है इसका कि हमें उस समय काल के बारे में जानकारी मिलती है कि आदि मानव के समय में वो लोग 10,000-15,000 साल पहले किस चित्र बनाते थे, वो किस प्रकार हुआ। हम प्रारंभिक जो चित्र देखते हैं हमें वो जानवरों के चित्र मिलेंगे, शिकार करते हुए मिलेंगे, हिरण है, तेंदुआ है, शेर है, जो मिलते हैं, लेकिन कई पुराने चित्रों घोड़े हमको देखने नहीं मिलेंगे। जब मनुष्य का विकास हुआ, इतिहास काल में आया, जब लिखना पढ़ना जान गया, सब घोड़े हमारे यहाँ होने लगे, तो घोड़ों के चित्र मिलने लगे, तो हमें लगा कि इतिहास का युग प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि एक हम डेटम लाइन हो जाती है कि उसकी एक सीमा बनती है कि उस सीमाओं से पहले जो चित्र बने वो हमारे आदि मानव के प्रारंभिक सोच के हैं, शिकार के हैं, नृत्य के हैं, जानवरों के हैं, लेकिन थोड़े जो बाद में जब आदमी विकसित हुए, जब कलाकारों ने जब चीजें देखी कि ये सेनाएं जा रही, युद्ध हो रहा है, तो वो बनाने को मौका उनको मिला। उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी, उसका वजह चालू हुई तो एक हमें एक पक्का पता चला इतिहास की जो जानकारी जो राइटिंग में शुरू हुई हाथी घोड़ों के चित्र से हो जाती है कि किस प्रकार घुड़सवार होते थे, रथ में कैसे जोते जाते थे, ये सब उनसे जानकारी मिलती, जबकि पुराने चित्रों में नहीं मिलती। जैसे हमें साहित्य में चतुरंगिणी सेना मिलती है, हाथी की मिलती है, घोड़ों की मिलती है, पैदल सेना, ये सब हमें इतिहास की एक महत्व बताती है कि आज से 2,000-3,000 साल पहले इस टाइप से सेनाओं का प्रारंभ हो चुका था। जैसे चतुरंगिणी सेना हम महाभारत या रामायण के समय कहते हैं, वो उनकी जानकारी पूरी उसमें हमें मिलती है।
0: जब आप किसी भी साइट पर खोज के लिए और खनन के लिए जाते हैं, चुनौतियां क्या होती हैं?
1: बहुत होती है, उसमें जान जोखिम भी रहती है। हम देखते हैं कि जितने प्राचीन सभ्यता है नदी किनारे बसी हुई है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे, सरस्वती की कहेंगे, नर्मदा कहेंगे, बेतवा कहेंगे, ये जितनी क्या है, मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक होता था, तो नदी किनारों मकान बना के रहा करते थे। अब ये देखना पड़ता है हमें कि नदी किनारे कौन सी जगह बसावट हुई है, तो हमें वो नदी के किनारों का सर्वे करना पड़ता है, गाँव वालों से पूछना पड़ता है कि यहाँ ऐसा कोई स्थान है जहाँ लोग रहा करते थे, तो गाँव वाले बोलते हैं हाँ फलाने फलाने जाइए, वहाँ बेचिराग गाँव है, जहाँ कहने के पहले कभी जमाने में लोग रहते थे, अब भी है, केवल उनके अवशेष हैं।
0: जी,
1: उस आधार पर उन जगह देखने जाते थे, और हम वहाँ जब सर्वे करते नदी किनारों पे टीले देखते, तो हमें पुराने सिक्के हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, या उस समय जो चलने वाली चीजें प्रचलन में जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है वहाँ, तो इससे पता चलता है कि यहाँ है। उसके अलावा जोखिम भी बहुत होती है कि जैसे हम जंगल में सर्वे करने जाते हैं, बहुत से होते पहाड़ी एरिया, क्योंकि भोपाल क्षेत्र ऐसा है, विंध्याचल का पर्वतमाला है, ये टीले माउंट तो मिलते ही हैं जहाँ सभ्यता, लेकिन जो आदि जीवन की सभ्यता है वो जानने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ता है, गुफाओं में जाना पड़ता है, तो उस समय ये खतरा होता है जानवरों का रहता है। जानवरों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन मधुमक्खियों से बचना बहुत मुश्किल है
0: जी।
1: वो इतनी भयानक होती है, इतने कहना चाहिए कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बार की जो घटना घटी हमारे साथ कठोतिया गाँव में भोपाल के पास, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गई हुई थी, तीन बाहर के थे, मैं यहाँ का था बताने वाला, तो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया, वो छेड़ने से क्या वो बिखर गई एकदम, जैसे क्रुद्ध हो जाती है ना अटैक करने के लिए, तो वो ऐसे झपटी हम लोगों पर, तो हमने वो तीन लोग बाहर गए थे उनको तो जैसे तैसे बचाया, लेकिन जो मक्खियां जो थी बहुत सारी मेरे ऊपर चिपट गई आके, उससे आप कल्पना कर सकते हैं एक मक्खी काटने से कितना असर होता है, और 60-70 मक्खी यदि किसी काटेगी तो क्या असर होगा
0: जी।
1: तो मेरे को काटती गई वो, तो मैंने कुछ उनका विरोध नहीं किया, मैंने काटने दो, यदि ज्यादा विरोध करता हूँ तो वो जान भी जा सकती उसकी, इतना खतरा उसमें हो जाता है। ये मैंने अपने जैकेट ओढ़ी, वो धीरे धीरे पहाड़ी से उतरा, जितने में देखा मेरे हाथ चलने की हालत नहीं है और मैं वहीं बैठ गया, मक्खियां भी मेरे को काटते काटते आखिर थक के चली गई, इतना काटा। और फिर बाद में मेरी बेटी को फोन लगाया मैंने, डॉक्टर थी बाय चांस लग गया जंगल से, वो एम्बुलेंस लेके आई और मुझे वहीं गांव में ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट क्या किया कि सबसे पहले सारे शरीर के डंक निकाले, करीब 70-80 डंक जैसे जो निकले हैं कि उसमें ब्लड आने लगा, खून आने लगा, इतने तीखे डंक होते हैं मधुमक्खियों के, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैं युद्ध से आ रहा हूँ
0: जी।
1: इतने गोले शरीर, पूरे शरीर से खून निकल रहा है जगह जगह से, 24 घंटे आईसीयू में भी रहा मैं, लेकिन इतनी खतरनाक घटना होती, क्योंकि वो मधुमक्खिया को यदि हम ज्यादा छेड़ते हैं, यदि पानी में भी हम जाएंगे डूबेंगे तो ऊपर भनभनाएगी, वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन उनका विरोध हमने नहीं किया, इसलिए उन्हें जितना काटा काटा, फिर हम बच के आए। एक बार हमारे 20-30 फीट के सामने शेर आ गया, टाइगर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उठे जंगल के जानवर इतना किसी कुछ अटैक नहीं करते, वो भी अपने चले गए, हम भी, पर क्या है मन में खतरा तो रहता है ना कि क्या हो सकता है आगे भविष्य के, तो इतने खतरनाक चीजों में हमें जूझना पड़ता है पानी के लिए, खाने के लिए। एक यही हमारे बाड़ी बरेली के पास चोगीगढ़ का किला है, वो हमने मैप में देखा, पुराना रिकॉर्ड में कोई किला है, तो हमने चलो देख ले जाके, तो हम वहाँ बाड़ी गए, सुबह सुबह रहे वहाँ, रात में रहे, सुबह हम पैदल पैदल गए जंगल में, करीब 5-6 किलोमीटर पहाड़ पे हमें चढ़ना पड़ा, और जब देखा कि वहाँ पे ये बहुत बड़ा किला है, घूमे फिरे, अब इतना चढ़ने के बाद तो स्वाभाविक पसीना आएगा, प्यास लगेगी, ठंड के दिन तो पसीने हो गए हम, अब क्या करें, प्यास लगी, बुरा हाल पानी के लिए, तो वही पास में देखा कुछ पानी एक गड्ढे में थोड़ा सा भरा था, 1-1 फीट गड्ढे में, जिसमें 1-2 लीटर पानी होगा, जब पानी हमने पीने के लिए देखा तो उसमें देखा कीड़े कीड़े हैं उसमें
0: जी,
1: और इतने कीड़े हैं कि हम वो जितना पानी उतने आधे तक कीड़े हैं उसके अंदर
0: जी।
1: पर हमने यही सोचा कि अब पानी तो ये है तो यही पीना पड़ेगा, तो हमने हमारे गिलास ली और रुमाल लिया और हाथ से पानी उस रुमाल में डाला, तो पानी तो नीचे आ गया, कीड़े ऊपर रह गए
0: जी।
1: तो इतने कीड़े हैं कि देखने से हम वोमिटिंग होने, लेकिन क्या करें, वो पानी हमने कीड़ों वाला पिया, हमने कहा हाथ में संतुष्टि देखा जाएगा बाद में, तो इस पर कृपा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें प्यास बुझ गई, लेकिन ये इतना जानवरों के बीच में, इसमें कीड़ों के आपने देखे पानी में मधुमक्खी इसमें बीच में रह के काम करते हैं, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो हम चीज भूल जाते हैं, हमें यही याद रहती है कि हम सफल हुए काम में, कठिनाइयां तो आती है और आती रहेंगी, उसको सोचना नहीं है हमें, हमें काम किया अपने लिए नहीं, किया सबके लिए, क्या लोगों को जानकारी मिले
0: जी,
1: ये हम लोग एक लाइफ में है
0: जी। इतनी खोज आपने की है, उतनी ही कहानियां आपके पास हैं, क्योंकि अभी जब से मैं बात कर रही हूं तो आपके पास बहुत कहानियां हैं, अगर मैं बोलूं तो सबसे रोमांचकारी खोज कौन सी मानते हैं आपकी नजर में?
1: काम तो सभी जगह किया है, रायसेन जिले में 250-300 गांव सर्वे किया है, पोस्टिंग मेरी कई जगह रही, गुजरात में भी रही, गुजरात में 7 साल रहा, तो वहाँ मुझे एक ऐसा काम दिया जिसे हम रानी की वाह बोलते हैं, आपसे बताया ना कि जब मेरी पोस्टिंग 1981 में बड़ौदा में हुई गुजरात सर्कल के अंदर, तो मुझे काम दिया कि रानी की वाह का उत्खनन करना है, तो उस समय थोड़ा कुछ काम हुआ था, लोगों ने किया था, करीब 20-25 फीट खुदाई की थी, लेकिन वो लोग काम देख के लोग चकरा जाते थे, काम किया नहीं पड़ा रहा, मेरे को काम वो दिया था, मैंने ठीक है मैं करूँगा, बहुत रिस्क उठाई काम के अंदर, तो मैंने ये भी रिस्क सही, तो हम वहाँ काम जब शुरू किया, वो बावड़ी करीब उसकी देखना चाहिए लंबी करीब लगभग 150 फीट है, वो चौड़ाई 50-60 फीट करीब है, और जब हमने खुदाई सी पानी का जो लेवल था वो 120 फीट में था, तो हमने देखे सरफेस से ला के 120 फीट ये पानी आता, आप अनुमान कर लीजिए कितनी गहरी बावड़ी रही होगी,
0: बिल्कुल
1: 7 मंजिला बावड़ी
0: जी,
1: बावड़ी यानी स्टेप वेल, वहाँ वाव बोलते हैं इसको, बावड़ी को हम लोग बावड़ी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग सब नाम प्रचलित है, तो खुदाई जो हमने की तो इसने बहुत मूर्तियां मिली, कुछ यथास्थान लगी हुई दीवारों में लगी, कुछ ऐसी जगह जगह मिली, लेकिन हम पूरा काम किया, इतना मलबा निकला उसमें से, हजारों ट्रक पे मलबा निकला होगा
0: जी,
1: आप कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी बावड़ी उसमें मलबा निकालना कितना टाइम लगा। भाकनकर साहब भी उस समय काम देखा उन्होंने सरस्वती वेल की खोज में, बोले तुम तो इसमें PhD कर सकते हो, इतना काम है ये, तो मेरे को तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक सर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, तो उन्होंने उसके सिनॉप्सिस भी बना के दी मेरे को, हालांकि मैंने भोपाल में आके पीएचडी कही ट्रांसफर होने के बाद, लेकिन यहाँ पे पूरा काम किया उस बावड़ी खुदाई में, पूरी दीवार में सब जगह निकली मूर्तियां 1500 थी, 1500 मूर्तियां, और इतनी मूर्तियां थी कि उसको एक तो पहचानना मुश्किल लोगों का, लेकिन मैंने एक एक मूर्ति की पहचान की, कौन से देवी देवता है, उनका क्या नाम है, एक शिव है तो क्या नाम है, विष्णु है तो कौन कौन से स्वरूप, ये सब पूरे मैंने रिकॉर्ड तैयार करके डिपार्टमेंट में 1500 पेज की रिपोर्ट दी, लेकिन एक एक मूर्ति को मैंने आइडेंटिफाई किया, प्रचार किया, तो लोगों को लगा इतने भव्य बावड़ी किसने बनाई होगी, तो रानी की वाह बोलते हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में रानी कौन थी
0: जी।
1: उस समय जो बनी थी ये 1050 में बनी थी, और ऐसा कहते हैं भीमदेव सोलंकी के समय बनी हुई जो गुजरात के शासक थे जिसमें महमूद गजनवी का हमला हुआ था। तो हमने जब खोद के देखा रानी की वाव, तो एक नीचे हमें मूर्ति मिली रानी की, तो वो रानी जो उदयमती नाम की थी, जो भीमदेव की पत्नी थी, उसमें नाम लिखा है महारानी उदयमती, श्री उदयमती। तो हमें कन्फर्म हो गया ये उदयमती जो है राजा भीमदेव की पत्नी है, उन्होंने उनके पति की स्मृति में ये बावड़ी बनवाई। और बाय चांस उसमें नीचे जो मूर्तियों की लाइन थी सबसे नीचे, उसमें वो राजा की मूर्ति भी मिली, तो हमने आइडेंटिफाई किया ये राजा की ही मूर्ति है। तो इस प्रकार एक एक मूर्ति आइडेंटिफाई, लेकिन उसमें रिस्क इतनी थी कि वो मूर्तियों की दीवार से हम नीचे देखेंगे तो चक्कर आते थे, थोड़ी सी 1.5-2 फुट जगह थी वहाँ, वहाँ बैठ के हम काम करते थे, इसके फोल्डिंग हमने बांधी थी, एक बार बैठने में इसके फोल्डिंग टूट गई तो हम 80 फीट नीचे गिरते बचे, लेकिन वो बच गए हम। और उसके बाद जब नीचे देखते चक्कर आते, कई बार चक्कर आ जाते तो हम तो साइड में लेट जाते थे, देखते नहीं थे, क्योंकि उसमें क्या कब गिर जाए हम कह नहीं सकते। और इतनी गहरी बावड़ी आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कोई देखने जाता है वो बावड़ी को तो आश्चर्य करता है, इतनी बड़ी बावड़ी कहाँ से निकली। अब देखिए इतनी हमने मेहनत की, और फिर रिटायरमेंट के बाद में हम इंडिया यूनेस्को की कमेटी थी ASI की, उसमें हमें लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, जो रानी की वाव को मन लेना था, तो 2014 में हुई, और हमें हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। बहुत ज्यादा बहुत प्रसन्नता जब हुई कि 100 रुपए के नोट पे उस बावड़ी का चित्र आया
0: जी जी,
1: जब हमें
0: जी,
1: लगा कि रानी के वाह पाटन, तो मन में हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारा जो काम है
0: जी
1: वो सामने दिख रहा है, हमें भले कोई जानता ना हो लेकिन हमारी काम जो है सामने दिख रहा है, जो आज के समय में हर व्यक्ति के जेब में 100 का नोट होता है
0: जी,
1: वो चीज है
0: जी। आप जब बता रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई काम जब आप करने की शुरुआत करते हैं और जब इस तरह का प्रतिफल मिलता है तो मन कितना भावुक हो जाता है।
1: बहुत ही, मैंने कहना चाहिए जो सुनता वो यही कहता है कितना जोखिम तो होती है हर काम में
0: जी जी।
1: अब नारियल भी हम तोड़ेंगे कितना कठोर होता है, जब टूटने के बाद जो उसमें पानी मिलता है मीठा होता है तो बड़ा, जितने भी टुकड़े जो छोड़ ले वो सब भूल जाते हैं।
0: लेकिन आपकी चुनौतियां जब सर हम सुन रहे हैं तब मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से क्या पुरातत्वविदों के लिए कुछ आसानी होगी।
1: आधुनिक समय में कंप्यूटर का और एक ऐसी चीजों का आ चुकी हैं जिसमें मदद मिलती है, लेकिन जब मैनुअल काम होता है हाथों से वो तो हाथ से ही करना पड़ेगा। जिसमें पुरातत्व उत्खनन जब करते हैं, मेजरमेंट लेना करना, तो ये सब आजकल मशीनों से हो जाता है, लेकिन जो उत्खनन हम जो करेंगे वो हमें हाथ से अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। एक एक चीज को देखने पड़ेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उससे मशीने काम नहीं आएगी। यदि हमें कोई फोटो लेना हो, ऊंचाई पर होना हो, तो ड्रोन कैमरे से फोटो ले सकते हैं। उस समय तो ये कैमरे होते थे, हैंडल करते थे, स्टैंड लगाते फोटो करते, आज वो सुविधा बहुत है, कंप्यूटर की सुविधा है कि हम सब पूरा टाइपिंग वगैरह कर लेते, लेकिन जब मैनुअल काम हो तो मैनुअली करना पड़ेगा
0: जी।
1: हमें गांव में जाना है, सब जगह जाना, ठीक है गाड़ी मिल गई चले गए, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अधिकतर हम लोगों ने जो पैदल जो काम किया उस समय में, वो आज के समय में लोग कर नहीं पाते, क्योंकि आजकल इतने आधुनिक साधन हुए उनका प्रयोग करना चाहिए। हम भी यदि उस समय होते तो हम भी प्रयोग करते, उस समय न कंप्यूटर था न कोई मोबाइल था न कुछ नहीं था, ये सब चीजें था, उसके बाद भी हम करते थे, एक मन में संतुष्टि थी। आज विकासवाद है, विकास हुआ है ठीक है, और ये पुरातत्व में ये सब चीजें काम आती ही है, ये सब खोज में इनकी जांच करने में, जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह कि इसे करते, तो ये आधुनिक संसाधन ही इसी में काम आते हैं। तो उसमें मैनुअल भी जो काम होता है और मशीनों से भी, आधुनिक यंत्रों से भी, दोनों से ही काम होता है इसमें।
0: आपने अपनी बातों में कहा और हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यताएं नदी के किनारे किनारे ही विकसित हुई हैं। नर्मदा घाटी की सभ्यता को लेकर और पुरातत्व खोजों को लेकर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: हमारी जो नर्मदा घाटी सभ्यता है, कि ना हमें संसार की देश की बहुत प्राचीन सभ्यता है, जितनी पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता हम जो लोग देखते हैं कहना चाहिए उनसे भी पुरानी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यताओं में नगरी सभ्यता थी, उस समय तत्कालीन जीवन की जानकारी मिलती, लेकिन नर्मदा घाटी के अंदर आदि मानव से ला के वर्तमान तक की सभ्यताएं लगातार हमें क्रमबद्ध मूर्ति ये मिलती है। आदि मानव के पत्थर के हथियार भी मिलते हैं, उनका विकास हुआ ताम्र युग में, उनकी भी चीजें मिलती है, जैसे भीमबेटका का क्षेत्र या नर्मदा का क्षेत्र में या होशंगाबाद ले लीजिए कर लीजिए, आदि मानव पत्थर के हथियार बहुत चीजें मिलेंगे। वहीं अब महेश्वर नावडा टोली जाए महेश्वर में तो वह ताम्र युग की सभ्यताएं भी देखने को मिलेगी, भोपाल के आसपास भी मिलेगी, फिर इतिहास की सभ्यताएं वो भी इनके किनारों नदी पे, यानी कहना चाहिए हर युग की सभ्यताएं नदी घाटी विशेषकर नर्मदा घाटी में हर जगह हमें देखने को मिलेगी। हम चाहे महेश्वर जाएं चाहे ओंकारेश्वर जाएं, कहीं भी हम जाएं नदी किनारे तो हमें सभ्यताओं के दर्शन होते हैं, मंदिरों के रूप में होते हैं, पुराण टीलों के रूप में होते हैं, पाषाण युगीन संस्कृति के रूप में, इससे सब अवशेष दोनों तरफ से। उसके अलावा जो नर्मदा घाटी जो विशेष रूप से जो निमाड़ का एरिया है, जो होलकर स्टेट, इन्होंने जनता के लिए बहुत काम करवाए और धर्मशालाएं बनवाई नदी किनारे, लोगों के लिए बहुत सुविधाएं करवाई, ये भी एक उसके अंदर होलकर राज्य के समय का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। उसी पीरियड में हम देखें जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में जहाँ ये नर्मदा नदी, वहां पर भी इतनी सभ्यताएं मिली, जैसे कलचूरी शासक बड़े प्रसिद्ध थे, कलचूरी शासकों के नीचे नर्मदा देवी माना जाता था, तो उस समय की सभ्यताएं बड़ी प्रचुर माद मूर्तिकला में हम जब देखते हैं तो हमें कलचूरी कालीन जो नर्मदा घाटी में जो मिलती कला वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इतनी सुंदर प्रतिमाएं हमें कहीं देखने को भी नहीं मिलती जितना जबलपुर क्षेत्र में कलचूरी शासकों ने बनाई है।
0: इतनी सारी बातें हमने आपसे की, चलते चलते एक आखिरी सवाल सर आपसे जरूर करना चाहेंगे कि आपने अपना पूरा जीवन इतिहास और विरासतों को खोजने समझने और संरक्षित करने में लगाया है, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है हम अपनी विरासतों से सबसे बड़ी सीख क्या ले सकते हैं?
1: हमें विरासत से बहुत सीख मिलती है, हमें ये मिलती है कि प्राचीन समय में सभ्यताएं कितनी थी, कितनी विकसित हुई, आज हम सभ्यताओं को कैसे सहेजें, हमने काम तो बहुत कर लिया, लोगों ने बहुत कर लिया, अब सहेजना बहुत बड़ी बात है और धरोहर के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम जो इतनी खोज हो चुकी है उनको ऐसे संभाल के रखें। तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि जनता को, बच्चों को, विद्यार्थियों को या शोधार्थियों को या पर्यटकों को इतना जागरूक करें कि जो हमारी जो खोज की हुई चीज़ें हैं हम लोगों की या वन पुरातत्वता है उसको हम कैसे संभालें ताकि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी यथावत मिल सके, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। और सभी लोगों को ये करना चाहिए कि उनके क्षेत्र की जो भी कलाएँ हैं या जो भी अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखें, जितनी खोज हो चुकी है वो योगदान दें। सरकार अपने तरफ से काम करती ही है तो उसे जनता का योगदान, जनता की भागीदारी बहुत बड़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा क्या है, हम यदि इतिहास को भी जाने, लोगों से विद्यार्थियों से ये भी अनुरोध करेंगे कि अपने परिवार का इतिहास भी जाने। हमारे घरों में बहुत ऐसे चीज़ें होती है जिनका हम महत्व नहीं समझ रहे हैं, जैसे पीतल के तांबे के बर्तन पुराने हमारे घरों में रहते हैं, हम लालच उन बेच देते हैं, उनके जो नए चमकने वाले बर्तन ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पूर्वजों के जो बर्तन है धरोहर है वो सब चली जाती है। कई लोगों के हस्तलिखित ग्रंथ रखे होते हैं वो समझते हैं काम के नहीं तो पानी में बहा देते हैं, पुराने पत्राचार होते हैं, पुराने अखबार होते हैं, ऐसे बहुत से पुरानी पुरानी चीज़ें होती है परंपरागत, उसको हम नष्ट करते जाए। हम चाहते हैं लोग उनको संभाल के रखें, किसी को न दें, अपने घर में एक सजा के रखें, बता के रखें ये हमारी चार पीढ़ी वाले बर्तन है कि उनके पांच पीढ़ी वाले वो समय का ये पत्र है, ये उस समय किताब है। तो अपने घर के धरोहर यदि पुराने सिक्के भी पड़े रहते लोगों में तो वो समय की तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के सहेज के घर में ही लोग अपने घर में भी छोटा संग्रहालय बना सके ताकि लोगों के मेहमान आके देख सके कि इनका घर कितना प्राचीन है, इनके पूर्वज कितने संपन्न थे। ये सब चीज़ें मैं कहना यही चाहूँगा सभी से कि इस प्रकार जरूर योगदान दें अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाने के लिए।
0: जी सर, आपके सामने थोड़ी सी हिमाकत कर रही हूँ कि मैं लोगों से कुछ कह सकूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शैल चित्रों का आपने इतना अध्ययन किया है, लोग जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं, हेरिटेज साइट्स पर आप जाएं तो कृपया आप उन शैल चित्रों का ख्याल रखें, अपनी तरफ से पत्थरों से कुछ भी लिख कर ना आए, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को सहेजने में एक मुझे लगता है रास्ते का रोड़ा साबित होता है। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी कराते हैं या कुछ भी लिख आते हैं, ये चीज़ शायद हमें समझनी होगी कि हमें अपनी विरासतों को संभाल के रखना है। सर, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें पुरातत्व को केवल अतीत के अध्ययन के रूप में नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक स्मृति और पहचान को समझने के माध्यम के रूप में देखने की दृष्टि दी। एक बार पुनः आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके अनुभव, आपके शोध से हम सब और आने वाली पीढ़ियाँ जरूर समृद्ध होंगी।
1: जरूर, धन्यवाद सभी को, सभी सुनने वालों को।
2: आमने सामने
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी के साथ ये खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ थी मैं मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको मिलवाया पद्मश्री पुरातत्वविद नारायण व्यास से। इनसे बातचीत कर रही थी मनीषा चतुर्वेदी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है साहित्य पत्रिका वागर्थ। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सविता भार्गव का कविता पाठ सुनवा रहे हैं।

0: सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं पल्लवी त्रिवेदी।
1: मेरी पहली कविता संगीत से ही शुरू करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है राग अरण्य। जंगल में जो संगीत होता है, मुझे लगता है चाहे तानसेन जी ने बनाए हों जितने भी राग या कहीं पे भी, हम प्रकृति के संगीत से ही उपजे होंगे सारे संगीत, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा। सो मेरा पहली कविता है राग अरण्य। पतझर की एक सांझ घिर रही है, सतपुड़ा का जंगल आज राग अरण्य की एक नई सिम्फनी रच रहा है। पपीहे और मोर ने षडज से धैवत तक का दीर्घ आलाप उठाया है। अबाबील और फुल चुक्कियाँ साध रही हैं द्रुत लय की ताने। कटफोड़वा और ठठेरा बसंता ने सागौन पर झपताल का ठेका दिया है। और सहसा कहीं दूर एक बाघ खरज का पंचम लगा बैठता है। गुणवंत साजिंदे, झींगुर और टिड्डे तानपुरा साधे बैठे हैं। नदी की लहरें बजाती है मंजीरा मगन अपने तट पर। और सूखी पत्तियों पर छनक उठते हैं किसी खरगोश की पदचाप के घुंघरू। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर कांप रहा है कोमल गांधार, कांप रहा है कोमल गांधार। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता है पिता। ओ पिता, तुम हमेशा एक नाराज बच्चे थे, अपने ही अतीत के बंधक, अपने ही मन के कुएं में औंधे पड़े। तुम चट्टान बनने को अभिशप्त थे, जबकि तुम बालू की तरह झर रहे थे। किसी रोज तुम मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना चाहते थे। किसी रोज तुम्हारे अश्रु नर्मदा बन जाना चाहते थे। तुम पैर पटक कर कहना चाहते थे उस दिन, आज सिर्फ मुझे लाड़ करो। पर तुम्हारे भीतर का बच्चा बाहर के पिता से हार गया। तुम्हें किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी तो नहीं कहा रो लो जी भर कर, ढह जाओ इस कांधे पर। जिन हाथों को तुम्हें अंक में भर लेना था, वे हाथ ट्यूशन फीस की फरमाइश के लिए आगे बढ़े। जिन आँखों को तुम्हारी पीड़ा देख लेनी थी, उन आँखों में तुम्हारे ज़िद्दी स्वभाव के लिए सैकड़ों शिकायतें उमड़ती रहीं। जिन होठों को तुम्हारा माथा चूम लेना था, वे तुम्हारी पीठ पीछे भुनभुनाते रहे। एक बच्चा बचपन से बचपन को तरसता रहा। एक बच्चा 51 साल जिया और अपने ही मन के कुएं में डूब गया। ओ पिता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने कुएं की मुंडेर तक आने में देर कर दी। प्रेम कविता, शीर्षक है प्यार का फूल। दूरियों का क्षोभ मत करो तुम, दूरियों का क्षोभ मत करो तुम। मुलाकातों के सिलसिले के खत्म होने को होने से मन को अवसाद में ना भरो। मंदिर की घंटियों की तरह सारा दिन तुम्हारे कानों में बजती वह आवाज अब मौन हो गई है, तो जी उदास ना करो। तुम्हारी देह को उसकी देह के स्पर्श का आश्वासन अब नहीं, तो तनिक भी ना घबराओ। प्यार का फूल पौधे पर ज्यादा देर नहीं टिकता, तुम्हारी प्रिय किताब के सबसे प्रिय पन्ने पर ही इसे अब उम्र बितानी है। अगर अब स्वप्न में भी उसकी आमद विरले ही होने लगी है, तो अपनी नींदों से झगड़ा मत करो। तुम्हारी स्मृति से अगर उसके साथ के सुंदर वाकये लुप्त होने लगे हैं तो दिमाग पर कतई जोर न डालो। मत सोचो कि उसे स्मरण कर कितने महीनों से तुम्हारे नेत्र नहीं छल छलाए हैं। उस कसम को ना निभा सकने के लिए खुद को मत कोसो जो तुमने उसका हाथ थाम कर उठाई थी। क्षण भर को भी तुझे भूलूं तो पाप की भागी बनूं। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है और उस कंपन से हृदय तल पर जो घटता है वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी। वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी।

0: और ये है रचना पाठ संगीता गुंदेचा का।
1: ये जो दो कविताओं का जोड़ा है इसका नाम है फ्रिदा काहलो। फ्रिदा काहलो मेक्सिको की चित्रकार थी और एक कविताओं का जोड़ा है फ्रिदा काहलो। एक फ्रिदा काहलो का जीवन बहुत कष्टमय था लेकिन उसके बिना भी वो चित्र बनाती रही। और आप कभी फिल्म देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। मैं कविताएं सुना देती हूँ, दो छोटी कविताएं। फ्रिदा काहलो एक। शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा काहलो, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज़ हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रिदा काहलो दो। आह शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा काहलो, मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वही मारती है। आत्ममुक्त। क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, तुम तोड़ो पहाड़, तुम मंगल ग्रह के एकांत में पीछा करो चम्मच का। सघन पीड़ाओं से अलंकृत तुम्हारा मन, शब्दों और अर्थों का अंतर्द्वंद, तुम्हारे उत्सर्गों और प्रेम का अविरल छंद, यही सब बनाता है उसे जो तुम हो। इसलिए एक लेखक का आत्ममुग्ध होना नहीं शोभता प्रिय, एक लेखक का आत्ममुग्ध होना बिल्कुल नहीं शोभता।

0: और ये हैं सविता भार्गव।
1: दरवाजे के बाहर बैठकर जब तक खोलो नहीं कपाट, म्याऊं म्याऊं करती रहती है। कटोरी में दूध उसके सामने रखती हूँ, पीते हुए जरा भी चपर चपर नहीं करती। पेट की खिदमत करने के बाद वो चुपचाप पेड़ के नीचे बिखरी पत्तियों पर बैठकर धूप सेकने लगती है और अपनी देह को ऐसी आकृति देती है जैसे वो पृथ्वी की रीढ़ हो। रात में वो जरूर डरावनी लगती है, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं अंधेरे में, भर जाती है देह में झुरझुरी। चांद की रोशनी में उसकी रेंगती हुई छाया में प्रेत का भ्रम होता है। पता नहीं क्यों सुबह जब वो दरवाजे पर बैठ जाती है, भुला देती हूँ उसका डरावना रूप और पुचकारती हूँ उसे, मन में हो जैसे खास जगह। अचरज होता है कैसे संभाले हैं उसने अपने दो रूप। दो रूपों की वो अनूठी मिसाल है, पालतू बनने के लिए रहती है व्यग्र लेकिन समझती है अपने को मालकिन। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा, एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। दाम्पत्य और कविता। कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। मानती हूँ शब्द का जीवन से रिश्ता है लेकिन शब्द मानते नहीं, उनकी एक ही रट है, एकांत में दुबको या उड़ो। उन्हें नहीं चाहिए मेरा सुकून, उदासी चाहिए लेकिन नहीं चाहिए ओढ़ी हुई उदासी। जीवन जो पहचान में आए नया, उसी में देखते हैं शब्द अपनी पहचान। अब आप बताएं, दाम्पत्य सवारूं कि कविता करूं? प्रेम कविता। भरोसा, मैं अंधेरे पर भरोसा करती हूं जो मुझे सहलाता है अज्ञात पंख से और मैं कांपती पलकों में सो जाती हूं। मैं उजाले पर भरोसा करती हूँ जो आंखें खोलते ही खिल उठता है और मैं बहती चली जाती हूँ उसकी तरफ। मैं अपने इस घर पर भरोसा करती हूँ जिसमें मैं रहती हूँ सालों से और जो बस गया है मेरे भीतर। मैं अपने शहर की गलियों पर भरोसा करती हूँ जो आपस में जुड़कर इधर से उधर मुड़ जाती हैं और जहाँ ख़त्म होती है कोई गली मुझे वहाँ मेरी धड़कन सुनाई पड़ती है। ए आदमी, मुस्कुराते हुए जब तुम मुझ में खो जाते हो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरता है, जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। आखिरी कविता, माँ वापस जा रही है। माँ कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा ना लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है। धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ध्रुपद संस्थान भोपाल में। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साहित्य पत्रिका वागर्थ, जिसमें आज हमने सविता भार्गव के काव्य पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है हमारे विशेष कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं जैज संगीत पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम।

0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फ्रांसीसी जैज बैंड कबारे रोशे ट्रियो की दिलकश प्रस्तुति। ये प्रस्तुति हुई संस्कृति विभाग और आलियांस फ्रांसिस द भोपाल की ओर से भारत भवन में।
1: Culture and Tourism and Alliance Française de Bhopal is delighted to welcome you for this very special concert of the jazz band Cabaret Rocher Trio. So this French jazz band is very specific because they will mix like jazz improvisation, Breton folk traditions, music from the Balkans into a very original dialogue. So let me introduce you to Etienne Cabaret. Etienne Cabaret, clarinettiste. Christophe Rocher, second clarinet. And Nicolas Pointard, percussionniste. Once again, we're delighted to have you and to introduce you to this jazz concert, and we wish you a wonderful musical evening.
2: Thank you very much, Vincent. Thank you very much for being here.

ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें आप सुन रहे थे फ्रांसीसी जैज बैंड कबारे रोशे ट्रियो की प्रस्तुति। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जैज संगीत पर आधारित कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भीकाजी रुस्तम जी कामा के जीवन पर केंद्रित है। आज उनकी पुण्यतिथि है।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मादाम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता और शहीदों के प्रति वे अगाध श्रद्धा रखा करती थीं। जैसे जैसे उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का ज्ञान हुआ, उनके विचार क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे। वे उन सभी गतिविधियों में भाग लेने लगीं जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही थीं। मुंबई में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में रहकर वे लंदन पहुंची और दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में कार्य करने लगीं। यहाँ उनका परिचय भारतीय क्रांतिकारियों से हुआ। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मादाम कामा ने भारत की स्वाधीनता की जोरदार वकालत की और अंग्रेजों के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया। 1908 में इंडिया हाउस में स्वाधीनता संग्राम की अर्धशताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित करके युद्ध पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ भेजा था। भारत की आवाज दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए मादाम कामा ने पेरिस से वंदे मातरम नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। वे चाहती थीं कि प्रत्येक देश की महिलाएं जागृत होकर अपने देश के लिए कार्य करें। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय फौजियों को यूरोप भेजा गया, तब बंदरगाह पहुंचकर वे सैनिक टोलियों को समझाती कि मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। फ्रांस सरकार को जब मादाम कामा की गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्हें एक पुराने किले में नजरबंद कर दिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब उन्हें नजरबंदी से छोड़ा गया तो उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। जीवन के अंतिम दिनों में मादाम कामा भारत लौट आई थी, जहां 16 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया।
2: सुनो भाइयों सुनो, ये देखो ये क्या लिखा है, आज गजभिये काका का ढाबा बंद रहेगा।
3: लेकिन कल तो हम आए थे, काका ने कुछ बताया नहीं। भाई ये तो गलत है, अचानक बंद।
4: हाँ रात को तो मैं खाना खाने आया था पर मुझे कुछ भी नहीं बताया।
2: सवाल ये उठता है कि हमें खाना खिलाएगा कौन, महीने का आखिरी हफ्ता है, जेब नरम हो रही है सभी की,
3: आज उपवास हो जाए सामूहिक।
4: भाई मैं तो तैयार हूँ पर पेट में दौड़ रहे ये चूहे उपवास के लिए तैयार नहीं है।
2: तो चलो किसी मंदिर या मस्जिद के सामने चलकर बैठ जाते हैं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला भी भगवान।
3: सुन लो प्यारो, हंसने से पेट नहीं भरेगा, जो बचा है वो भी हजम हो जाएगा, फिर वही हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। चलो चलकर कुछ जुगाड़ करते हैं।
4: अरे गजभिये काका तो वो आ रहे हैं देखो, पर ये उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे काका, अरे काका,
5: काका, काका, काका, ओ काका सुनो तो सही।
2: लो वो रुक गए।
5: दादा वहीं रुकना, हम लोग आपके पास आ रहे हैं।
3: राम राम काका। क्या काका, आज तो भूखा ही मार दिया, आज ढाबा क्यों बंद है?
6: अरे क्या बताऊं भैया, वो चौक वाली गली में रामदासी भाई और भगवान को प्यारी हो गई, उन्हीं के दाह कर्म से आ रहा हूँ।
4: रामदासी भाई, वो कस्तूरबा अस्पताल वाली?
6: हाँ, पूरे 100 बरस की थी वो, गरीबों और पिछड़ों के लिए जीवन दे दिया, फ्रीडम फाइटर थी वो, अंग्रेजों के जमाने में कई बार जेल गई, उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, सब देश के लिए दान कर गई।
2: तब तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग आज उपवास रख सकते हैं।
6: अरे नहीं नहीं नहीं, घर चलो, आज हम सब साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो, मुझे नहाना भी है, ये तो जीवन है और जीवन चक्र तो अपनी गति से चलता ही रहता है।
3: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
6: सुनो जरा गर्म पानी रख दो। अच्छा एक काम करो, गर्म मत करो, मैं नहा लूंगा। और ये कुछ मेहमान आए हैं, अरे नवीन जरा इन्हें बैठक में बिठाओ।
7: जी भैया।
6: आप लोग बैठिए बैठिए।
4: नमस्कार नवीन भाई।
7: अरे नमस्कार भैया नमस्कार। आज आपको परेशान करने आए हैं हम। अरे तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठिए लीजिए पानी पीजिए। दरअसल बात यह है भैया जी कि हमारी भाभी तो गई है मायके, अब उनके सारे काम की जवाबदारी अब मेरी हो गई।
4: नवीन भाई क्या करते हैं आप?
7: भैया मैं स्कूल में प्राध्यापक हूँ, पर आजकल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध कर रहा हूँ।
3: आइए गजबी काका, नहाना हो गया आपका?
6: हाँ अब जरा हल्का, कुछ हल्का लग रहा है। मैंने महाराज को बोल दिया है अभी थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाएगा।
7: भैया आप पूजा पाठ निपटा लीजिए, मैं इनके साथ बैठता हूँ।
4: तो नवीन भाई आजकल आप किस सेनानी पर काम कर रहे हैं?
7: मदाम भीकाजी कामा पर।
8: मदाम भीकाजी कामा, ये कौन थी?
7: भैया हमारे देश की एक साहसी महिला थी जिन्होंने देश विदेश में भारत की आजादी की क्रांति की अलग जगाई थी। 24 सितंबर 1861 को बंबई में एक पारसी व्यापारी सौराबजी फ्रामजी पटेल के यहाँ उनका जन्म हुआ। पिता ने कन्या का नाम भीकाजी रखा, घर में उसे मुन्नी के नाम से पुकारा जाता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और विद्यालय का पूरा काम किए बिना ना तो भोजन करती थी और ना ही शयन करती थी। हर विषय में उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त होते थे, बोलती भी खूब थी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया करती थी और बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली थी। आगे चलकर ये मदाम कामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भैया उनकी वाणी में वो तेज था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 18 अगस्त 1907 जयंती का स्टुटगार्ट शहर।
9: अब मैं निवेदन करूंगा मादाम कामा से आए मंच पे अपने विचार।
10: कोई भारतीय राजकुमारी मालूम पड़ती है? काले आदमियों के देश भारत में भी इतना सुंदर है, आश्चर्य है।
11: बहुत प्रभावशाली और सुसंस्कृत महिला है
9: मादाम कामा।
12: ये मेरे देश का झंडा है, संसार की स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, ये मेरा नियम है कि मैं अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूँ। भारत के महान शहीदों के तप, त्याग और बलिदानों की गरिमा से युक्त स्वाधीनता के प्रतीक इस झंडे को मैंने आपके सामने फहराया है। हरा रंग भारत की धन धान्य पूर्ण हरितिमा का प्रतीक है। उस हरी पट्टी पर 8 कमल पुष्प अंकित है। हमारा भारत 8 प्रांतों में बटा हुआ है और 8 कमल भारतीय योग साधना के प्रतीक भी हैं। झंडे के बीच की पट्टी केसरिया रंग की है। केसरिया रंग की पट्टी पर हमारा ओजमय मंत्र वंदे मातरम अंकित है। सबसे नीचे की पट्टी लाल रंग की है। लाल रंग भारत में अनुराग का रंग माना जाता है। अनुराग एवं एकता की भावना के प्रदर्शन के लिए लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा अंकित है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। लाल रंग वैसे खूनी संघर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है जिसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान मिलकर अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं अपने सम्मुख बैठे हुए संसार के सभी स्वाधीनता प्रेमी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस झंडे के सम्मान के लिए खड़े हों और इसका अभिवादन करें। धन्यवाद। आप स्वाधीनता प्रेमी महानुभावों ने स्वाधीनता चाहने वाले एक देश के झंडे का सम्मान किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त देशवासियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत, जहाँ समस्त संसार की मानवता का पांचवा भाग रह रहा है, वो आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चक्की में पिसकर करा रहा है। भारत के समस्त आर्थिक साधनों का दोहन करके ब्रिटेन गुलछर्रे उड़ा रहा है और भारतीय लोग दाने दाने को मोहताज होकर सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ रह सकते हैं? मेरा प्रस्ताव है कि संसार की सारी स्वाधीनता प्रेमी जनता संसार की मानवता के पांचवे भाग भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के प्रयत्न में सहयोग दे। वंदे मातरम।
0: फिर सभी लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ ऊंचे किए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधि नहीं नहीं करते रहे, केवल ब्रिटिश के उदारवादी सदस्य हिंडमैन ने समर्थन किया। इस क्रांतिकारी महिला ने ब्रिटिश लोगों का मुंह बंद कर दिया। और भाइयों, यह झंडा भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा था जिसका डिजाइन वीर सावरकर ने किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महान नेता लेनिन से कामा का परिचय हुआ।
13: लो भाई, ये भगवान का प्रसाद ले लो। लो भाई नवीन, तुम भी लो। हाँ, अब आगे सुना।
0: एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी, तभी
4: मदाम जी कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया।
12: मेरे देश के कई गरीब भाई भूखे सो जाते हैं, उनके हिस्से का अनाज ब्रिटिश जानवरों को खिला देते हैं। मैं कैसे खाऊं? लोगों की दशा से मेरा मन भर आता है, लेकिन मुझे कमजोर नहीं होना है। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हम करेंगे। एक हिंसक को परास्त करने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है।
0: एक दिन लंदन में एक सभा हो रही थी। मदाम भीकाजी कामा मुख्य वक्ता थी। उनके मुख से शब्द नहीं, अंगारे निकलते थे जिससे अंग्रेज श्रोता तिलमिला जाते थे।
12: मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारत संघर्ष करेगा और आजादी प्राप्त करके रहेगा। मैं मानती हूँ कि भारत के लोग अनपढ़ और भूखे हैं, पर पेट की भूख से कहीं अधिक भूख उनको आजादी की है। आप लोग रूस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर भारत के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते। कारण मैं बताती हूँ। ग्रेट ब्रिटेन भारत के रक्त की बूंद बूंद चूसकर भी संसार में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत हमारे शासन में सुखी है और वो स्वाधीनता नहीं चाहता। हमारी जीवन की सार्थकता देश के लिए मर मिटने में है। हम भारत के हैं और भारत भारतीयों के लिए है। मैं शेर की मांद में घुसकर ही शेर को ललकारती हूँ।
0: लंदन के घर घर में लोग भीकाजी कामा का नाम जानते थे। जासूस छाया की तरह पीछे लगे रहते थे। 1908 तक वो लंदन में रही। 1 मई 1909 को पेरिस पहुंच गई। वहां उन्होंने वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। अखबार की लोकप्रियता देखकर उसमें व्यवधान डलवाकर उसे वहां से हटा दिया गया। फिर 8 महीने जिनेवा से अखबार प्रकाशित हुआ, वहां से भी उसे हटाया गया और हॉलैंड भेज दिया गया।
13: वाह भाई वाह, देखो एक स्त्री होकर कितनी साहसी थी वो। अरे देश के लिए कहां कहां नहीं गई वो।
0: ठीक कह रहे हो भैया, अनिवासी भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए लंदन, फ्रांस, मिस्र, अमेरिका सब जगह गईं और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और एक बार जब वे मिस्र की राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए गईं, तो वहां सभा में एक भी महिला को ना देखकर उन्होंने कहा,
12: मिस्र में आके मुझे आधी ही खुशी हुई है। क्योंकि मैं मिस्र का यहाँ केवल आधा प्रतिनिधित्व ही देख रही हूँ। शेष आधा प्रतिनिधित्व कहाँ है? मैं मिस्र के सपूतों से पूछती हूँ कि आप लोगों की माताएं कहाँ हैं? आप लोगों की बहनें कहाँ हैं? आप लोग ये न भूलें कि पालना झुलाने वाले हाथ ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान रहता है।
14: नवीन भाई, मदाम कामा भाषण ही देती रहती थी क्या?
7: अरे नहीं भैया, मदाम कामा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो स्वयं दूर रहकर दूसरों को आग में कूदने का उपदेश देते रहते हैं। क्रांति तो उनके खून की हर बूंद में थी। वे बराबर इस प्रयत्न में रहती थीं कि यदि अपना गला फंसाकर भी साथियों को बचाया जा सकता है तो उन्हें अवश्य बचाया जाए। एक बार की बात है, वीर सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके भारत ले जाए जा रहे थे, जब उनका जहाज 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के बंदरगाह मार्सिलिस के निकट पहुंचा तो वे जहाज से समुद्र में कूद पड़े।
15: वंदे मातरम।
16: क्या हुआ, क्या हुआ?
17: अरे वो देखो, कोई कूद गया समुद्र में।
16: कौन कूदा?
17: सावरकर भाग रहा है।
16: अरे सावरकर कौन था उसके? Who is the in charge?
15: सिपाहियों, शूट हिम, गोली मारो।
7: और सावरकर गोलियों से बचते हुए फ्रांस की भूमि पर जा पहुंचे।
14: फिर क्या हुआ? क्या वो वहां से बचकर निकल गए?
7: नहीं, उन्हें आशा थी कि वहां उन्हें भागने के लिए कार लिए हुए मदाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा मिल जाएंगे, पर जब वे वहां नहीं मिले तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने वीर सावरकर को पकड़कर फिर जहाज की कोठरी में डाल दिया और जहाज को शीघ्र ही वहां से ले गए।
14: तो नवीन भाई, ये क्या पहले से योजना थी कि मादाम कामा उन्हें वहां मिलेंगी? और यदि ये योजना थी तो मादाम कामा वहां क्यों नहीं आई?
7: अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उनकी कार फ्रांस के तट पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची थी, पर उनको ये जानकर बड़ी निराशा हुई कि उस दिन जहाज अपने समय से बहुत पहले ही किनारे लग गया था और समय से बहुत पहले ही वहां से चल भी दिया था। इसका कारण यह था कि जब वीर सावरकर समुद्र में कूद पड़े तो उनका पीछा करने के लिए जहाज को अपनी गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण वो किनारे पर समय से पहले पहुंच गया। और जब वीर सावरकर को फ्रांस की भूमि पर पकड़ लिया गया तो किसी अन्य मुसीबत से बचने के लिए जहाज वहां से शीघ्र ही चल दिया।
14: तो क्या मदाम कामा सिर्फ विदेशों की ही गतिविधियों में भाग लेती थी?
7: नहीं भाई, भारत में भी उन दिनों क्रांतिकारी घटनाएं बड़ी तीव्रता से घट रही थी और मदाम कामा किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ी हुई थी।
14: नवीन भाई, कोई और वाकया हो तो बताएं।
7: एक बार की बात है, नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को क्रांतिकारी युवक कन्हारे द्वारा कर दी गई। इसी प्रकार टिन्नेवाली के न्यायाधीश मिस्टर ऐश की हत्या 17 जून 1911 को एक क्रांतिकारी वांची अय्यर ने कर दी। जब दोनों मामलों में पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर पर शक हुआ।
18: Damn it! ये पिस्टल्स इंडिया कैसे आए?
19: सर, सरदार सिंह राणा एंड विनायक दामोदर सावरकर ने चतुर्भुज अमीन के जरिए लंदन से इंडिया भेजी।
18: What? इन इंडियन के पास पैसा किधर से आया?
19: सर, ब्राउन इन मॉडल का 20 पिस्टल्स इंडिया आया था, जिन्हें खरीदने के लिए मैडम कामा ने इंतजाम किया था।
18: कैसे भी करके इन दोनों इंडियंस को गिरफ्तार किया जाए। अरेस्ट देम।
14: मैडम कामा ने इंतजाम किया, फिर तो वो पकड़ी गई होंगी।
8: नवीन भाई, लेकिन ये पूरा किस्सा क्या था?
7: अरे सही बात तो ये थी कि वे 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें सरदार सिंह राणा और सावरकर द्वारा ही सरदार सिंह राणा के संदूक में रखकर इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत भेजी गई थी और ऊपर वाले पेंदे पर अन्य सामान रख दिया गया था।
14: फिर क्या हुआ नवीन भाई? फिर मदाम कामा का क्या हुआ? मुकदमा तो इन पर भी हुआ होगा।
7: अरे यही तो बात थी, मदाम कामा ने फिर एक कहानी की रचना की और मिस्टर जैक्सन व मिस्टर ऐश की हत्या के संबंध में कुछ जानकारी देने की पेशकश उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से की और ब्रिटिश काउंसिल के सामने मदाम कामा ने अपना बयान इस प्रकार दिया।
12: मिस्टर जैक्सन और मिस्टर ऐश की हत्या जिन पिस्तौलों से हुई है वे मैंने ही भारत भेजी थी। सरदार सिंह राणा और किसी अन्य का उन्हें भारत भेजने में कोई हाथ नहीं है। ये ठीक है कि वो संदूक सरदार सिंह राणा का था, पर वो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था और सरदार सिंह को बिना कुछ बताए ही उस संदूक का उपयोग मैंने पिस्तौलें भेजने के लिए किया। इस संबंध में सावरकर को भी मैंने कुछ नहीं बताया। वे दोनों लोग निर्दोष हैं और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है।
7: ब्रिटिश काउंसिल इस बयान को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने बयान की रसीद मदाम कामा को देकर उन्हें विदा कर दिया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मदाम कामा ने यह सारी कहानी की रचना अपने साथियों को बचाने के लिए की। ऐसी थी मदाम कामा।
14: वाह नवीन भाई, क्या जीवट महिला थी। अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल दी।
7: जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में पराधीन भारत की स्वाधीन होने की आकांक्षा को सर्वाधिक प्रचारित किया मदाम कामा ने। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग वे देश के काम के लिए कर रही थी। देश के किसी लाडले की वीरतापूर्ण गाथा सुनकर वे खुशी के मारे नाच उठती थी और देश के ऊपर होने वाले दमन तथा अत्याचार की कहानियां सुनकर वो रो उठती थी।
4: रात के 2 बज रहे हैं, आप आराम कर लीजिए, नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। खाने की चिंता तो आपको है ही नहीं।
20: और क्या खाऊं? उन अत्याचारियों ने 17 अगस्त 1909 को मेरे बच्चे मदनलाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया। मेरे बच्चे, वो फंदा मेरे गले में क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं मेरे गले में? दुष्टों ने उसकी हत्या कर दी। मेरे बच्चे।
7: मदनलाल ढींगरा को फांसी हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर मदाम कामा उसे भुलाए नहीं भूल पाती थी। उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। जब 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी हुई थी तो कुछ दिन तक मदाम कामा पागलों जैसा व्यवहार करती रहीं। और भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य जब सन 1913 में मदाम कामा से मिलने फ्रांस पहुंचे तो मदनलाल ढींगरा का जिक्र निकल पड़ा।
21: तू आदिनाश है या मदनलाल ढींगरा? तू वापस आ गया मदन? तू वापस आ गया अपनी माँ से मिलने? चल चल, हम दोनों सारे अंग्रेजों को मार देंगे। चल चल चल ना मेरे साथ, चल। वो देख, वो रहा अंग्रेज। मार उसे।
20: वो भाग गया। मार ना उसे, भाग गया वो।
7: और फिर 1914 को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर इंग्लैंड ने भारत से हिंदुस्तानी फौजें लाकर मोर्चे पर अड़ा दी। तब मदाम कामा बंदरगाह पहुंच गई।
12: मेरे वीर बच्चों, अंग्रेजों की तरफ से मत लड़ो। अरे, जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया, जिस भारत माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया, आज तुम उसी भारत माँ के मान को अपने पैरों तले रौंदने जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में बह रहा खून ठंडा हो गया है? भारत माँ के शेर अब तुम दूसरों के इशारों पर नाचोगे? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि तुम इतना भी नहीं समझते कि तुम लोग उस देश की तरफ से लड़ने जा रहे हो जिसने हमारी भारत माँ को कैद कर रखा है? यदि अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे तो भारत माता के बंधन और दृढ़ होते चले जाएंगे। याद रखो, ये युद्ध हमारा नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, तुम्हें मरने के लिए मोर्चे पर भेजा जा रहा है। अपनी मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से तुम लोग मत लड़ो।
7: इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में मित्र देश थे। उन्होंने कामा से डरकर उन्हें एक पुराने किले में कैद कर लिया। 4 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ा गया। तब उनके स्वास्थ्य का सर्वनाश हो चुका था। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पेरिस की एक अंधेरी गली के मकान में बिताए। फिर उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल गई। उन्होंने बीमार हालत में समुद्री यात्रा की। जिस समय उन्होंने भारत छोड़ा था उस वक्त वे युवती थी। अब 70 वर्ष की वृद्धा होकर भारत लौट रही थी। 8 महीने अस्पताल में रहने के पश्चात 1936 को वो इस दुनिया से चल बसी।
13: नवीन, मुझे लगता है उनकी मृत्यु किसी शहादत से कम नहीं। अरे, फांसी लगने से ही कोई शहीद कहलाए, ये जरूरी थोड़ी है।
8: चलिए, भोजन तैयार है।
7: अरे भैया, महाराज ने भोजन लगा दिया है, चलिए भोजन कर लीजिए।
4: नहीं नवीन भाई, उस महान क्रांतिकारी की गाथा सुनकर नहीं। नहीं, आज मादाम कामा की स्मृति और शहादत में हम लोगों का आज उपवास है। धन्य है भारत देश,
11: धन्य है हम कि हमने भारत में जन्म लिया।
0: प्रस्तुति स्वराज संस्थान, संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भीकाजी रुस्तम जी कामा के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: देश का चैनल देश के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व। आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का कार्यक्रम पंडित विनायक राव पट्टवर्धन पर केंद्रित है।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक की एकाग्रता अद्भुत थी। जब भी घर में या पास के मंदिर में भजन कीर्तन होता, विनायक खेल कूद छोड़कर घंटों वहां बैठ जाते और उनकी आंखें सम्मोहन में बंद हो जाती। उनके चाचा ने भांप लिया था कि इस बालक के भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि संगीत का कोई महान साधक छुपा है।
0: लेकिन नियति ने इतनी कम उम्र में ही विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे, तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंत्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहां न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं, बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधार्य किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत, साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और तीन सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउडस्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीण का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाटक गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे, लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था, बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर, यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहां पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं, जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक एकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृषकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कांधड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाद है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य गृह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यावसायिक नाटमंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के रूप में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन जी ने देश भर में संगीत का प्रचार किया। ओंकारनाथ जी उनकी बेजोड़ लयकारी और तान की सटीकता की हमेशा सराहना करते थे और उनके शिष्य एवं गुरु पुत्र पंडित डीवी पुलस्कर तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूं उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
1: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश,
0: और मैं थी मनीषा।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का कार्यक्रम पंडित विनायक राव पटवर्धन के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: शांति पाने की इच्छा से विवेकानंद काशी पहुंचे, पर उनका अशांत मन शांत न हो पाया। उनके गुरुजी ने समाज का उद्धार करने का जो कठिन व्रत उन्हें दिया था, उसका कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे। काशी से 22 जनवरी सन 1890 को वे गाजीपुर पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि विख्यात साधु श्री पभारी बाबा से मिलने की। वहां वे अपने बचपन के साथी श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के पास ठहरे। कई बार प्रयत्न करने पर भी उन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था,
1: बड़े भाग्य से बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, वे महापुरुष हैं। आज इस नास्तिकता के युग में वे भक्ति तथा योग की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ये बात साधारण नहीं है, मैं इनकी शरणागत हुआ हूं। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो सभी के भाग्य में प्राप्त नहीं होता।
2: पभारी बाबा पहले से ही श्री राम कृष्ण के बारे में जानते थे। स्वामी जी को उन्हीं का शिष्य जानकर वे उनका सत्कार करने लगे। धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो गए। जिस समय वे धर्म राज्य की उच्चारी अनुभूति तथा कठिन दार्शनिक तत्संबंधी चर्चा करने लगते थे, उस समय उनका वार्तालाप ऐसी उच्च स्थिति पर पहुंच जाता था कि अन्य उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी उसका मर्म समझ नहीं पाता था।
0: घनिष्ठ परिचय हो जाने से महान तपस्वी पभारी बाबा पर स्वामी जी बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या कारण है कि भगवासन श्री राम कृष्ण की असीम कृपा के अधिकारी होकर भी आज तक मुझे शांति नहीं मिली। संभव है कि इन ब्रह्म पुरुष की सहायता से मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा।
2: पभारी बाबा का जन्म काशी के निकट एक गांव में ब्राह्मण वंश में हुआ था। बाद में गाजीपुर आकर अपने एक विद्वान चाचा से विद्यार्जन कर व्याकरण और न्यायशास्त्र के वे पंडित हो गए। उनके चाचा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद वे सत्य की खोज में भारत के विभिन्न स्थानों का परिव्राजक के रूप में पर्यटन करते रहे। इसी क्रम में किसी एक समय काठियावाड़ के गिरिनार पर्वत की चोटी पर वे योग के रहस्यों में दीक्षित हुए। गिरिनार से वे काशी लौट आए। वहां उन्हें गंगा तट पर एक गुफावासी सन्यासी का दर्शन हुआ। उनसे अद्वैत वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया। तदुपरांत दीर्घ काल तक तपस्या और तीर्थ भ्रमण कर वे गाजीपुर के पुराने निवास स्थान पर लौट आए। इसके अनंतर शीघ्र ही काशी धाम के अपने गुरु के आदर्श के अनुरूप शहर से 2 मील उत्तर नदी के तट पर एक गुफा बनाकर उसमें तपस्या करने लगे। स्वामी जी जब गाजीपुर गए तब बाबा जी दिन का अधिकांश समय गुफा में ही व्यतीत करते थे और रात में नदी के दूसरे किनारे पर जाकर वहां भी साधना निरत रहते। उनके भोजन में केवल एक मुट्ठी नीम के पत्ते अथवा कुछ मिर्च थे। वे हर प्रकार के कर्म को भोजन की आराधना मानते। इष्ट देवता को भोग निवेदन करने के बाद वे प्रसाद स्वयं न खाकर समागत साधुओं और दरिद्रों में बांट दिया करते। वस्तुतः वे इतने स्वल्पाहारी थे कि लोगों ने उनका नाम रखा था पभारी, अर्थात पवन आहारी बाबा।
0: लोगों ने देखा कि उन्होंने गुफा में दिन पर दिन यहाँ तक कि पूरा महीना बिता दिया। उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के सोचा कि वे कैसे बचे रह सकते हैं, शायद मर तो नहीं गए। बहुत समय के बाद देखा गया कि वे जीवित हैं और ओट में रह करके इच्छा अनुसार 2-4 बातें भी करते हैं। जीवन के अंतिम भाग में वे बिल्कुल बाहर नहीं निकला करते थे। अंत में एक दिन मांस के जलने की दुर्गंध और बहुत अधिक धुआं निकलते देख लोगों ने गुफा में झांक करके देखा। विराट होम अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने शरीर की आहुति दे दी है। उनकी आत्मा इस बीच शरीर पिंजर का परित्याग कर समाधि मार्ग के द्वारा परमात्मा में एकाकार हो गई है। यह निश्चय ही बाद की बात है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय भी पवहारी बाबा का नाम लोगों की जबान पर था और उनके दर्शन की लालसा से दूर दूरांतर से लोग आया करते थे। अतः स्वामी जी जो ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लालायित हुए तो इसमें आश्चर्य क्या है।
2: परंतु बाबा जी का दर्शन होना सहज नहीं था। गुफा के ऊपर एक कुटिया थी, वे बातें करना चाहते पर बाबा जी गुफा के द्वार पर स्थित उस कुटिया में आकर बंद दरवाजे की ओट से ही बातें करते। इसी से स्वामी जी ने भी आसानी से दर्शन नहीं पाया। बाद में बहुत प्रयास करने पर सफल मनोरथ होकर 4 फरवरी को प्रमदा बाबू को लिखा,
1: बड़े भाग्य से बाबा जी का दर्शन हुआ। वास्तव में वे महापुरुष हैं। बड़े आश्चर्य की बात है किस नास्तिकता के युग में भक्ति एवं अद्भुत क्षमता के वे अलौकिक प्रतीक हैं। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जो हरेक के भाग्य में नहीं। बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहां ठहरूं, वे मेरा कल्याण करेंगे। अतएव इन महापुरुष की आज्ञा अनुसार मैं कुछ और दिन यहां ठहरूंगा।
2: बाबा जी के पास ही रहने के अभिप्राय से स्वामी जी ने इसके बाद गगन बाबू के एक उद्यान भवन में रहने का संकल्प किया और स्वामी अखंडानंद को एक चिट्ठी लिखकर सूचित किया।
1: यहाँ एक सज्जन है जिनके छोटे बगीचे में एक सुंदर बंगला है, मैं वहां ठहरना चाहता हूँ। वो बगीचा बाबा जी के निवास स्थान से निकट है। वहां बाबा जी का एक भाई रहकर साधुओं की सेवा करता है, मैंने उसी स्थान पर भिक्षा ली।
0: बाबा जी उद्यान भवन के समीप गंगा के किनारे एक बड़ी सुरंग के अंदर समाधिस्थ होकर के पड़े रहते थे। स्वामी जी उन दिनों 2 महीने तक कमर के दर्द से पीड़ित थे। इतने निकट रहने पर भी बाबा से नियमित मिलना संभव नहीं हो पाता था, परंतु बाबा जी आदमी भेज करके उनकी खोज खबर लिया करते थे। स्वामी जी को एक और असुविधा यह थी कि वे इस समय उदर रोग से ग्रस्त थे। भिक्षा से प्राप्त भोजन सामग्री उन्हें पचती नहीं थी।
2: गाजीपुर में निवास करते समय स्वामी जी से अनेक अंग्रेजों की बातचीत हुई थी। गगन बाबू ने अफीम विभाग के उच्च पदाधिकारी रॉस साहब से उनका परिचय करवा दिया। रॉस साहब ने भी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न कर उनसे हिंदू धर्म के अनेक तत्वों को जान लिया एवं होली के संबंध में उनसे एक लेख लिखने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने लेख लिख दिया। इस प्रकार स्वामी जी की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर रॉस साहब ने स्थानीय जिला जज पेनिंगटन साहब से उनका परिचय करवा दिया। स्वामी जी से हिंदू धर्म की व्याख्या सुनकर जज साहब इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उनसे इंग्लैंड जाकर उसका प्रचार करने का अनुरोध किया। कर्नल रिबेट कनार्क नामक एक अन्य अंग्रेज सज्जन से भी वेदांत विषय पर स्वामी जी की लंबी चर्चा हुई। स्वामी जी ने सुना था कि पवहारी बाबा ने योग मार्ग की साधना द्वारा सिद्धि लाभ की थी, अतः उनके हृदय में पवहारी बाबा से योग सीखने की इच्छा जागृत हुई। वे बाबा जी को पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आपको मुझे योग की शिक्षा देनी ही होगी। अत्यंत आग्रह देखकर पवहारी बाबा ने भी हाँ कह दिया। स्वामी जी अब शुभ दिन की प्रतीक्षा करने लगे।
0: एक दिन रात्रि में स्वामी जी पवहारी बाबा की गुफा में जाने के लिए तैयार हुए। श्री राम कृष्ण या पवहारी बाबा, प्रश्न मन में आते ही उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। संदेह पूर्ण चित से विवेकानंद भूमि पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण की असीम कृपा, गंभीर प्रेम, स्नेहयुक्त व्यवहार एक एक करके उनकी स्मृति में आने लगे और इससे उनका व्यथित चित आत्मधिक्कार से भर गया। एकाएक उनका अंधकार में कक्ष दिव्य आलोक से उद्भाषित हो उठा। स्वामी जी ने अपने सजल नेत्रों को उठा करके देखा, दिव्य दर्शन। उनके जीवन के आदर्श दक्षिणेश्वर के वही अद्भुत देव मानव उनके सामने खड़े हैं। उनके उज्जवल तथा विस्तृत नेत्रों में स्नेह, करुणा, एवं व्यथापूर्ण भत्सरना थी। विवेकानंद अवाक रह गए। प्रहर तक पत्थर की मूर्ति की तरह वे जमीन पर बैठे रहे। प्रातःकाल हुआ, मन में संकल्प विकल्प होने लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण का वह दर्शन मस्तिष्क की दुर्बलता का फल तो नहीं था।
2: अगली रात को वे फिर से पभारी बाबा के पास जाने को तैयार हुए, पर आज भी वही पहले की देखी हुई ज्योतिर्मूर्ति उसी तरह उनके सामने खड़ी हो गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार 21 दिन इसी प्रकार व्यतीत होने पर अंत में वे मर्म वेदना से भूमि पर लोटपोट होकर आठ स्वर में बोल पड़े।
1: नहीं प्रभु, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। हे राम कृष्ण, तुम ही मेरी एकमात्र आराध्य हो, मैं तुम्हारा ही दास हूं। मेरी इस मानसिक दुर्बलता के अपराध को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो।
0: कुछ दिनों के बाद उनके द्वारा रचित गीता में शीर्षक कविता के कुछ अंश में हम इस घटना का थोड़ा बहुत आभास पाते हैं।
1: बाल केली करता हूं तुमसे मैं, और क्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना कभी चाहता हूं। किंतु निशा काल में शैया के शिरोभाग में देखता हूं तुमको मैं खड़े हुए चुपचाप, आंखें छलछलाई हुई। हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर, उसी समय बदल जाता भाव मेरा। पैरों पड़ता हूं पर क्षमा नहीं मांगता। तुम नहीं करते हो रोष, पुत्र हूं तुम्हारा। कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। प्रभु हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा मेरे हो। कभी देखता हूं तुम मैं हूं, मैं तुम हूं।
0: जब वे स्टेशन से गाजीपुर से उस पार ताड़ीघाट स्टेशन पर उतरे तो वह समय दोपहर का था। स्वामी जी के सामानों में एक तीसरे दर्जे का टिकट, एक कंबल और पहनने के लिए कुछ गेरवा कपड़े थे। साथ में और कुछ, यहां तक कि एक जल पात्र भी नहीं था। चौकीदार ने उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छांव में नहीं बैठने दिया, बाहर कर दिया। विवश होकर के वे जमीन पर कंबल बिछा करके विश्रामागार के बाहर एक खंभे से टिक करके बैठ गए। आसपास में लोग थे, उनमें एक व्यापारी स्वामी जी के बिल्कुल सामने छावनी के नीचे दरी पर आराम से बैठा था। स्वामी जी को क्लांत देख करके अनेक प्रकार के व्यंग कर रहा था। वह व्यक्ति और उसके कई साथी स्वामी जी के साथ रेलगाड़ी में एक डब्बे में बैठकर आए थे, और रास्ते में भी वह ऐसा करने से बाज नहीं आ रहा था।
2: यहाँ आने पर भी उसका व्यंग नहीं रुका। प्लेटफॉर्म पर छाया में आराम से बैठकर वो पुनः उपदेश झाड़ने लगा। अरे देखा, पैसे की क्या शक्ति है, तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, उसका फल भी देखा, और मैं रुपए पैसे कमाता हूँ, उसका सुफल भी देख लो। ये कहकर वे अपने साथ लाए खाद्य पदार्थों को खोलकर खाने लगा, और स्वामी जी को वे सब वस्तुएं दिखा दिखा कर कहने लगा, ये सारी पूड़ियां, कचौड़ियां, पेड़े, मिठाइयां क्या बिना पैसे के मिल सकती हैं? स्वामी जी सब कुछ देख और सुन रहे थे तथा बिना कुछ कहे सारे अपमानों को सहन करते जा रहे थे।
0: उसी समय अचानक एक दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसके दाएं हाथ में थी एक गठरी, एक लोटा तथा बाएं हाथ में एक गगरी जल और एक दरी थी। स्टेशन पर इधर उधर घूमकर फिर स्वामी जी के निकट आकर के उसने कहा,
3: अरे बाबा जी, आप धूप में क्यों बैठे हैं, छांव में चलें। मैं आपके लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आया हूँ, दया पूर्वक ग्रहण कीजिए।
2: स्वामी जी तो अचानक विश्वास ही नहीं कर सके। व्यंग करने वाला व्यापारी भी तब आश्चर्य से अवाक हो गया। नवागत व्यक्ति द्वारा स्वामी जी को बार बार भोजन के लिए अनुरोध करने पर स्वामी जी ने कहा,
1: भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो, शायद किसी दूसरे को देने के लिए आकर भूल से मेरे पास चले आए हो।
3: नहीं नहीं, आप ही हैं वो बाबा जी जिन्हें मैंने देखा है।
1: मतलब तुमने मुझे कब देखा?
3: महाराज मैं आपसे कभी मिला तो नहीं।
1: फिर?
3: मैं हलवाई हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। दोपहर को भोजन के बाद सोया था, उसी समय सपने में देखा कि श्रीराम जी आकर मुझसे कह रहे हैं कि मेरा एक साधु स्टेशन पर खड़ा हुआ बिना खाए दुख भोग रहा है, कल से ही उसने खाया पिया नहीं है, तुम तुरंत जाकर उसकी सेवा करो। महाराज मेरी नींद खुल जाने पर भी दूसरे ही क्षण से मैंने मन का भ्रम समझकर करवट बदल कर सो गया, परंतु श्रीराम कृपा कर पुनः आए और मुझे सचमुच में धक्का मार कर उठा दिया और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही करने का आदेश दे दिया। तब महाराज मैं बिस्तर त्याग कर उठा और तुरंत कुछ पूड़ियां और सब्जियां बनाई और सुबह की बनाई हुई कुछ मिठाइयां जल और तंबाकू लेकर जल्दी स्टेशन आ गया।
1: मैं ही वो साधु हूँ, तुमने कैसे जाना?
3: महाराज पहले मुझे भी ये संदेह हुआ था, इसलिए यहाँ आते ही एक बार चारों ओर घूमकर देख लिया, किंतु किसी दूसरे साधु को नहीं देखकर मैं समझ गया महाराज कि आपके अतिरिक्त कोई और साधु हो ही नहीं सकता।
1: अच्छा अच्छा, तब ठीक है,
3: चलिए महाराज छांव में चलिए।
1: धन्यवाद भाई।
3: अरे नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, सब राम जी की लीला है।
2: इसके बाद उसने स्वामी जी को छाया में बैठा कर भोजन करवाया, भोजनोपरांत हाथ पर जल डाल दिया तथा चिलम भर कर दिया। व्यापारी अब तक अवाक होकर सारी घटनाएं देख रहा था और कान लगाकर सब सुन रहा था। अंत में उसे और संदेह नहीं रहा कि स्वामी जी एक उच्च अवस्था संपन्न महात्मा हैं। उसे भय भी हुआ कि इनका अपमान करने के कारण उसका भयंकर अनिष्ट होना निश्चित है। तब उसने अनुनय हृदय से प्रणाम करने के बाद अपने किए गए अपराध के लिए स्वामी जी से क्षमा याचना की।
0: स्वामी अभिदनंद जी की अस्वस्थता का समाचार पाकर के स्वामी जी गाजीपुर छोड़ चले। काशीधाम पहुंचकर उन्होंने अभिदनंद जी की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की। जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो स्वामी प्रमदादास जी को उनके टहल में नियुक्त करके स्वामी जी बाबू प्रमदादास मित्र के बगीचे वाले मकान में रहने लगे। इसी समय एक दिन स्वामी जी को श्री रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त बाबू बलराम बसु के परलोक सिधारने का समाचार मिला। इससे स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। गुरु भाई के वियोग की व्यथा से कातर होकर के स्वामी जी को विलाप करते देख प्रमदा बाबू ने कहा,
4: ये क्या स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, शोकाकुल होना आपको शोभा नहीं देता।
1: आप क्या सोचते हैं कि प्रकृत सन्यासी में हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं होती? प्रकृत सन्यासी दूसरों के लिए साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सहानुभूति का अनुभव करते हैं। विशेषता मैं तो मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, और फिर वे मेरे गुरु भाई जो थे, हमने एक साथ ही श्री रामकृष्ण के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी, उनके वियोग में जो मैं कातर हूं, इसमें विचित्र बात क्या है? पत्थर की तरह अनुभूति शून्य सन्यासी का जीवन मेरे लिए इप्सित नहीं है।
2: बलराम बाबू की मृत्यु के बाद शोकाकुल बसु परिवार को सांत्वना देने के लिए तथा वराहनगर मठ की व्यवस्था आदि के लिए स्वामी जी काशी से कलकत्ता लौट आए। इसी बीच 25 मई को मठ के एक मित्र तथा सहायक एवं श्री रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्य सुरेश चंद्र मित्र का देहांत हो गया। इससे अब मठ का खर्च चलाने के लिए स्वामी जी चिंतित हो गए। 2 महीने कलकत्ता व वराहनगर में रहकर स्वामी जी ने मठ का खर्च चलाने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद उनके मन में भारत भ्रमण की इच्छा फिर तीव्र हो उठी। एक ओर तो नवगठित श्री रामकृष्ण संघ के प्रति तीव्र ममत्व बोध और दूसरी ओर सत्यकाम सन्यासी की निसंग साधना का आवेग, इन दो विरुद्ध भावों के संघर्ष में विचलित होकर स्वामी जी ने मन ही मन संकल्प किया कि सभी बंधनों को, यहाँ तक कि गुरु भाइयों के निस्वार्थ प्रेम बंधन तक को छिन्न करना होगा। जिस शक्ति के बल पर श्री रामकृष्ण के महान आदर्श का प्रचार किया जा सकता है, उसी शक्ति को प्राप्त करूंगा, अन्यथा इसी चेष्टा में प्राण त्याग दूंगा। बस यही संकल्प उनके मन में दृढ़ हो गया।
0: उसी समय श्री रामकृष्ण भक्तों की माता श्री शारदा देवी भगीरथी के पश्चिम तट पर घुड़सी गांव में निवास करती थी। स्वामी जी मठ छोड़कर जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा से वहां गए। श्री माता जी के पवित्र चरणों की वंदना करते हुए गंभीर श्रद्धा में उन्होंने कहा,
1: जब तक श्री गुरु के चित कार्य को मैं संपन्न न कर लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। तुम आशीर्वाद दो, मेरा संकल्प सिद्ध हो।
2: सन 1890 ईस्वी के जुलाई मास में मठ भवन छोड़ने के बाद स्वामी जी ने पहले पहले भागलपुर में वकील मथुरानाथ सिंह के मकान पर कुछ दिन व्यतीत किए। वहां से विदा लेकर वे अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ देवघर आए। वहां स्वामी जी ने श्रद्धे राजनारायण बसु से भेंट कर एक दिन उनके साथ धर्म चर्चा की। देवघर से काशी आकर उन्होंने प्रमदादास बाबू का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय उन्हें हिमालय आकर्षित कर रहा था, अतः वे अधिक दिन काशी में ना रहे। विदा लेने से पूर्व वे प्रमदादास बाबू से कह गए,
1: जब मैं लौटूंगा तो समाज के ऊपर बम की तरह फूट पड़ूंगा और समाज मेरे पीछे चलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और जीवन मूल्यों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ आरंभ होगी। उसके बाद 5:10 पर सुनेंगे भक्ति संगीत। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी केसरी सिंह बारहट के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 6:30 पर आमने सामने कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवाएंगे पद्मश्री पुरातत्वविद नारायण व्यास से। शाम 7 बजे वागर्थ कार्यक्रम में आज हम सविता भार्गव का काव्य पाठ सुनेंगे। शाम 7:30 पर जैज संगीत पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण होगा और 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी भीकाजी रुस्तम जी कामा के जीवन पर केंद्रित होगा। और रात्रि के 9 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में आज हम शास्त्रीय गायक पंडित विनायक राव पटवर्धन के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9:30 पर सुने स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुतियां सुनते रहें।

स्वतंत्रता दिवस पर जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से अपने घर पर लगाएं देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ये तिरंगा ये हमारी जान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। अपने घर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लगाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी खींचें और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.harghartiranga.com। स्वराज संस्थान संचालनालय एवं रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
1: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान। और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश करेंगे नीलाद्री कुमार, और उसके बाद मांगड़ियार गायन की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसे पेश करेंगे गाजी खां और उनके साथी कलाकार। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं नीलाद्री कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सितार वादन, जिसे पेश कर रहे थे नीलाद्रि कुमार। और अब सुनिए गाजी खां और साथी कलाकारों का मांगड़ियार गायन।

ये अलगोजा है, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में बजाते हैं, इसको डबल फ्लूट कहते हैं। ये शीशम की लकड़ी का है। ये बनो खान आपको अलगोजा सुना रहे हैं धुन।

तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मांगड़ियार गायन, जिसे पेश कर रहे थे गाजी खां और उनके साथी कलाकार। अब दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती,

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारत भारती कार्यक्रम के जरिए अलग अलग किस्म के अलग अलग रंगों के प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जाते रहे हैं, और आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का दिल से खैर मकदम इस्तकबाल।

0: तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं कव्वाली, और जिस फनकार के फन से रूबरू करवाएंगे उनका नाम है मुकर्रम अली वारसी। जी हाँ, मुकर्रम अली वारसी साहब, जो कि हमारे भोपाल शहर के ही रहने वाले हैं। आप 13 साल की छोटी उम्र से ही कव्वाली पेश करते आ रहे हैं। आपने दुबई, शारजा के अलावा हिंदुस्तान के सभी शहरों में कलाम पेश किए हैं। जिक्र पंजतन अवार्ड और पुणे फेस्टिवल में महाराष्ट्र सरकार ने भी आपको अवार्ड से नवाजा। तो आइए आपको सुनवाते हैं कव्वाली जनाब मुकर्रम अली वारसी साहब की बुलंद आवाज में। तबले पर संगत दे रहे हैं राजीव कुमार जी, ढोलक पर संगत है सतीश कुमार जी की, ऑक्टोपैड पर हैं जनाब मंजर अली, और कोरस पर साथ हैं जनाब मंजीत राव जी, संतोष राव जी, सुरेश कुमार जी, सूफी खान जी, खुर्रम खान जी और जनाब यासीन खान।
1: तमामी हजरात जितने तशरीफ फरमा हैं, आप सभी से इजाज़त चाहते हैं और आगाज़ हमदे बारी से कर रहे हैं, समाप्त कीजिए।

शुक्रिया, नवाजिश लीजिए। मुख्तसर से वक्त में एक गजल आपकी खिदमत में नजर कर रहे हैं, समाप्त कीजिए।

नाकाम हम हुए, उनको हवा ने छेड़ा तो बदनाम हम हुए।

ईमान है इस बात पर, शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, अरे इसके सजदों में असर हो,

0: अबुल असर का खिताब पाने वाले जनाब हफीज जालंधरी साहब का एक शेर याद आ गया, फरमाते हैं कि बहिश्त में भी मिला है मुझे ये अजाब शदीद। ओहो, बहिश्त और अजाब, बड़ी अजीब बात है। बहिश्त में भी मिला है मुझे ये अजाब शदीद, यहां भी मौलवी साहब है मेरे हमसाए।
1: तो यहां भी मौलवी साहब है मेरे हमसाए।
0: तो कोई हंसे तो तुझे गम लगे।

बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद शेर गलत पढ़ दिया है, क्योंकि उसूल ये है कि मजनू को नजर आना चाहिए, मजरू नजर आता है और लैला नजर आती है, लेकिन साबित कर रहा हूं कैसे,

खुसरो से दलील दे दूं, उल्टी ही चाल चलते हैं। हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं, खुसरो दरिया प्रेम की सो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, उल्टी

हमसे तवक्को नहीं है। सिला अपनी वफा का, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। देखिएगा, अपनी फितरत कभी पत्थर बदल नहीं सकता, यानी अपनी फितरत पिघल नहीं सकता, और बेवफा से वफाओं की क्या उम्मीद, सांप मोती उगल नहीं सकता। देखिएगा, वफाओं की हमसे तवक्को

सभी धर्म के लोग तशरीफ फरमा है। देखिएगा, चंद अशार नजर कर रहा हूं और इन दोनों में एकताई देखिएगा, दोनों बातों में। आहा, और जहन में रखें, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है।

0: शुक्रिया नवाजिश करम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कव्वालियां कार्यक्रम भारत भारती में जनाब मुकर्रम अली वारसी साहब और साथियों की आवाज में। अब दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि 10 बजे तक निरंतर रहेगी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 188 से वाचन। ऋषि है अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता है इद्म, तनूनपात, इड, बहिर, देवी द्वार, उषा सनाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस, तीन देवियां हैं सरस्वती, इला, भारती, त्वष्टा, वनस्पति और स्वाहाकृति। छंद है गायत्री।
1: समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः सहस्रजित दूतो हव्या कविर्वह। हे सहस्रों शत्रुओं के विजेता अग्निदेव, देवों द्वारा तेजस्वी रूप में आज आप प्रदीप्त हो रहे हैं। हे क्रांतदर्शी, आप हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को दूत की तरह देवों तक पहुंचाएं। तनून पादृतम यते मध्वा यज्ञः समज्यते दधत सहस्रिणी ऋषः। स्वास्थ्य संरक्षक पूजनीय अग्निदेव, सहस्रों प्रकार के अन्नों में प्राण तत्व को परिपोषित करते हुए यज्ञ भूमि में जाते हैं और वहां हविष्यान्नों में मधुर रसों का संचार करते हैं। आजुहुआनो न ईड्यो देवाम आवक्षि यज्ञियान अग्ने सहस्रसा असि। हे अग्निदेव, आप सहस्रों प्रकार की ऐश्वर्य संपदा के धारण करता हैं, अतएव हमारे द्वारा आवाहित किए जाने पर आप अनेक आदरणीय देवताओं सहित हमारे यज्ञ में पधारें। प्राचीनम बर्हि रोजसा सहस्र वीर मस्त्रणन यत्रादित्या विराजथ। हे आदित्यगण, प्राचीन काल से हजारों देवगणों के साथ आप जिस आसन पर विराजमान होते रहे हैं, ऐसे कुश के आसन को यजमान अपनी शक्ति से यज्ञ स्थल पर बिछाते हैं। विराट सम्राट विभ्वी प्रभ्वीर बहुवीश्च भूयसीश्च याह दुरो घृतान्यक्षरन। विराट तेजस्वी विभु प्रभु यज्ञदेव अनेक द्वारों से घृत की वर्षा करते हैं। सुरुक में ही सुपेश साधि श्रिया विराजतः उषा सावेह सीदताम। उत्तम स्वरूप वाली उषा एवं रात्रि और अधिक शोभा पा रही हैं। हे उषा और रात्रि, आप दोनों हमारे यहां यज्ञ में विराजमान हों। प्रथमा ही सुवाचसा होतारा दैव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामिमम। सर्वोत्तम प्रखर वाणी के प्रयोक्ता दिव्य गुणों से युक्त मेधावी होता हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। भारतीडे सरस्वती या वह सर्वा उपब्रुवे ता नश्चोदयत श्रिये। हे भारती, इडा और सरस्वती, हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप तीनों हमें ऐश्वर्य विभूतियों की ओर प्रेरित करें। त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून विश्वान समानजे तेषां नः स्फातिमा यज। त्वष्टा देव स्वरूप प्रदान करने में सक्षम हैं, वही पशुओं के निर्माता हैं। हे त्वष्टा देव, आप हमारे लिए पशुधन की वृद्धि करें। उपत्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सृज अग्निर्हव्यानि सिस्वदत। हे वनस्पते, आप अपनी सामर्थ्य से हव्य पदार्थ उत्पन्न करें, तब अग्निदेव हव्य का सेवन करें। पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण समज्यते स्वाहा कृतिषु रोचते। देवताओं में अग्रणी रहने वाले अग्निदेव गायत्री मंत्र के उच्चारण से सुशोभित होते हैं, पश्चात स्वाहा शब्द के साथ प्रदत्त आहुतियों से वे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 188 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

हम बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम भक्ति संगीत।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की, जिन लोगों ने समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे विरले पुरुषों का नाम इतिहास में अमर रहता है। राजस्थान के चारण घराने से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि हुए थे केसरी सिंह बारहट। उन्होंने केवल अपनी वाणी और लेखनी से ही वीरता का वर्णन नहीं किया, बल्कि केसरी सिंह बारहट ने उस वीरता को अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। देशप्रेम के दूसरे कवियों की तरह उन्होंने देशभक्ति और आजादी के केवल गीत नहीं गाए, उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। उन्हें राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट और दामाद ईश्वरी सिंह ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केसरी सिंह बारहट आजादी के दीवाने और राष्ट्र चेतना के अमर गायक थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए उनका लालन पालन उनकी दादी मां ने किया। 6 वर्ष की आयु में केसरी सिंह की शिक्षा शाहपुर में महंत सीताराम की देखरेख में आरंभ हुई। 2 साल बाद कृष्ण सिंह ने उदयपुर में काशी से एक विद्वान पंडित गोपीनाथ शास्त्री को बुलवाकर उन्हें संस्कृत की शिक्षा भी दिलवाई। केसरी सिंह बारहट के अपने पढ़ने के लिए उनके पिता कृष्ण सिंह का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास भी उपलब्ध था। केसरी सिंह ने संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं, बांग्ला, मराठी और गुजराती का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। ज्योतिष, गणित और खगोल शास्त्र का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। कुछ समय बाद केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य करना शुरू किया, लेकिन प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने ये नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। केसरी सिंह बारहट का पक्का विश्वास था कि आजादी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है।

केसरी सिंह बारहट ने अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाईं। उस समय राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज में राजाओं और राजकुमारों के लिए अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू कर रखी थी जिसमें ढलकर वे अपनी प्रजा और देश से कटकर अलग थलग पड़ जाएं। इसलिए उन्होंने सन 1904 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता की तरह अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई जिसमें राष्ट्रीय भावना की शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के माध्यम से केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान की आम जनता को सुशिक्षित, सुसंगठित और सुसंस्कृत कर देश को स्वतंत्रता दिलाने का एक भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया था। उनकी इस योजना में सामाजिक और राजनैतिक क्रांति के बीज थे। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ केसरी सिंह बारहट ने एक बिल्कुल ही नए विषय अक्षर के स्वरूप पर अपना शोध कार्य आरंभ किया था। अमेरिका जैसे देश लाखों रुपए खर्च करके भी इस विषय पर शोध कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि शाहपुरा जैसी छोटी रियासत में रहने वाले एक व्यक्ति के दिमाग में अक्षर के स्वरूप की शोध की बात कैसे आई होगी। बहरहाल केसरी सिंह बारहट रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल भी थे। उन्हें जब सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं तो राजस्थान में क्रांति का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला और अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को रास बिहारी बोस के पास भेज दिया। केसरी सिंह बारहट ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखीं। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। देश भर से राजा महाराजाओं को इस दरबार में आमंत्रित किया गया था। ऐसे दरबार का आयोजन अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे, साथ ही राजा महाराजाओं को सम्मानित कर उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की कूटनीतिक चाल भी इसमें शामिल होती थी। दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने सोचा कि इसमें बुराई ही क्या है, दरबार में ही तो शामिल होना है। वीरभूमि राजस्थान की कीर्ति इससे धूमिल हो रही थी। वो राजस्थान जिसके वीर सपूतों की गाथा इतिहास भी गाता रहा है, जिनके पराक्रम और राष्ट्र प्रेम पर अनगिनत कविताएं लिखकर देश भर में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाती थी, उस राजस्थान के लिए ये एक अपयश का विषय था। राजस्थान के क्रांतिकारियों को ये उचित नहीं लग रहा था कि महाराणा उस दरबार में शामिल हों, इसलिए उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सबने क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट को सौंपी। उस समय केसरी सिंह बारहट ने 13 चेतावनी के सोरठे लिखकर राजा को भेजे जो चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें केसरी सिंह बारहट ने लिखा, पग पग भम्या पहाड़ धरा छाण राख्यो धरम, महाराणार मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे, घना घलिया घमसाण राणा सदा रहिया निडर, पेखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। अर्थात भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाईं, फिर भी उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसीलिए आज मेवाड़ के महाराणा जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। महाराणा कभी किसी युद्ध से न तो विचलित हुए और न ही कभी डरे। ऐसे शूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हो गई है, ये समझ से परे है। इन सोरठों का प्रभाव ऐसा हुआ कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। केसरी सिंह बारहट की कलम ने उनकी अंतरात्मा को जागृत कर दिया।

केसरी सिंह बारहट ने सन 1910 में आमेर में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही वे इस कार्य में जुट गए थे। उन्होंने अपने दो रिवॉल्वर क्रांतिकारियों को दिए और कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा और रियासती और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। एक गोपनीय रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार ने कहा कि केसरी सिंह राजपूत रेजिमेंट से संपर्क करना चाह रहे थे। उनका संपर्क बंगाल के विप्लव दल से भी था और वे महर्षि अरविंद से बहुत पहले सन 1903 में ही मिल चुके थे। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी बोस से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था। केसरी सिंह बारहट पर ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल नाम के एक साधु की हत्या और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत और केंद्रीय सरकार का तख्ता पलट और ब्रिटिश सैनिकों की स्वामी भक्ति खंडित करने के षड्यंत्र रचने का संगीन आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। 2 मार्च 1914 को शाहपुरा पहुंचकर वहां के राजा नाहर सिंह के सहयोग से केसरी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे में केसरी सिंह बारहट को 20 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई गई और राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया। जेल में उन्हें पहले चक्की पीसने का कार्य सौंपा गया, जहां वे दाल और अनाज के दानों से क ख ग आदि अक्षर बनाकर अनपढ़ कैदियों को अक्षर ज्ञान देते और अनाज के दानों से ही जमीन पर भारत का नक्शा बनाकर कैदियों को देश के प्रांतों का सही ज्ञान भी कराते थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वो लगातार लिखते रहे। सन 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर केसरी सिंह बारहट सपरिवार वर्धा चले आए। वर्धा में उनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। वर्धा में ही केसरी सिंह बारहट गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे घनिष्ठता हुई। गांधी जी की सलाह पर ही उन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट ने हरिओम तत्सत के उच्चारण के साथ 14 अगस्त सन 1941 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: ...90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी, वरिष्ठ पुरातत्वविद, जिन्होंने लगभग 4 दशक भारतीय पुरातत्व को समर्पित किए हैं। वर्ष 1972 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े और 2009 में अधीक्षण पुरातत्वविद के पद से सेवानिवृत्त हुए। रानी की वाव, सांची, सतधारा, भीमबेटका सहित अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर आपके खोज, उत्खनन, संरक्षण और शोध कार्य हम सभी के सामने हैं। भारतीय शैल चित्रों के अध्ययन और संरक्षण में आपका विशेष योगदान रहा है। आपके पुरातात्विक जीवन को दिशा देने में आपके गुरु पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध, लेखन और विद्यार्थियों

0: मिली जो आगे चलकर आपके काम का पूरा आधार बनी।
1: इसके विषय में थोड़ा ये बताना चाहूँगा अपने बचपन की बात।
0: जी,
1: कि जब मैं छोटा था तो ड्राइंग वगैरह बनाया करता था, 9वीं 10वीं क्लास पढ़ता था तो घर में कोई पेंसिल से या कोयले से जगह जगह ड्राइंग बनाता रहता था। तो उसे घर के लोग भी थोड़ा परेशान जैसे हो गए थे कि इतना काला पीला करता रहता है, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कुछ इन्हें लाइन दी जाए जिससे ये अपना काम कर सके। सौभाग्य से क्या, मेरे जो पिताजी हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उज्जैन में, उनके मित्र थे डॉक्टर वाकणकर जी। एक बार वो आर्य समाज में उन्होंने उनका व्याख्यान रखा वाकणकर जी का वैदिक सभ्यता पे, और मुझे भी साथ में ले गए पिताजी। जब समाप्त हुआ जब कार्यक्रम, तो वाकणकर जी से मिलाए और कहा ये मेरा पुत्र है नारायण, और इसको ड्राइंग का बड़ा शौक है, बनाता रहता है किताबों में, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन हम चाहते हैं इसको एक लाइन मिल जाए।
0: जी,
1: तो वाकणकर साहब बड़े प्रसन्न, उन्होंने कहा नहीं, मेरा यहाँ भारतीय कला भवन उज्जैन में चलता है, आप इन्हें वहाँ भेज दीजिए। अगले दिन मेरे पिताजी और बड़े भाई साहब मुझे वहाँ ले गए और उनके कला भवन में भर्ती कर दिया। उसी दिन से जो मुझे जो मार्ग मिला गुरु का मार्गदर्शन, वो आज तक मेरे पहले प्रत्यक्ष में था, आज अप्रत्यक्ष में भी है। तो मैं फाइन आर्ट सीखा करता था, ये 9वीं 10वीं 11वीं जो भी क्लास पढ़ता रहा, उसके साथ साथ में ड्राइंग की कोई परीक्षाएं थी, डिप्लोमा थे, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षाएं थी, वो पास करता रहा। परंतु जब उनके घर पर देखता था कि वो कई मूर्तियाँ पड़ी हुई है, कई सिक्के रखे हैं, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, तो मुझे उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ें हैं। मैं देखा करता था उनके सामने, तो वाकणकर जी ने देखा कि मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पूछा ऐसी क्या बात है। मैंने सर ये ऐसा है कि ऐसी चीज़ें देखते हैं बड़ी दुर्लभ दिखती है। तो बोले क्या करोगे तुम? मैंने कहा मैं भी इतिहास पढ़ना चाहूँगा। तो उन्हें ठीक है, तब तक मैंने बीए पास कर लिया उनके सामने किया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम एमए पुरातत्व में कर लो। वो वहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में एक क्लास लेने जाया करते थे, वो उत्खनन असिस्टेंट थे वहाँ पर एक्सकेवेशन के, तो उनके साथ में रह के कुछ सीखने लगा, एमए कर लिया पुरातत्व में। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तुम पुरातत्व का डिप्लोमा कर लो, तो दिल्ली से डिप्लोमा भी कर लिया। और उसी समय क्या हुआ कि वाकणकर साहब को काम करना था भीमबेटका में, मैं भीमबेटका की खोज उनकी की हुई है 23 मार्च 1957 को, ये लगातार जाते रहे वहाँ। फिर उनका यह मानना था कि इतनी बड़ी साइट है, जरूर आदि मानव की सभ्यताएं और अन्य अवशेष मिल सकते हैं। तो जनवरी 1972 में उन्होंने वहाँ उत्खनन प्रारंभ किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई, तो टीम में मेरे को सबसे पहले मेरे को लिया पुरातत्व के, क्योंकि मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी किया, एमए आर्कियोलॉजी किया, कुछ लोग और भी आए थे। जनवरी 1972 से ला के कई दिनों तक मैं उनके साथ भीमबेटका में काम करता रहा, उत्खनन भी करता रहा, उनके साथ सीखता भी रहा, वो कैसे रॉक पेंटिंग बनाए जाते थे, आदि मानव के पत्थर कैसे बनाए जाते थे, उनकी मैं ट्रेनिंग लेने लगा। तो उस कारण मुझे उन्होंने परफेक्ट कर दिया कि नारायण तुम जाओ, कहीं भी हार नहीं होगी तुम्हारी, खूब काम करो। इस प्रकार मेरी वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सर्विस भी लग गई और लगातार फिर काम करने लगा, और वाकणकर साहब से मिलता रहा। तो उन्होंने मेरे काम को बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने यही कहा कि तुम सब काम करो, सेल चित्रों पर विशेष रूप से काम किया करो, जिसमें बहुत लोग कम काम किया करते हैं। तो मैंने वही किया, सेल चित्रों पर काम करना शुरू किया, और जो आज तक मेरा काम उस पर चला रहा है, नई नई खोज होती है करती है। लेकिन सब ये मेरे को वाकणकर साहब का प्रभाव रहा कि मैं उनके मार्गदर्शन में इतना काम कर सका।
0: आपने जिक्र किया कि वाकणकर साहब के कारण ही पहली बार आप भीमबेटका से परिचित हुए, आपने उन शैल चित्रों को बहुत करीब से देखा है, उनका अध्ययन किया है, लेकिन एक आम आदमी, एक आम श्रोता शैल चित्रों के माध्यम से उस समय के मनुष्य के जीवन और उसकी सोच के बारे में क्या समझ सकता है आपके माध्यम से?
1: शैल चित्रों के विषय में थोड़ा ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो भारत में खोज हुई है शैल चित्रों की, 1880 में हुई है, बनारस के पास में यानी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा स्थान है जो वहाँ पहले खोज हुई है, लेकिन धीरे धीरे उतना काम हुआ नहीं। लेकिन आज़ादी के पहले कुछ काम हुआ, आज़ादी के बाद वाकणकर साहब ने काम हुआ। तो क्या है कि आज हम लोगों के जो विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्याचल पर्वतमाला जो संसार में सबसे सुंदर और अच्छी सुदृढ़ और अच्छी क्वालिटी के इसमें पत्थर है, ऐसी पर्वतमाला है इस प्रकार की कहीं नहीं मिलती है। वो प्राकृतिक रूप से यहाँ आदिमानव के रहने के लिए शैलाश्रय भी थे, आदिमानव रहा करता था, और यहाँ खाने पीने का शिकार का बड़ी सुविधाएं थी, तो शिकार किया करता था और रहता करता। और उनको जब अभिव्यक्ति होती थी धीरे धीरे कुछ समझ में आई, तो अभिव्यक्ति को अपने व्यक्त कैसे करें, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, केवल एक चित्र के माध्यम से लोग समझा करते थे। तो उस समय उन्होंने शिकार करना कैसे शिकार किया करते थे, डांस कैसे किया करते थे, जानवर कौन कौन से होते थे, उनके चित्र वहाँ देखे और बनाना शुरू किया। जैसे गायों का जानवर का झुंड जा रहा है, तो उन्होंने बनाना शुरू किया। तो वो उन्होंने उस समय जो उनका जो रंग था वो बिल्कुल प्राकृतिक था, आजकल जैसा रंग तो कोई समझते नहीं थे। तो वहाँ जो मिनरल कलर आसपास मिलते थे, जैसे गेरू है, तो गेरू विंध्याचल पर्वतमालाओं में बहुत मिलता है, जो मुरम होती है मुरम के साथ वो भी उसका एक फॉर्म होता है गेरू का, वो मिलने लगा, खड़िया मिट्टी मिलने लगी और बहुत से मिनरल कलर मिलने लगे। तो वो आदि मानव के लिए ये बड़े अच्छे रंग लगे और उसको पानी मिला के वो कलर बनाया करता था। तो प्रारंभ में कुछ मुरम से मुरम का पाउडर बना के बनाए थे, उसके बाद गेरू के बनाए, कुछ हरे रंग के मिनरल्स आते थे या जमीन पर पत्थर निकलते थे कच्चा हरा होता था उसके हरे रंग के बनाए, कुछ पीले रंग के बनाए, इस प्रकार के अलग अलग रंगों के बनाए। लेकिन उससे हमें तत्कालीन स्थिति की जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले यहाँ जानवर कौन कौन से होते थे। जैसे यहाँ गेंडा भी होता था, दो सींग वाला गेंडा, सिंगल सींग वाला गेंडा, हाथी है, भैंसा है, शेर है, और यहाँ पर तेंदुआ भी मिलता है, बाघ मिलते हैं, इनके सब कुछ चित्र मिलते हैं। और विशेषता यह है कि यहाँ चीतों के भी चित्र मिलते हैं। 1952-53 के पश्चात चीते तो लुप्त हो चुके थे यहाँ, लेकिन उनके चित्र यहाँ थे। तो कई लोगों ने खोज की, मैंने उनको बताया कि रायसेन क्षेत्र में चीता बहुत होता था क्योंकि उनके शैल चित्र यहाँ मिले। तो इस प्रकार लोगों को हम जानकारी भी देते हैं, वहाँ गाँव में कैंप भी लगाते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं कॉलेजों में स्कूलों में जाके, और उनको शैल चित्रों के बारे में स्थानीय लोगों को और दूसरों लोगों को हम समझाया करते हैं कि शैल चित्र क्या होते हैं, एक मन की भावना होती है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कलाएं हैं दो प्रकार की होती है, एक रॉयल आर्ट यानी राजकीय कला और दूसरी फोक आर्ट लोक कला। रॉयल आर्ट और ये राजकीय आर्ट जिसमें हम अजंता एलोरा या सांची का स्तूप है या मंदिर वगैरह ये सब उसमें आ जाती है जो राजा महाराजा अपने हिसाब से बनते, लेकिन लोक कला ऐसी होती है जो प्राचीन समय से चली आ रही, जो गांव में चलती है, प्रचलित तो उस समय भी चली आ रही थी, आज भी है और चलती रहेगी, जबकि रॉयल आर्ट होती नहीं। लेकिन जो लोक कला है आज भी हमें गाँव में देखने को मिलते हैं अलग अलग रूप में, स्वरूप थोड़ा बदल जाता, परंपरा वही वही रहती है। लेकिन क्या है, जैसे एक क्षेत्रों में हम जब सर्वे करते हैं पहाड़ों में या सैलाश्रय देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, आम आदमी वहाँ के ये नहीं पता कि ये रॉक पेंटिंग है क्या है, वो इनको चुड़ैलों के दांते बोलते हैं, जिसे फीमेल घोष्ट होती है चुड़ैल, कि वो उनका ये कहना है ये चुड़ैलों ने चित्र बनाए हैं, ऐसे लोगों की धारणा है। तो लोगों के मन में भय भी रहता था, इस भय के कारण के वो चीज़ें सुरक्षित भी रही। तो वहाँ अभी भी हम लोग जाते हैं तो उनसे हम पूछते हैं रॉक शेल्टर कहाँ है या सैलाश्रय कहाँ है, तो वो समझते नहीं थे, तब वो तो वह चुड़ैल की दांत कहाँ देखने को मिलेगी, तो झट बताते कि भाई उस पहाड़ी पर जाओ, वहाँ बहुत सी गुफाएं हैं, चुड़ैल की दांत है उसके अंदर, दांते बोलते हैं, टोले बोलते हैं, ये जनभाषा में। तो लोगों की उससे कोई धार्मिकता भी जोड़ रखी है, कुछ अपने पुरानी परम लोक कलाओं से जोड़ के इस प्रकार की उनकी कथाएं वहाँ जोड़ रखी है। वहाँ पर जो ग्रामीण जीवन संबंधित जो चित्र हैं वो मिलते हैं, लेकिन इन लोगों में जो कलाकार भी होते थे जनजातियों के जिन्होंने रॉक पेंटिंग बनाया, वो जो देखते थे वो बनाते भी थे
0: जी।
1: आज भी अभिव्यक्ति वैसी वैसे पहले भी होती, जैसे सेनाएं जा रही यहाँ से, क्योंकि पहले आपस में राजमार्ग था, तो राजमार्ग रॉयल प्रोसेशन चलते रहते राजा महाराजाओं के, तो वो देखा करते थे रॉक पेंटिंग में, उन्होंने उनको बनाया कैसी सेनाएं जा रही है, कैसे घुड़सवार जा रहे हैं, कैसे सैनिक जा रहे हैं, कैसे उनको हाथ में हथियार है, लिख तो सकते नहीं, तो उन्होंने चित्रों के माध्यम से उन गुफाओं में बनाए, जिससे हमें पता चलता उस समय किस प्रकार की जो परंपराएं थी, ये युद्ध कैसे होते थे, उनकी जानकारी मिलती है। आज हमें देखने को खुदाई में अस्त्र शस्त्र मिलते जरूर है, लेकिन किस प्रकार प्रयोग करते थे वो हमें शैल चित्रों में देखने को सभी ओर देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस समय की जनजीवन किस प्रकार क्रियाकलाप होते वो हमें उसमें सब देखने को चीजें मिलती है।
0: आपकी बातें सुनते सुनते मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई हूँ और एक चीज़ सोच रही हूँ कि ईश्वर का कितना बड़ा योगदान होता है कि पहले आपने फाइन आर्ट आपका मार्ग था, फिर उसके बाद आप पुरातत्व में आए और शैल चित्रों पर आपका इतना काम है। सर तो मुझे लगता है कि आप फाइन आर्ट के कारण भी आपको अपने काम में शायद बहुत मदद मिली।
1: नहीं नहीं, मेरे को बहुत मदद मिली फाइन आर्ट की, क्योंकि मैं देखता था वाकणकर साहब को, खुद आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, सब थे, जहाँ जहाँ थे आर्ट से स्केच बनाते थे, तो वो मेरे को वरदान मिला उनका कि मैं भी उनको देख के वो कैसे स्केच बनाते मैं भी बनाना सीख गया, मैं भी बनाता रहता। मैंने अपने जो थीसिस लिखी है पीएचडी के बाद जो डिलीट मैंने किया है वो रॉक पेंटिंग में किया है भोपाल क्षेत्र में, तो जितने ड्राइंग उसमें है वो मैंने अपने हाथों से ही बनाए
0: जी।
1: कई जगह मैं मूर्तियों का इनका काम करने जाता भी था, बाई चांस कैमरा खराब हो गया तो मूर्ति को बनाना या कौन आएगा बाद में, तो वो मूर्तियों की भी हाथ से ड्राइंग बना के अपने रिकॉर्ड में रखता था। ये सब मेरे को फाइन आर्ट से ये फायदा मेरे को
0: बहुत फायदा मिला जी जी जी। शैल चित्रों के माध्यम से मानव सभ्यता की प्रारंभिक अभिव्यक्ति आपने बताया उसको, तो इन चित्रों का ऐतिहासिक महत्व सर आप कैसे देखते हैं, हम कैसे जानें कि उस समय के आदमी क्या करते थे, शैल चित्रों के अलावा पुरातत्व में ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे हम जान सकते हैं?
1: हमको शैल चित्रों से ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व है इसका, कि हमें उस समय काल के बारे में जानकारी मिलती है कि आदि मानव के समय में वो लोग 10,000-15,000 साल पहले के चित्र बनाते थे, वो किस प्रकार हुआ। हम प्रारंभिक जो चित्र देखते हैं हमें वो जानवरों के चित्र मिलेंगे, शिकार करते हुए मिलेंगे, हिरण है, तेंदुआ है, शेर है, जो मिलते हैं, लेकिन कई पुराने चित्रों में घोड़े हमको देखने नहीं मिलेंगे। जब मनुष्य का विकास हुआ, इतिहास काल में आया, जब लिखना पढ़ना जान गया, सब घोड़े हमारे यहाँ होने लगे, तो घोड़ों के चित्र मिलने लगे, तो हमें लगा कि इतिहास का युग प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि एक हमको डेटम लाइन हो जाती है कि उसकी एक सीमा बनती है कि उस सीमाओं से पहले जो चित्र बने वो हमारे आदि मानव के प्रारंभिक सोच के हैं, शिकार के हैं, नृत्य के हैं, जानवरों के हैं। लेकिन थोड़ी जो बाद में जब आदमी विकसित हुए, जब कलाकारों ने जब चीजें देखी कि ये सेनाएं जा रही है, युद्ध हो रहा है, तो वो बनाने को मौका उनको मिला। उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी, उसका वजह चालू हुई तो एक हमें एक पक्का पता चला इतिहास की जो जानकारी जो राइटिंग में शुरू हुई हाथी घोड़ों के चित्र से हो जाती है
0: जी।
1: कि किस प्रकार घुड़सवार होते थे, रथ में कैसे जोते जाते थे, ये सब उनसे जानकारी मिलती जबकि पुराने चित्रों में नहीं मिलती। जैसे हमें साहित्य में चतुरंगिणी सेना मिलती है, हाथी की मिलती है, घोड़ों की मिलती है, पैदल सेना मिलती है, ये सब हमें इतिहास की एक महत्व बताती है कि यहाँ से 2,000-3,000 साल पहले इस टाइप से सेनाओं का प्रारंभ हो चुका था। जैसे चतुरंगिणी सेना हम महाभारत या रामायण के समय कहते हैं, वो उनकी जानकारी पूरी उसमें मिलती है।
0: जब आप किसी भी साइट पर खोज के लिए और खनन के लिए जाते हैं, चुनौतियां क्या होती हैं?
1: बहुत होती है, उसमें जान जोखिम भी रहती है। हम देखते हैं कि जितने प्राचीन सभ्यता है नदी किनारे बसी हुई है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे, सरस्वती की कहेंगे, नर्मदा कहेंगे, बेतवा कहेंगे, ये जितनी क्या है, मनुष्य के लिए पानी बहुत आवश्यक होता था तो नदी किनारों मकान बना के रहा करते थे। अब ये देखना पड़ता है हमें कि नदी किनारे कौन सी जगह बसावट हुई है, तो हमें वो नदी के किनारों का सर्वे करना पड़ता है, गाँव वालों से पूछना पड़ता है कि यहाँ ऐसा कोई स्थान है जहाँ लोग रहा करते थे, तो गाँव वाले बोलते हैं हाँ फलाने फलाने जाइए, वहाँ बेचिराग गाँव है, जहाँ कहने के पहले कभी जमाने में लोग रहते थे, अब नहीं है, केवल उनके अवशेष हैं
0: जी।
1: उस आधार पर उन जगह देखने जाते थे और हम वहाँ जब सर्वे करते नदी किनारों पे टीले देखते तो हमें पुराने सिक्के हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, या उस समय जो चलने वाली चीजें प्रचलन में जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है वहाँ, तो इससे पता चलता है कि यहाँ है। उसके अलावा जोखिम भी बहुत होती है कि जैसे हम जंगल में सर्वे करने जाते हैं, बहुत से होते पहाड़ी एरिया, क्योंकि भोपाल क्षेत्र ऐसा है, विंध्याचल का पर्वतमाला है, ये टीले माउंट तो मिलते ही हैं जहाँ सभ्यता, लेकिन जो आदि जीवन की सभ्यता है वो जानने के लिए पहाड़ों में घूमना पड़ता है, गुफाओं में जाना पड़ता है, तो उस समय ये खतरा होता है जानवरों का रहता है। जानवरों से तो हम बच सकते हैं लेकिन मधुमक्खियों से बचना बहुत मुश्किल है
0: जी।
1: वो इतनी भयानक होती है, इतने कहना चाहिए कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बार की जो घटना घटी हमारे साथ कठोतिया गाँव में भोपाल के पास, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गई हुई थी, तीन बाहर के थे, मैं यहाँ का था बताने वाला, तो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया, वो छेड़ने से क्या वो बिखर गई एकदम, जैसे क्रुद्ध हो जाती है ना अटैक करने के लिए, तो वो ऐसे झपटी हम लोगों पर, तो हमने वो तीन लोग बाहर के थे उनको तो जैसे तैसे बचाया, लेकिन जो मक्खियां जो थी बहुत सारी मेरे ऊपर चिपट गई आके, उससे आप कल्पना कर सकते हैं एक मक्खी काटने से कितना असर होता है, वो 60-70 मक्खी यदि किसी काटेगी तो क्या असर होगा
0: जी।
1: तो मेरे को काटती गई वो, तो मैंने कुछ उनका विरोध नहीं किया, मैंने काटने दो, यदि ज्यादा विरोध करता हूँ तो वो जान भी जा सकती उसके, इतना खतरा उसमें हो जाता है। ये मैंने अपने जैकेट ओढ़ी, वो धीरे धीरे पहाड़ी से उतरा, जितने में देखा मेरे हाथ चलने की हालत नहीं है और मैं वहीं बैठ गया, मक्खियां भी मेरे को काटते काटते आखिर थक के चली गई, इतना काटा। और फिर बाद में मेरी बेटी को फोन लगाया मैंने, डॉक्टर थी बाय चांस लग गया जंगल से, वो एम्बुलेंस से लेके आई और मुझे वहीं गांव में ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट क्या किया कि सबसे पहले सारे शरीर के डंक निकाले, करीब 70-80 डंक जैसे जो निकले हैं कि उसमें ब्लड आने लगा, खून आने लगा, इतने तीखे डंक होते हैं मधुमक्खियों के, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैं युद्ध से आ रहा हूँ
0: जी।
1: इतने गोले शरीर, पूरे शरीर से खून निकल रहा जगह जगह से, 24 घंटे आईसीयू में भी रहा मैं, लेकिन इतनी खतरनाक घटना होती, क्योंकि वो मधुमक्खिया को यदि हम ज्यादा छेड़ते हैं, यदि पानी में भी हम जाएंगे डूबेंगे तो ऊपर भनभनाएगी, वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन उनका विरोध हमने नहीं किया इसलिए उन्हें जितना काटा काटा, फिर हम बच के आए। एक बार हमारे 20-30 फीट के सामने शेर आ गया, टाइगर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उठे जंगल के जानवर इतना किसी कुछ अटैक नहीं करते, वो भी अपने चले गए, हम भी, पर क्या है मन में खतरा तो रहता है ना कि क्या हो सकता है आगे भविष्य के, तो इतनी खतरनाक चीजों में हमें जूझना पड़ता है पानी के लिए, खाने के लिए। एक यही हमारे बाड़ी बरेली के पास चोगीगढ़ का किला है, वो हमने मैप में देखा, पुराना रिकॉर्ड में कोई किला है, तो हमने चलो देख ले जाके, तो हम वहाँ बाड़ी गए, सुबह सुबह रहे वहाँ, रात में रहे, सुबह हम पैदल पैदल गए जंगल में, करीब 5-6 किलोमीटर पहाड़ पे हमें चढ़ना पड़ा। और जब देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा किला है, घूमे फिरे, अब इतना चढ़ने के बाद तो स्वाभाविक पसीना आएगा, प्यास लगेगी, ठंड के दिन थे, पसीने हो गए हम, अब क्या करें, प्यास लगी, बुरा हाल पानी के लिए। तो वही पास में देखा कुछ पानी एक गड्ढे में थोड़ा सा भरा था, 1-1.5 फीट के गड्ढे में, जिसमें 1-2 लीटर पानी होगा। जब पानी हमने पीने के लिए देखा तो उसमें देखा कीड़े कीड़े हैं उसमें
0: जी,
1: और इतने कीड़े हैं कि हम उसमें जितना पानी उतने आधे तो कीड़े हैं उसके अंदर
0: जी।
1: पर हमने यही सोचा कि अब पानी तो ये है तो यही पीना पड़ेगा।
0: हाँ।
1: तो हमने हमारे गिलास ली और रुमाल लिया और हाथ से पानी उस रुमाल में डाला तो पानी तो नीचे आ गया, कीड़े ऊपर रह गए
0: जी।
1: तो इतने कीड़े हैं कि देखने से हम वॉमिटिंग होने, लेकिन क्या करें, वो पानी हमने कीड़ों वाला पिया। हाँ। हमने क्या हाथ में संतूर से देखा जाएगा बाद में। तो इस पर कृपा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें प्यास बुझ गई। लेकिन ये इतना जानवरों के बीच में, इसमें कीड़ों के आपने देखे पानी में, मधुमक्खी इसमें बीच में रह के काम करते हैं, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो हम चीज भूल जाते हैं। हमें यही याद रहती है कि हम सफल हुए काम में, कठिनाइयां तो आती है और आती रहेंगी, उसको सोचना नहीं है हमें, हमें काम किया अपने लिए नहीं, सबके लिए क्या, लोगों को जानकारी मिले
0: जी,
1: ये हम लोग एक लाइफ में है
0: जी। इतनी खोज आपने की है, उतनी ही कहानियां आपके पास हैं, क्योंकि अभी जब से मैं बात कर रही हूं तो आपके पास बहुत कहानियां हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे रोमांचकारी खोज कौन सी मानते हैं आपकी नजर में?
1: काम तो सभी जगह किया है, रायसेन जिले में 250-300 गांव सर्वे किया है, पोस्टिंग मेरी कई जगह रही, गुजरात में भी रही। हाँ। गुजरात में 7 साल रहा। हाँ। तो वहाँ मुझे एक ऐसा काम दिया जिसे हम रानी के वाह बोलते हैं। हाँ। आप सब बताए ना।
0: हाँ।
1: कि जब मेरी पोस्टिंग 1981 में बड़ौदा में हुई, गुजरात सर्कल के अंदर, तो मुझे काम दिया कि रानी के वाह का उत्खनन करना है। तो उस समय थोड़ा कुछ काम हुआ था, लोगों ने किया था, करीब 20-25 फीट खुदाई की थी, लेकिन वो लोग काम देख के लोग चकरा जाते थे, काम किया नहीं पड़ा रहा। मेरे को काम वो दिया था, मैंने ठीक है मैं करूँगा, बहुत रिस्क उठाई काम के अंदर, तो मैंने ये भी रिस्क सही। तो हम वहाँ काम जब शुरू किया, वो बावड़ी करीब उसकी देखना चाहिए लंबी करीब लगभग 150 फीट है और चौड़ाई 50-60 फीट करीब है, और जब हमने खुदाई इसी पानी का जो लेवल था वो 120 फीट में था। तो हमने देखे सरफेस से लगा के 120 फीट जब पानी आता, आप अनुमान कर लीजिए कितनी गहरी बावड़ी रही होगी, और 7 मंजिला बावड़ी
0: जी,
1: बावड़ी यानी स्टेप वेल, वहाँ वाव बोलते हैं इसको, बावड़ी को हम लोग बावड़ी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग सब तरह नाम प्रचलित है। तो खुदाई जो हमने की तो इतने बहुत मूर्तियां मिली, कुछ यथास्थान लगी हुई दीवारों में लगी, कुछ ऐसी जगह जगह मिली, लेकिन हम पूरा काम किया, इतना मलबा निकला उसमें से, हजारों ट्रक पे मलबा निकला होगा
0: जी।
1: आप कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी बावड़ी उसमें मलबा निकालना कितना टाइम लगा। वाकणकर साहब भी उस समय काम देखा, उन्होंने सरस्वती वेल की खोज में बोले तुम तो इसमें PhD कर सकते हो, इतना काम है ये। तो मेरे को तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक सर, आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो उन्होंने उसके सिनॉप्सिस भी बना के दी मेरे को, हालांकि मैंने भोपाल में आके PhD कही ट्रांसफर होने के बाद, लेकिन यहाँ पे पूरा काम किया उस बावड़ी खुदाई में, पूरी दीवार में सब जगह निकली मूर्तियां 1500 थी, 1500 मूर्तियां, और इतनी मूर्तियां थी कि उसको एक तो पहचानना मुश्किल लोगों का, लेकिन मैंने एक एक मूर्ति की पहचान की, कौन से देवी देवता हैं, उनका क्या नाम है, एक शिव है तो क्या नाम है, विष्णु है तो कौन कौन से स्वरूप, ये सब पूरे मैंने रिकॉर्ड तैयार करके डिपार्टमेंट में 1500 पेज की रिपोर्ट दी, लेकिन एक एक मूर्ति को मैंने आइडेंटिफाई किया, प्रचार किया, तो लोगों को लगा इतने भव्य बावड़ी किसने बनाई होगी, तो रानी की वाह बोलते हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में रानी कौन थी
0: जी।
1: उस समय जो बनी थी ये 1050 में बनी थी, और ऐसा कहते हैं भीमदेव सोलंकी के समय बनी हुई है, जो गुजरात के शासक थे जिसमें महमूद गजनवी का हमला हुआ था। तो हमने जब खोद के देखा रानी की वाह, तो एक नीचे हमें मूर्ति मिली रानी की, तो वो रानी जो उदयमती नाम की थी, जो भीमदेव की पत्नी थी, उसमें नाम लिखा है महारानी उदयमती, श्री उदयमती। तो हमें कन्फर्म हो गया ये उदयमती जो है राजा भीमदेव की पत्नी है, उन्होंने उनके पति की स्मृति में ये बावड़ी बनवाई। और बाय चांस उसमें नीचे जो मूर्तियों की लाइन थी सबसे नीचे, उसमें वो राजा की मूर्ति भी मिली, तो हमने आइडेंटिफाई किया ये राजा की ही मूर्ति है। तो इस प्रकार एक एक मूर्ति आइडेंटिफाई, लेकिन उसमें रिस्क इतनी थी कि वो मूर्तियों की दीवार से हम नीचे देखेंगे तो चक्कर आते थे, थोड़ी सी 1.5-2 फुट जगह थी वहाँ, वहाँ बैठ के हम काम करते थे, इसके फोल्डिंग हमने बांधी थी, एक बार बैठने में इसके फोल्डिंग टूट गई तो हम 80 फीट नीचे गिरते बचे, लेकिन वो बच गए हम। और उसके बाद जब नीचे देखते चक्कर आते, कई बार चक्कर आ जाते तो हम तो साइड में लेट जाते थे, देखते नहीं थे, क्योंकि उसमें क्या कब गिर जाए हम कह नहीं सकते। और इतनी गहरी बावड़ी, आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कोई देखने जाता है वो बावड़ी को तो आश्चर्य करता है, इतनी बड़ी बावड़ी कहाँ से निकली। अब देखिए इतनी हमने मेहनत की और फिर रिटायरमेंट के बाद में हम इंडिया यूनेस्को की कमेटी थी ASI की, उसमें हमें लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, जो रानी की वाव को मन लेना था, तो 2014 में हुई और हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। और ज्यादा बहुत प्रसन्नता जब हुई कि 100 रुपए के नोट पे उस बावड़ी का चित्र आया, हमें लगा कि रानी की वाव पाटन, तो मन में हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारा जो काम है
0: जी
1: वो सामने दिख रहा है। हमें भले कोई जानता ना हो लेकिन हमारी काम जो है सामने दिख रहा है, जो आज के समय में हर व्यक्ति के जेब में 100 का नोट होता है
0: जी,
1: वो चीज है
0: जी। आप जब बता रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई काम जब आप करने की शुरुआत करते हैं और जब इस तरह का प्रतिफल मिलता है तो मन कितना भावुक हो जाता है।
1: बहुत ही, मैंने कहना चाहिए जो सुनता है वो यही कहता है कितना जोखिम तो होती है हर काम में
0: जी जी।
1: अब नारियल भी हम बोलेंगे कितना कठोर होता है, जब टूटने के बाद जो उसमें पानी मिलता है मीठा होता है, तो बड़ा जितने भी कोड़े जो चोट ली वो सब भूल जाते हैं।
0: लेकिन आपकी चुनौतियां जब सर हम सुन रहे हैं तब मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से क्या पुरातत्वविदों के लिए कुछ आसानी होगी।
1: आधुनिक समय में कंप्यूटर का और एक ऐसी चीजों का आ चुकी हैं जिसमें मदद मिलती है, लेकिन जब मैनुअल काम होता है हाथों से वो तो हाथ से ही करना पड़ेगा। जब हम पुरातत्व उत्खनन जब करते हैं, मेजरमेंट लेना करना, तो ये सब आजकल मशीनों से हो जाता है, लेकिन जो उत्खनन हम जो करेंगे वो हमें हाथ से अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। एक एक चीज को देखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उससे मशीनें काम नहीं आएगी। यदि हमें कोई फोटो लेना हो ऊंचाई पर पहुंचा तो ड्रोन कैमरे से फोटो ले सकते हैं। उस समय तो ये कैमरे होते थे, हैंडल करते थे, स्टैंड लगाते फोटो करते, आज वो सुविधा बहुत है, कंप्यूटर की सुविधा है कि हमसे पूरा टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जब मैनुअल काम हो तो मैनुअली करना पड़ेगा
0: जी।
1: हमें गांव में जाना है, सब जगह जाना, ठीक है गाड़ी मिल गई चले गए, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अधिकतर हम लोगों ने जो पैदल जो काम किया है उस समय में, वो आज के समय में लोग कर नहीं पाते, क्योंकि आजकल इतने आधुनिक साधन हुए उनका प्रयोग करना चाहिए। हम भी यदि उस समय होते तो हम भी प्रयोग करते। उस समय न कंप्यूटर था, न कोई मोबाइल था, न कुछ नहीं था, ये सब चीजें था, उसके बाद भी हम करते थे, एक मन में संतुष्टि थी। आज विकासवाद है, विकास हुआ है ठीक है, और ये पुरातत्व में ये सब चीजें काम आती ही है, ये सब खोज में, इनकी जांच करने में, जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह के इसे करते, तो ये आधुनिक संसाधन ही इसी में काम आते हैं। तो उसमें मैनुअल भी जो काम होता है और मशीनों से भी, आधुनिक यंत्रों से भी, दोनों से ही काम होता है इसमें।
0: आपने अपनी बातों में कहा और हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यताएं नदी के किनारे किनारे ही विकसित हुई हैं। नर्मदा घाटी की सभ्यता को लेकर और पुरातत्व खोजों को लेकर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: हमारी जो नर्मदा घाटी सभ्यता है कि ना, हमें संसार की, देश की बहुत प्राचीन सभ्यता है
0: जी।
1: जितनी पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है हम जो लोग देखते हैं कहना चाहिए उनसे ही पुरानी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यताओं में नगरी सभ्यता थी, उस समय तत्कालीन जीवन की जानकारी मिलती, लेकिन नर्मदा घाटी के अंदर आदि मानव से ला के वर्तमान तक की सभ्यता है, लगातार हमें क्रमबद्ध मूर्ति ये मिलती है। आदि मानव के पत्थर के हथियार भी मिलते हैं, उनका विकास हुआ ताम्र युग में, उनकी भी चीजें मिलती है, जैसे भीमबेटका क्षेत्र या नर्मदा का क्षेत्र में, या होशंगाबाद ले लीजिए, कर लीजिए, आदि मानव पत्थर के हथियार बहुत चीजें मिलेंगे वहीं। अब महेश्वर नावडा टोली जाए महेश्वर में, तो वह ताम्रयुगीन सभ्यताएं भी देखने को मिलेगी, भोपाल के आसपास भी मिलेगी। फिर इतिहासुग की सभ्यताएं वो भी इनके किनारों नदी पे, यानी कहना चाहिए हर युग की सभ्यताएं नदी घाटी, विशेष रूप नर्मदा घाटी में हर जगह हमें देखने को मिलेगी। हम चाहे महेश्वर जाएं, चाहे ओंकारेश्वर जाएं, कहीं भी हम जाएं नदी किनारे, तो हमें सभ्यताओं के दर्शन होते हैं, मंदिरों के रूप में होते हैं, पुराण टीलों के रूप में होते हैं, पाषाण युगीन संस्कृति के रूप में, इससे सब अवशेष दोनों तरफ से। उसके अलावा जो नर्मदा घाटी, जो विशेष रूप से जो निमाड़ का एरिया है, जो होलकर स्टेट, इन्होंने जनता के लिए बहुत काम करवाए, धर्मशालाएं बनवाई नदी किनारे, लोगों के लिए बहुत सुविधाएं करवाई, ये भी एक उसके अंदर होलकर राज्य के समय का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। उसी पीरियड में हम देखें जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में, जहाँ ये नर्मदा देती, वहां पर भी इतनी सभ्यता मिली, जैसे कलचूरी शासक बड़े प्रसिद्ध थे, कलचूरी शासकों के नीचे नर्मदा देवी माना जाता था, तो उस समय की सभ्यता बड़ी प्रचुर माध मूर्तिकला में हम जब देखते हैं तो हमें कलचूरी कालीन जो नर्मदा घाटी में जो मिलती कला वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इतनी सुंदर प्रतिमाएं हमें कहीं देखने को नहीं मिलती जितना जबलपुर क्षेत्र में कलचूरी शासकों ने बनाई है।
0: इतनी सारी बातें हमने आपसे की, चलते चलते एक आखिरी सवाल सर आपसे जरूर करना चाहेंगे कि आपने अपना पूरा जीवन इतिहास और विरासतों को खोजने, समझने और संरक्षित करने में लगाया है, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है हम अपनी विरासतों से सबसे बड़ी सीख क्या ले सकते हैं?
1: हमें विरासत से बहुत सीख मिलती है। हमें ये मिलती है कि प्राचीन समय में संविधाएं कितनी थी, कितनी विकसित हुई। आज हम संविधाओं को कैसे सहेजे? हमने काम तो बहुत कर लिया, लोगों ने बहुत कर लिया, अब सहेजना बहुत बड़ी बात है। और उस धरोहर के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम जो इतनी खोज हो चुकी है उनको इसे संभाल के रखें। तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि जनता को, बच्चों को, विद्यार्थियों को या शोधार्थियों को या पर्यटकों को इतना जागरूक करें कि जो हमारी जो खोज की हुई चीज़ें हैं हम लोगों की या वन पुरातत्व उसको कैसे संभालें ताकि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी यथावत मिल सके, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। और सभी लोगों को ये करना चाहिए कि उनके क्षेत्र की जो भी कलाएँ हैं या जो भी अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखें, जितनी खोज हो चुकी है वो योगदान दें। सरकार अपने तरफ से काम करती ही है तो उसे जनता का योगदान, जनता की भागीदारी बहुत बड़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा क्या है, हम यदि इतिहास को भी जानें, लोगों से, विद्यार्थियों से ये भी अनुरोध करेंगे कि अपने परिवार का इतिहास भी जानें। हमारे घरों में बहुत ऐसे चीज़ें होती है जिनका हम महत्व नहीं समझ रहे हैं, जैसे पीतल के तांबे के बर्तन पुराने हमारे घरों में रहते हैं, हम लालच वश उन बेच देते हैं, उनके जो नए चमकने वाले बर्तन ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पूर्वजों के जो बर्तन है, धरोहर है, वो सब चली जाती है। कई लोगों के हस्तलिखित ग्रंथ रखे होते हैं, वो समझते हैं इन्हें काम के नहीं तो पानी में बहा देते हैं। पुराने पत्राचार होते हैं, पुराने अखबार होते हैं, ऐसे बहुत से पुरानी पुरानी चीज़ें होती है परंपरागत, उसको हम नष्ट करते जाए। हम चाहते हैं लोग उनको संभाल के रखें, किसी को न दें, अपने घर में एक सजा के रखें, बता के रखें ये हमारी चार पीढ़ी वाले बर्तन है, ये उनके पांच पीढ़ी वाले वो समय का ये पत्र है, ये उस समय किताब है। तो अपने घर के धरोहर यदि पुराने सिक्के भी पड़े रहते लोगों में तो वो समय की तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के सहेज के घर में ही लोग अपने घर में भी छोटा संग्रहालय बना सके ताकि लोगों के मेहमान आके देख सके कि इनका घर कितना प्राचीन है, इनके पूर्वज कितने संपन्न थे। ये सब चीज़ें मैं कहना यही चाहूँगा सभी से कि इस प्रकार जरूर योगदान दें अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाने के लिए।
0: जी सर, आपके सामने थोड़ी सी हिमाकत कर रही हूँ कि मैं लोगों से कुछ कह सकूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शैल चित्रों का आपने इतना अध्ययन किया है, लोग जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं, हेरिटेज साइट्स पर आप जाएं, तो कृपया आप उन शैल चित्रों का ख्याल रखें, अपनी तरफ से पत्थरों से कुछ भी लिख कर ना आएं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को सहेजने में एक, मुझे लगता है, रास्ते का रोड़ा साबित होता है। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी कराते हैं या कुछ भी लिख आते हैं, ये चीज़ शायद हमें समझनी होगी कि हमें अपनी विरासतों को संभाल के रखना है। सर, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें पुरातत्व को केवल अतीत के अध्ययन के रूप में नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक स्मृति और पहचान को समझने के माध्यम के रूप में देखने की दृष्टि दी। एक बार पुनः आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके अनुभव, आपके शोध से हम सब और आने वाली पीढ़ियां जरूर समृद्ध होंगी।
1: जरूर, धन्यवाद सभी को, सभी सुनने वालों को।
2: आमने सामने
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन।

0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ।
1: This is the Google AI Professional Certificate.
2: Start here to gain the skills for a new way of working.
1: Maybe you've asked AI to help write an email or to summarize a long document.
3: A nice time saver. But what if that small win was just the warm-up?
4: Discover what's possible when it stops just being a tool you use
5: and starts being a professional collaborator.
6: Google experts will guide you at every step
5: and teach you the AI skills that employers are looking for.
7: Enroll today and get 3 months of Google AI Pro.
0: हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जनभागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाताधारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारे विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जेती धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रही है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारा लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रपति साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना मंची अन्नदे पेंचु मन्ना देश मंटे मट्टी का दोय देश मंटे मनुसुलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल।
8: मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फ्रांसीसी जैज बैंड कबारे रोशे ट्रियो की दिलकश प्रस्तुति। ये प्रस्तुति हुई संस्कृति विभाग और आलियांस फ्रांसिस द भोपाल की ओर से भारत भवन में।
1: Culture and Tourism and Alliance Française de Bhopal is delighted to welcome you for this very special concert of the jazz band Cabaret Rocher Trio. So this French jazz band is very specific because they will mix like jazz improvisation, Breton folk traditions, music from the Balkans into a very original dialogue. So let me introduce you to Etienne Cabaret. Etienne Cabaret, clarinettiste. Christophe Rocher, second clarinet. And Nicolas Pointard, percussionniste. Once again, we're delighted to have you and to introduce you to this jazz concert, and we wish you a wonderful musical evening.
2: Thank you very much, Vincent. Thank you very much for being here.

ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें आप सुन रहे थे फ्रांसीसी जैज बैंड कबारे रोशे ट्रियो की प्रस्तुति। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सबसे पहले आपसे मुखातिब हैं पल्लवी त्रिवेदी।
1: मेरी पहली कविता संगीत से ही शुरू करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है राग अरण्य। जंगल में जो संगीत होता है, मुझे लगता है चाहे तानसेन जी ने बनाए हों जितने भी राग या कहीं पे भी, हम प्रकृति के संगीत से ही उपजे होंगे सारे संगीत, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा। सो मेरा पहली कविता है राग अरण्य। पतझर की एक सांझ घिर रही है, सतपुड़ा का जंगल आज राग अरण्य की एक नई सिम्फनी रच रहा है। पपीहे और मोर ने षडज से धैवत तक का दीर्घ आलाप उठाया है। अबाबील और फुल चुक्कियाँ साध रही हैं द्रुत लय की ताने। कटफोड़वा और ठठेरा बसंता ने सागौन पर झपताल का ठेका दिया है। और सहसा कहीं दूर एक बाघ खरज का पंचम लगा बैठता है। गुणवंत साजिंदे, झींगुर और टिड्डे तानपुरा साधे बैठे हैं। नदी की लहरें बजाती है मंजीरा मगन अपने तट पर। और सूखी पत्तियों पर छनक उठते हैं किसी खरगोश की पदचाप के घुंघरू। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। पतझर के मौसम में जंगल विदा के सबसे सुंदर गीत गाता है। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। हवा की सांसों को पीकर बांस बदल गए हैं बांसुरी में। सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर सैकड़ों टिमटिम जुगनुओं की नाजुक रोशनी में झरती पत्तियों पर कांप रहा है कोमल गांधार, कांप रहा है कोमल गांधार। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता है पिता। ओ पिता, तुम हमेशा एक नाराज बच्चे थे, अपने ही अतीत के बंधक, अपने ही मन के कुएं में औंधे पड़े। तुम चट्टान बनने को अभिशप्त थे, जबकि तुम बालू की तरह झर रहे थे। किसी रोज तुम मुंह फुलाकर अकेले बैठ जाना चाहते थे। किसी रोज तुम्हारे अश्रु नर्मदा बन जाना चाहते थे। तुम पैर पटक कर कहना चाहते थे उस दिन, आज सिर्फ मुझे लाड़ करो। पर तुम्हारे भीतर का बच्चा बाहर के पिता से हार गया। तुम्हें किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी तो नहीं कहा रो लो जी भर कर, ढह जाओ इस कांधे पर। जिन हाथों को तुम्हें अंक में भर लेना था, वे हाथ ट्यूशन फीस की फरमाइश के लिए आगे बढ़े। जिन आँखों को तुम्हारी पीड़ा देख लेनी थी, उन आँखों में तुम्हारे ज़िद्दी स्वभाव के लिए सैकड़ों शिकायतें उमड़ती रहीं। जिन होठों को तुम्हारा माथा चूम लेना था, वे तुम्हारी पीठ पीछे भुनभुनाते रहे। एक बच्चा बचपन से बचपन को तरसता रहा। एक बच्चा 51 साल जिया और अपने ही मन के कुएं में डूब गया। ओ पिता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने कुएं की मुंडेर तक आने में देर कर दी। प्रेम कविता, शीर्षक है प्यार का फूल। दूरियों का क्षोभ मत करो तुम, दूरियों का क्षोभ मत करो तुम। मुलाकातों के सिलसिले के खत्म होने को होने से मन को अवसाद में ना भरो। मंदिर की घंटियों की तरह सारा दिन तुम्हारे कानों में बजती वह आवाज़ अब मौन हो गई है, तो जी उदास न करो। तुम्हारी देह को उसकी देह के स्पर्श का आश्वासन अब नहीं, तो तनिक भी न घबराओ। प्यार का फूल पौधे पर ज़्यादा देर नहीं टिकता, तुम्हारी प्रिय किताब के सबसे प्रिय पन्ने पर ही इसे अब उम्र बितानी है। अगर अब स्वप्न में भी उसकी आमद विरले ही होने लगी है, तो अपनी नींदों से झगड़ा मत करो। तुम्हारी स्मृति से अगर उसके साथ के सुंदर वाकये लुप्त होने लगे हैं तो दिमाग पर कतई जोर न डालो। मत सोचो कि उसे स्मरण कर कितने महीनों से तुम्हारे नेत्र नहीं छलछलाए हैं। उस कसम को ना निभा सकने के लिए खुद को मत कोसो जो तुमने उसका हाथ थाम कर उठाई थी। क्षण भर को भी तुझे भूलूं तो पाप की भागी बनूं। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। बिछोह की पीड़ा का तर्पण सिर्फ विस्मृति की नदी में ही संभव है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है। प्यार के एक मुलायम झोंके से हमारा सर्वस्व जोर से कांप कर थिर हो जाता है और उस कंपन से हृदय तल पर जो घटता है वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी। वही है ध्येय प्यार का और वही हासिल भी।

0: और यह है रचना पाठ संगीता गुंदेचा का।
1: ये जो दो कविताओं का जोड़ा है इसका नाम है फ्रिदा कहलो। फ्रिदा कहलो मेक्सिको की चित्रकार थी और एक कविताओं का जोड़ा है फ्रिदा कहलो। एक फ्रिदा कहलो का जीवन बहुत कष्टमय था लेकिन उसके बिना भी वो चित्र बनाती रही। और आप कभी फिल्म देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चले। मैं कविताएं सुना देती हूँ, दो छोटी कविताएं। फ्रिदा कहलो एक। शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज़ हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रिदा कहलो दो। आह शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रिदा कहलो मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज़ हमें जिंदा रखती है वही मारती है। आत्ममुक्त। क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, तुम तोड़ो पहाड़, तुम मंगल ग्रह के एकांत में पीछा करो चम्मच का। सघन पीड़ाओं से अलंकृत तुम्हारा मन, शब्दों और अर्थों का अंतर्द्वंद, तुम्हारे उत्सर्गों और प्रेम का अविरल छंद, यही सब बनाता है उसे जो तुम हो। इसलिए एक लेखक का आत्ममुग्ध होना नहीं शोभता प्रिय, एक लेखक का आत्ममुग्ध होना बिल्कुल नहीं शोभता।

0: और ये हैं सविता भार्गव।
1: दरवाजे के बाहर बैठकर जब तक खोलो नहीं कपाट, म्याऊ म्याऊ करती रहती है। कटोरी में दूध उसके सामने रखती हूँ, पीते हुए जरा भी चपर चपर नहीं करती। पेट की खिदमत करने के बाद वो चुपचाप पेड़ के नीचे बिखरी पत्तियों पर बैठकर धूप सेकने लगती है और अपनी देह को ऐसी आकृति देती है जैसे वो पृथ्वी की रीढ़ हो। रात में वो जरूर डरावनी लगती है, आंखें उसकी ऐसी चमकती हैं अंधेरे में, भर जाती है देह में झुरझुरी। चांद की रोशनी में उसकी रेंगती हुई छाया में प्रेत का भ्रम होता है। पता नहीं क्यों सुबह जब वो दरवाजे पर बैठ जाती है, भुला देती हूँ उसका डरावना रूप और पुचकारती हूँ उसे, मन में हो जैसे खास जगह। अचरज होता है कैसे संभाले हैं उसने अपने दो रूप। दो रूपों की वो अनूठी मिसाल है, पालतू बनने के लिए रहती है व्यग्र, लेकिन समझती है अपने को मालकिन। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह, एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुक कर खड़ा। एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। दाम्पत्य और कविता। कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। मानती हूँ शब्द का जीवन से रिश्ता है, लेकिन शब्द मानते नहीं। उनकी एक ही रट है, एकांत में दुबको या उड़ो। उन्हें नहीं चाहिए मेरा सुकून, उदासी चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए ओढ़ी हुई उदासी। जीवन जो पहचान में आए नया, उसी में देखते हैं शब्द अपनी पहचान। अब आप बताएं, दाम्पत्य सवारूं कि कविता करूं? प्रेम कविता। भरोसा। मैं अंधेरे पर भरोसा करती हूं, जो मुझे सहलाता है अज्ञात पंख से और मैं कांपती पलकों में सो जाती हूं। मैं उजाले पर भरोसा करती हूं, जो आंखें खोलते ही खिल उठता है और मैं बहती चली जाती हूं उसकी तरफ। मैं अपने इस घर पर भरोसा करती हूं जिसमें मैं रहती हूं सालों से और जो बस गया है मेरे भीतर। मैं अपने शहर की गलियों पर भरोसा करती हूं, जो आपस में जुड़कर इधर से उधर मुड़ जाती हैं और जहां खत्म होती है कोई गली, मुझे वहां मेरी धड़कन सुनाई पड़ती है। ऐ आदमी, मुस्कुराते हुए जब तुम मुझ में खो जाते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरता है, जब जानवर मरते हैं चीले मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। आखिरी कविता। माँ वापस जा रही है। माँ कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा ना लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगी है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है। धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ध्रुपद संस्थान भोपाल में। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मादाम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता और शहीदों के प्रति वे अगाध श्रद्धा रखा करती थीं। जैसे जैसे उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का ज्ञान हुआ, उनके विचार क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे। वे उन सभी गतिविधियों में भाग लेने लगी जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही थी। मुंबई में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में रहकर वे लंदन पहुंची और दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में कार्य करने लगीं। यहां उनका परिचय भारतीय क्रांतिकारियों से हुआ। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मादाम कामा ने भारत की स्वाधीनता की जोरदार वकालत की और अंग्रेजों के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया। 1908 में इंडिया हाउस में

0: भूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। फ्रांस सरकार को जब मादाम कामा की गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्हें एक पुराने किले में नजरबंद कर दिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब उन्हें नजरबंदी से छोड़ा गया तो उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। जीवन के अंतिम दिनों में मादाम कामा भारत लौट आई थी, जहां 16 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया।
1: सुनो भाइयों सुनो, ये देखो ये क्या लिखा है, आज गजभिय काका का ढाबा बंद रहेगा।
2: लेकिन कल तो हम आए थे, काका ने कुछ बताया नहीं। भाई ये तो गलत है, अचानक बंद।
3: हाँ रात को तो मैं खाना खाने आया था, पर मुझे कुछ भी नहीं बताया।
1: सवाल ये उठता है कि हमें खाना खिलाएगा कौन, महीने का आखिरी हफ्ता है, जेब नरम हो रही है सभी की,
2: आज उपवास हो जाए सामूहिक।
3: भाई मैं तो तैयार हूँ, पर पेट में दौड़ रहे ये चूहे उपवास के लिए तैयार नहीं है।
1: तो चलो किसी मंदिर या मस्जिद के सामने चलकर बैठ जाते हैं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला भी भगवान।
2: सुन लो प्यारो, हंसने से पेट नहीं भरेगा, जो बचा है वो भी हजम हो जाएगा, फिर वही हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। चलो चलकर कुछ जुगाड़ करते हैं।
3: अरे गजबिये काका तो वो आ रहे हैं देखो, पर ये उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे काका, अरे काका,
4: काका, काका, काका, ओ काका सुनो तो सही।
1: लो वो रुक गए।
4: दादा वहीं रुकना, हम लोग आपके पास आ रहे हैं।
2: राम राम काका। क्या काका, आज तो भूखा ही मार दिया, आज ढाबा क्यों बंद है?
5: अरे क्या बताऊं भैया, वो चौक वाली गली में रामदासी भाई और भगवान को प्यारी हो गई, उन्हीं के दाह कर्म से आ रहा हूँ।
3: रामदासी भाई, वो कस्तूरबा अस्पताल वाली?
5: हाँ, पूरे 100 बरस की थी वो, गरीबों और पिछड़ों के लिए जीवन दे दिया, फ्रीडम फाइटर थी वो, अंग्रेजों के जमाने में कई बार जेल गई, उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, सब देश के लिए दान कर गई।
1: तब तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग आज उपवास रख सकते हैं।
5: अरे नहीं नहीं नहीं, घर चलो, आज हम सब साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो, मुझे नहाना भी है, ये तो जीवन है और जीवन चक्र तो अपनी गति से चलता ही रहता है।
2: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
5: सुनो जरा गर्म पानी रख दो। अच्छा एक काम करो, गरम मत करो, मैं नहा लूंगा। और ये कुछ मेहमान आए हैं, अरे नवीन जरा इन्हें बैठक में बिठाओ।
6: जी भैया।
5: आप लोग बैठिए बैठिए।
3: नमस्कार नवीन भाई।
6: अरे नमस्कार भैया, नमस्कार।
3: आज आपको परेशान करने आए हैं हम।
6: अरे तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठिए लीजिए पानी पीजिए। दरअसल बात यह है भैया जी कि हमारी भाभी तो गई है मायके, अब उनके सारे काम की जवाबदारी अब मेरी हो गई।
1: नवीन भाई क्या करते हैं आप?
6: भैया मैं स्कूल में प्राध्यापक हूँ, पर आजकल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध कर रहा हूँ।
2: आइए गजबीर काका, नहाना हो गया आपका?
5: हाँ अब जरा हल्का, कुछ हल्का लग रहा है। मैंने महाराज को बोल दिया है, अभी थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाएगा।
6: भैया आप पूजा पाठ निपटा लीजिए, मैं इनके साथ बैठता हूँ।
3: तो नवीन भाई आजकल आप किस सेनानी पर काम कर रहे हैं?
6: मदाम भीकाजी कामा पर।
7: मदाम भीकाजी कामा, ये कौन थी?
6: भैया हमारे देश की एक साहसी महिला थी, जिन्होंने देश विदेश में भारत की आजादी की क्रांति की अलग जगाई थी। 24 सितंबर 1861 को बंबई में एक पारसी व्यापारी सौराबजी फ्रामजी पटेल के यहाँ उनका जन्म हुआ। पिता ने कन्या का नाम भीकाजी रखा, घर में उसे मुन्नी के नाम से पुकारा जाता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और विद्यालय का पूरा काम किए बिना ना तो भोजन करती थी और ना ही शयन करती थी। हर विषय में उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त होते थे। बोलती भी खूब थी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया करती थी और बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली थी। आगे चलकर ये मदाम कामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भैया उनकी वाणी में वो तेज था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 18 अगस्त 1907 जयंती का स्टुटगार्ट शहर।
8: अब मैं निवेदन करूंगा मादाम कामा से आए मंच पे अपने विचार।
9: कोई भारतीय राजकुमारी मालूम पड़ती है। काले आदमियों के देश भारत में भी इतना सुंदर है, आश्चर्य है।
10: बहुत प्रभावशाली और सुसंस्कृत महिला है
8: मादाम कामा।
11: ये मेरे देश का झंडा है। संसार की स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, ये मेरा नियम है कि मैं अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूँ। भारत के महान शहीदों के तप, त्याग और बलिदानों की गरिमा से युक्त स्वाधीनता के प्रतीक इस झंडे को मैंने आपके सामने फहराया है। हरा रंग भारत की धन धान्य पूर्ण हरितिमा का प्रतीक है। उस हरी पट्टी पर 8 कमल पुष्प अंकित है। हमारा भारत 8 प्रांतों में बटा हुआ है और 8 कमल भारतीय योग साधना के प्रतीक भी हैं। झंडे के बीच की पट्टी केसरिया रंग की है। केसरिया रंग की पट्टी पर हमारा ओजमय मंत्र वंदे मातरम अंकित है। सबसे नीचे की पट्टी लाल रंग की है। लाल रंग भारत में अनुराग का रंग माना जाता है। अनुराग एवं एकता की भावना के प्रदर्शन के लिए लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा अंकित है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। लाल रंग वैसे खूनी संघर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है, जिसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान मिलकर अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं अपने सम्मुख बैठे हुए संसार के सभी स्वाधीनता प्रेमी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस झंडे के सम्मान के लिए खड़े हों और इसका अभिवादन करें। धन्यवाद। आप स्वाधीनता प्रेमी महानुभावों ने स्वाधीनता चाहने वाले एक देश के झंडे का सम्मान किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त देशवासियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत जहाँ समस्त संसार की मानवता का 1/5 भाग रह रहा है, वो आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चक्की में पिसकर करा रहा है। भारत के समस्त आर्थिक साधनों का दोहन करके ब्रिटेन गुलछर्रे उड़ा रहा है और भारतीय लोग दाने दाने को मोहताज होकर सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ रह सकते हैं? मेरा प्रस्ताव है कि संसार की सारी स्वाधीनता प्रेमी जनता संसार की मानवता के 1/5 भाग भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के प्रयत्न में सहयोग दें। वंदे मातरम।
6: फिर सभी लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ ऊंचे किए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधि नहीं नहीं करते रहे, केवल ब्रिटिश के उदारवादी सदस्य हिंडमैन ने समर्थन किया। इस क्रांतिकारी महिला ने ब्रिटिश लोगों का मुंह बंद कर दिया। और भाइयों, यह झंडा भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा था जिसका डिजाइन वीर सावरकर ने किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महान नेता लेनिन से कामा का परिचय हुआ।
5: लो भाई, ये भगवान का प्रसाद ले लो। लो भाई नवीन, तुम भी लो। हाँ, अब आगे सुना।
6: एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी, तभी
9: मदाम जी कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया।
12: मेरे देश के कई गरीब भाई भूखे सो जाते हैं, उनके हिस्से का अनाज ब्रिटिश जानवरों को खिला देते हैं। मैं कैसे खाऊं? लोगों की दशा से मेरा मन भर आता है। लेकिन मुझे कमजोर नहीं होना है। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हम करेंगे। एक हिंसक को परास्त करने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है।
6: एक दिन लंदन में एक सभा हो रही थी। मदाम भीकाजी कामा मुख्य वक्ता थी। उनके मुख से शब्द नहीं अंगारे निकलते थे, जिससे अंग्रेज श्रोता तिलमिला जाते थे।
11: मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारत संघर्ष करेगा और आजादी प्राप्त करके रहेगा। मैं मानती हूँ कि भारत के लोग अनपढ़ और भूखे हैं, पर पेट की भूख से कहीं अधिक भूख उनको आजादी की है। आप लोग रूस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर भारत के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते। कारण मैं बताती हूँ। ग्रेट ब्रिटेन भारत के रक्त की बूंद बूंद चूसकर भी संसार में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत हमारे शासन में सुखी है और वो स्वाधीनता नहीं चाहता।
12: हमारे जीवन की सार्थकता देश के लिए मर मिटने में है। हम भारत के हैं और भारत भारतीयों के लिए है। मैं शेर की मांद में घुसकर ही शेर को ललकारती हूँ।
6: लंदन के घर घर में लोग भीकाजी कामा का नाम जानते थे। जासूस छाया की तरह पीछे लगे रहते थे। 1908 तक वो लंदन में रही। 1 मई 1909 को पेरिस पहुंच गई। वहां उन्होंने वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। अखबार की लोकप्रियता देखकर उसमें व्यवधान डलवाकर उसे वहां से हटा दिया गया। फिर 8 महीने जिनेवा से अखबार प्रकाशित हुआ। वहां से भी उसे हटाया गया और हॉलैंड भेज दिया गया।
5: वाह भाई वाह, देखो एक स्त्री होकर कितनी साहसी थी वो। अरे देश के लिए कहां कहां नहीं गई वो।
6: ठीक कह रहे हो भैया, अनिवासी भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए लंदन, फ्रांस, मिस्र, अमेरिका सब जगह गई और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और एक बार जब वे मिस्र की राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए गईं, तो वहां सभा में एक भी महिला को ना देखकर उन्होंने कहा,
12: मिस्र में आके मुझे आधी ही खुशी हुई है, क्योंकि मैं मिस्र का यहाँ केवल आधा प्रतिनिधित्व ही देख रही हूँ। शेष आधा प्रतिनिधित्व कहाँ है? मैं मिस्र के सपूतों से पूछती हूँ कि आप लोगों की माताएं कहाँ हैं? आप लोगों की बहनें कहाँ हैं? आप लोग ये न भूलें कि पालना झुलाने वाले हाथ ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान रहता है।
13: नवीन भाई, मदाम कामा भाषण ही देती रहती थी क्या?
6: अरे नहीं भैया, मदाम कामा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो स्वयं दूर रहकर दूसरों को आग में कूदने का उपदेश देते रहते हैं। क्रांति तो उनके खून की हर बूंद में थी। वे बराबर इस प्रयत्न में रहती थीं कि यदि अपना गला फंसाकर भी साथियों को बचाया जा सकता है तो उन्हें अवश्य बचाया जाए। एक बार की बात है, वीर सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके भारत ले जाए जा रहे थे, जब उनका जहाज 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के बंदरगाह मार्सलीस के निकट पहुंचा तो वे जहाज से समुद्र में कूद पड़े।
14: वंदे मातरम।
15: क्या हुआ क्या हुआ?
16: अरे वो देखो, कोई कूद गया समुद्र में।
15: कौन कूदा?
16: सावरकर भाग रहा है।
15: अरे सावरकर कौन था उसके? Who is the in charge?
14: सिपाहियो, shoot him, गोली मारो। सिपाहियो,
6: और सावरकर गोलियों से बचते हुए फ्रांस की भूमि पर जा पहुंचे।
13: फिर क्या हुआ?
17: क्या वो वहां से बचकर निकल गए?
6: नहीं, उन्हें आशा थी कि वहां उन्हें भागने के लिए कार लिए हुए मदाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा मिल जाएंगे। पर जब वे वहां नहीं मिले तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने वीर सावरकर को पकड़कर फिर जहाज की कोठरी में डाल दिया और जहाज को शीघ्र ही वहां से ले गए।
17: तो नवीन भाई, ये क्या पहले से योजना थी कि मादाम कामा उन्हें वहां मिलेंगी? और यदि ये योजना थी तो मादाम कामा वहां क्यों नहीं आई?
6: अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उनकी कार फ्रांस के तट पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची थी, पर उनको यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि उस दिन जहाज अपने समय से बहुत पहले ही किनारे लग गया था और समय से बहुत पहले ही वहां से चल भी दिया था। इसका कारण यह था कि जब वीर सावरकर समुद्र में कूद पड़े तो उनका पीछा करने के लिए जहाज को अपनी गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण वो किनारे पर समय से पहले पहुंच गया। और जब वीर सावरकर को फ्रांस की भूमि पर पकड़ लिया गया तो किसी अन्य मुसीबत से बचने के लिए जहाज वहां से शीघ्र ही चल दिया।
17: तो क्या मदाम कामा सिर्फ विदेशों की ही गतिविधियों में भाग लेती थी?
6: नहीं भाई, भारत में भी उन दिनों क्रांतिकारी घटनाएं बड़ी तीव्रता से घट रही थी और मदाम कामा किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ी हुई थी।
17: नवीन भाई, कोई और वाकया हो तो बताएं।
6: एक बार की बात है, नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को क्रांतिकारी युवक कान्हारे द्वारा कर दी गई। इसी प्रकार टिन्नेवाली के न्यायाधीश मिस्टर ऐश की हत्या 17 जून 1911 को एक क्रांतिकारी वांची अय्यर ने कर दी। जब दोनों मामलों में पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर पर शक हुआ।
18: Damn it! ये pistols India कैसे आए?
19: Sir, सरदार सिंह राणा and विनायक दामोदर सावरकर ने चतुर्भुज अमीन के जरिए लंदन से इंडिया भेजी।
18: What? इन इंडियन के पास पैसा किधर से आया?
19: Sir, ब्राउन इन मॉडल का 20 pistols इंडिया आया था, जिन्हें खरीदने के लिए मैडम कामा ने इंतजाम किया था।
18: कैसे भी करके इन दोनों इंडियंस को गिरफ्तार किया जाए। Arrest them!
17: मैडम कामा ने इंतजाम किया, फिर तो वो पकड़ी गई होंगी।
7: नवीन भाई, लेकिन ये पूरा किस्सा क्या था?
6: अरे सही बात तो ये थी कि वे 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें सरदार सिंह राणा और सावरकर द्वारा ही सरदार सिंह राणा के संदूक में रखकर इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत भेजी गई थी और ऊपर वाले पेंदे पर अन्य सामान रख दिया गया था।
17: फिर क्या हुआ नवीन भाई? फिर मादाम कामा का क्या हुआ? मुकदमा तो इन पर भी हुआ होगा।
6: अरे यही तो बात थी, मदाम कामा ने फिर एक कहानी की रचना की और मिस्टर जैक्सन व मिस्टर ऐश की हत्या के संबंध में कुछ जानकारी देने की पेशकश उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से की और ब्रिटिश काउंसिल के सामने मदाम कामा ने अपना बयान इस प्रकार दिया।
12: मिस्टर जैक्सन और मिस्टर ऐश की हत्या जिन पिस्तौलों से हुई है वे मैंने ही भारत भेजी थी। सरदार सिंह राणा और किसी अन्य का उन्हें भारत भेजने में कोई हाथ नहीं है। ये ठीक है कि वो संदूक सरदार सिंह राणा का था, पर वो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था और सरदार सिंह को बिना कुछ बताए ही उस संदूक का उपयोग मैंने पिस्तौलें भेजने के लिए किया। इस संबंध में सावरकर को भी मैंने कुछ नहीं बताया। वे दोनों लोग निर्दोष हैं और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है।
6: ब्रिटिश काउंसिल इस बयान को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने बयान की रसीद मदाम कामा को देकर उन्हें विदा कर दिया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मदाम कामा ने ये सारी कहानी की रचना अपने साथियों को बचाने के लिए की। ऐसी थी मदाम कामा।
17: वाह नवीन भाई, क्या जीवट महिला थी। अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल दी।
6: जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में पराधीन भारत की स्वाधीन होने की आकांक्षा को सर्वाधिक प्रचारित किया मदाम कामा ने। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग वे देश के काम के लिए कर रही थी। देश के किसी लाडले की वीरतापूर्ण गाथा सुनकर वे खुशी के मारे नाच उठती थी और देश के ऊपर होने वाले दमन तथा अत्याचार की कहानियां सुनकर वो रो उठती थी।
20: रात के 2 बज रहे हैं, आप आराम कर लीजिए, नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। खाने की चिंता तो आपको है ही नहीं।
21: और क्या खाऊं? उन अत्याचारियों ने 17 अगस्त 1909 को मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मदनलाल डींगरा को फांसी पर लटका दिया। मेरे बच्चे, वो फंदा मेरे गले में क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं मेरे गले में? दुष्टों ने उसकी हत्या कर दी। मेरे बच्चे,
6: मदनलाल ढींगरा को फांसी हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर मदाम कामा उसे भुलाए नहीं भूल पाती थी। उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। जब 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी हुई थी, तो कुछ दिन तक मदाम कामा पागलों जैसा व्यवहार करती रहीं। और भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य जब सन 1913 में मदाम कामा से मिलने फ्रांस पहुंचे, तो मदनलाल ढींगरा का जिक्र निकल पड़ा।
12: तू आदिनाश है या मदनलाल ढींगरा? तू वापस आ गया मदन? तू वापस आ गया अपनी माँ से मिलने? चल चल, हम दोनों सारे अंग्रेजों को मार देंगे। चल चल चल ना मेरे साथ, चल। वो देख, वो रहा अंग्रेज। मार उसे, मार उसे।
21: वो भाग गया, अब वो भाग गया। मार ना उसे, भाग गया वो।
6: और फिर 1914 को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर इंग्लैंड ने भारत से हिंदुस्तानी फौजें लाकर मोर्चे पर अड़ा दी। तब मदाम कामा बंदरगाह पहुंच गए।
11: मेरे वीर बच्चों, अंग्रेजों की तरफ से मत लड़ो। अरे, जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया, जिस भारत माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया, आज तुम उसी भारत माँ के मान को अपने पैरों तले रौंदने जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में बह रहा खून ठंडा हो गया है? भारत माँ के शेर अब तुम दूसरों के इशारों पर नाचोगे? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि तुम इतना भी नहीं समझते कि तुम लोग उस देश की तरफ से लड़ने जा रहे हो जिसने हमारी भारत माँ को कैद कर रखा है? यदि अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे तो भारत माता के बंधन और दृढ़ होते चले जाएंगे। याद रखो, ये युद्ध हमारा नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, तुम्हें मरने के लिए मोर्चे पर भेजा जा रहा है। अपनी मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से तुम लोग मत लड़ो।
6: इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में मित्र देश थे। उन्होंने कामा से डरकर उन्हें एक पुराने किले में कैद कर लिया। 4 तक उन्हें नजरबंद रखा गया। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ा गया। तब उनके स्वास्थ्य का सर्वनाश हो चुका था। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पेरिस की एक अंधेरी गली के मकान में बिताए। फिर उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल गई। उन्होंने बीमार हालत में समुद्री यात्रा की। जिस समय उन्होंने भारत छोड़ा था, उस वक्त वे युवती थी। अब 70 की वृद्धा होकर भारत लौट रही थी। 8 अस्पताल में रहने के पश्चात 1936 को वो इस दुनिया से चल बसी।
5: नवीन, मुझे लगता है उनकी मृत्यु किसी शहादत से कम नहीं। अरे, फांसी लगने से ही कोई शहीद कहलाए, ये जरूरी थोड़ी है।
7: चलिए, भोजन तैयार है।
6: अरे भैया, महाराज ने भोजन लगा दिया है, चलिए भोजन कर लीजिए।
3: नहीं नवीन भाई, उस महान क्रांतिकारी की गाथा सुनकर नहीं। नहीं, आज मदाम कामा की स्मृति और शहादत में हम लोगों का आज उपवास है। धन्य है भारत देश,
10: धन्य है हम कि हमने भारत में जन्म लिया।
6: प्रस्तुति स्वराज संस्थान, संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक की एकाग्रता अद्भुत थी। जब भी घर में या पास के मंदिर में भजन कीर्तन होता, विनायक खेल कूद छोड़कर घंटों वहां बैठ जाते और उनकी आंखें सम्मोहन में बंद हो जाती। उनके चाचा ने भांप लिया था कि इस बालक के भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि संगीत का कोई महान साधक छुपा है।
0: लेकिन नियति ने इतनी कम उम्र में ही विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे, तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंत्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहां न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं, बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधार्य किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत, साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और तीन सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउडस्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीड़ का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाट्य गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे। लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहाँ पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक एकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृचकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कान्हड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाध है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी, गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य गृह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यवसायिक नाट्य मंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के रूप में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन जी ने देश भर में संगीत का प्रचार किया। ओंकारनाथ जी उनकी बेजोड़ लयकारी और तान की सटीकता की हमेशा सराहना करते थे और उनके शिष्य एवं गुरुपुत्र पंडित डीवी पुलस्कर तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
1: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश
0: और मैं थी मनीषा।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: शांति पाने की इच्छा से विवेकानंद काशी पहुंचे, पर उनका अशांत मन शांत न हो पाया। उनके गुरुजी ने समाज का उद्धार करने का जो कठिन व्रत उन्हें दिया था, उसका कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे। काशी से 22 जनवरी सन 1890 को वे गाजीपुर पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि विख्यात साधु श्री पभारी बाबा से मिलने की। वहां वे अपने बचपन के साथी श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के पास ठहरे। कई बार प्रयत्न करने पर भी उन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था,
1: बड़े भाग्य से बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, वे महापुरुष हैं। आज इस नास्तिकता के युग में वे भक्ति तथा योग की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ये बात साधारण नहीं है, मैं इनकी शरणागत हुआ हूं। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है जो सभी के भाग्य में प्राप्त नहीं होता।
2: पभारी बाबा पहले से ही श्री रामकृष्ण के बारे में जानते थे। स्वामी जी को उन्हीं का शिष्य जानकर वे उनका सत्कार करने लगे। धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हो गए। जिस समय वे धर्म राज्य की उच्चारी अनुभूति तथा कठिन दार्शनिक तत् संबंधी चर्चा करने लगते थे, उस समय उनका वार्तालाप ऐसी उच्च स्थिति पर पहुंच जाता था कि अन्य उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी उसका मर्म समझ नहीं पाता था।
0: घनिष्ठ परिचय हो जाने से महान तपस्वी पभारी बाबा पर स्वामी जी बड़े मुग्ध हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या कारण है कि भगवासन श्री राम कृष्ण की असीम कृपा के अधिकारी होकर भी आज तक मुझे शांति नहीं मिली। संभव है कि इन ब्रह्म पुरुष की सहायता से मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा।
2: पभारी बाबा का जन्म काशी के निकट एक गांव में ब्राह्मण

0: गुफावासी सन्यासी का दर्शन हुआ। उनसे अद्वैत वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया। तदुपरांत दीर्घ काल तक तपस्या और तीर्थ भ्रमण कर वे गाजीपुर के पुराने निवास स्थान पर लौट आए। इसके अनंतर शीघ्र ही काशी धाम के अपने गुरु के आदर्श के अनुरूप शहर से 2 मील उत्तर नदी के तट पर एक गुफा बनाकर उसमें तपस्या करने लगे। स्वामी जी जब गाजीपुर गए तब बाबा जी दिन का अधिकांश समय गुफा में ही व्यतीत करते थे और रात में नदी के दूसरे किनारे पर जाकर वहां भी साधना निरत रहते। उनके भोजन में केवल एक मुट्ठी नीम के पत्ते अथवा कुछ मिर्च थे। वे हर प्रकार के कर्म को भोजन की आराधना मानते। इष्ट देवता को भोग निवेदन करने के बाद वे प्रसाद स्वयं न खाकर समागत साधुओं और दरिद्रों में बांट दिया करते। वस्तुतः वे इतने स्वल्पाहारी थे कि लोगों ने उनका नाम रखा था पवहारी, अर्थात पवन आहारी बाबा।
1: लोगों ने देखा कि उन्होंने गुफा में दिन पर दिन यहाँ तक कि पूरा महीना बिता दिया। उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के सोचा कि वे कैसे बचे रह सकते हैं, शायद मर तो नहीं गए। बहुत समय के बाद देखा गया कि वे जीवित हैं और ओट में रहकर के इच्छा अनुसार 2-4 बातें भी करते हैं। जीवन के अंतिम भाग में वे बिल्कुल बाहर नहीं निकला करते थे। अंत में एक दिन मांस के जलने की दुर्गंध और बहुत अधिक धुआं निकलते देख लोगों ने गुफा में झांक करके देखा। विराट होम अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने शरीर की आहुति दे दी है। उनकी आत्मा इस बीच शरीर पिंजर का परित्याग कर समाधि मार्ग के द्वारा परमात्मा में एकाकार हो गई है। यह निश्चय ही बाद की बात है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय भी पवहारी बाबा का नाम लोगों की जबान पर था और उनके दर्शन की लालसा से दूर दूरांतर से लोग आया करते थे। अतः स्वामी जी जो ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लालायित हुए तो इसमें आश्चर्य क्या है।
0: परंतु बाबा जी का दर्शन होना सहज नहीं था। गुफा के ऊपर एक कुटिया थी। वे बातें करना चाहते पर बाबा जी गुफा के द्वार पर स्थित उस कुटिया में आकर बंद दरवाजे की ओट से ही बातें करते। इसी से स्वामी जी ने भी आसानी से दर्शन नहीं पाया। बाद में बहुत प्रयास करने पर सफल मनोरथ होकर 4 फरवरी को प्रमदा बाबू को लिखा,
2: बड़े भाग्य से बाबा जी का दर्शन हुआ। वास्तव में वे महापुरुष हैं। बड़े आश्चर्य की बात है किस नास्तिकता के युग में भक्ति एवं अद्भुत क्षमता के वे अलौकिक प्रतीक हैं। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जो हरेक के भाग्य में नहीं। बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहां ठहरूं। वे मेरा कल्याण करेंगे। अतएव इन महापुरुष की आज्ञा अनुसार मैं कुछ और दिन यहाँ ठहरूंगा।
0: बाबा जी के पास ही रहने के अभिप्राय से स्वामी जी ने इसके बाद गगन बाबू के एक उद्यान भवन में रहने का संकल्प किया और स्वामी अखंडानंद को एक चिट्ठी लिखकर सूचित किया।
2: यहाँ एक सज्जन है जिनके छोटे बगीचे में एक सुंदर बंगला है। मैं वहां ठहरना चाहता हूँ। वो बगीचा बाबा जी के निवास स्थान से निकट है। वहां बाबा जी का एक भाई रहकर साधुओं की सेवा करता है। मैंने उसी स्थान पर भिक्षा ली।
1: बाबा जी उद्यान भवन के समीप गंगा के किनारे एक बड़ी सुरंग के अंदर समाधिस्थ होकर के पड़े रहते थे। स्वामी जी उन दिनों 2 महीने तक कमर के दर्द से पीड़ित थे। इतने निकट रहने पर भी बाबा से नियमित मिलना संभव नहीं हो पाता था, परंतु बाबा जी आदमी भेज करके उनकी खोज खबर लिया करते थे। स्वामी जी को एक और असुविधा यह थी कि वे इस समय उदर रोग से ग्रस्त थे। भिक्षा से प्राप्त भोजन सामग्री उन्हें पचती नहीं थी।
0: गाजीपुर में निवास करते समय स्वामी जी से अनेक अंग्रेजों की बातचीत हुई थी। गगन बाबू ने अफीम विभाग के उच्च पदाधिकारी रॉस साहब से उनका परिचय करवा दिया। रॉस साहब ने भी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न कर उनसे हिंदू धर्म के अनेक तत्वों को जान लिया। एवं होली के संबंध में उनसे एक लेख लिखने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने लेख लिख दिया। इस प्रकार स्वामी जी की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर रॉस साहब ने स्थानीय जिला जज पेनिंगटन साहब से उनका परिचय करवा दिया। स्वामी जी से हिंदू धर्म की व्याख्या सुनकर जज साहब इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उनसे इंग्लैंड जाकर उसका प्रचार करने का अनुरोध किया। कर्नल रिबेट कनार्क नामक एक अन्य अंग्रेज सज्जन से भी वेदांत विषय पर स्वामी जी की लंबी चर्चा हुई। स्वामी जी ने सुना था कि पभारी बाबा ने योग मार्ग की साधना द्वारा सिद्धि लाभ की थी, अतः उनके हृदय में पभारी बाबा से योग सीखने की इच्छा जागृत हुई। वे बाबा जी को पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आपको मुझे योग की शिक्षा देनी ही होगी। अत्यंत आग्रह देखकर पभारी बाबा ने भी हाँ कह दिया। स्वामी जी अब शुभ दिन की प्रतीक्षा करने लगे।
1: एक दिन रात्रि में स्वामी जी पभारी बाबा की गुफा में जाने के लिए तैयार हुए। श्री राम कृष्ण या पभारी बाबा, प्रश्न मन में आते ही उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। संदेह पूर्ण चित से विवेकानंद भूमि पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण की असीम कृपा, गंभीर प्रेम, स्नेहयुक्त व्यवहार एक एक करके उनकी स्मृति में आने लगे और इससे उनका व्यथित चित आत्मधिक्कार से भर गया। एकाएक उनका अंधकार में कक्ष दिव्य आलोक से उद्भासित हो उठा। स्वामी जी ने अपने सजल नेत्रों को उठा करके देखा, दिव्य दर्शन। उनके जीवन के आदर्श दक्षिणेश्वर के वही अद्भुत देव मानव उनके सामने खड़े हैं। उनके उज्जवल तथा विस्तृत नेत्रों में स्नेह, करुणा एवं व्यथापूर्ण भत्सरना थी। विवेकानंद अवाक रह गए। प्रहर तक पत्थर की मूर्ति की तरह वे जमीन पर बैठे रहे। प्रातःकाल हुआ, मन में संकल्प विकल्प होने लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण का वह दर्शन मस्तिष्क की दुर्बलता का फल तो नहीं था।
0: अगली रात को वे फिर से पभारी बाबा के पास जाने को तैयार हुए, पर आज भी वही पहले की देखी हुई ज्योतिर्मूर्ति उसी तरह उनके सामने खड़ी हो गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार 21 दिन इसी प्रकार व्यतीत होने पर अंत में वे मर्म वेदना से भूमि पर लोटपोट होकर 8 स्वर में बोल पड़े,
2: नहीं प्रभु, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। हे राम कृष्ण, तुम ही मेरी एकमात्र आराध्य हो, मैं तुम्हारा ही दास हूं। मेरी इस मानसिक दुर्बलता के अपराध को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो।
1: कुछ दिनों के बाद उनके द्वारा रचित गीता में शीर्षक कविता के कुछ अंश में हम इस घटना का थोड़ा बहुत आभास पाते हैं।
2: बाल केली करता हूं तुमसे मैं, और क्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना कभी चाहता हूं, किंतु निशा काल में शैया के शिरोभाग में देखता हूं तुमको मैं खड़े हुए चुपचाप, आंखें छल छलाई हुई, हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर। उसी समय बदल जाता भाव मेरा, पैरों पड़ता हूं पर क्षमा नहीं मांगता, तुम नहीं करते हो रोष। पुत्र हूं तुम्हारा, कहो और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। प्रभु हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा मेरे हो, कभी देखता हूं तुम मैं हूं, मैं तुम हूं।
1: जब वे स्टेशन से गाजीपुर से उस पार ताड़ीघाट स्टेशन पर उतरे तो वह समय दोपहर का था। स्वामी जी के सामानों में एक तीसरे दर्जे का टिकट, एक कंबल और पहनने के लिए कुछ गेरवा कपड़े थे, साथ में और कुछ, यहां तक कि एक जल पात्र भी नहीं था। चौकीदार ने उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छांव में नहीं बैठने दिया, बाहर कर दिया। विवश होकर के वे जमीन पर कंबल बिछा करके विश्रामागार के बाहर एक खंबे से टिक करके बैठ गए। आसपास में लोग थे, उनमें एक व्यापारी स्वामी जी के बिल्कुल सामने छावनी के नीचे दरी पर आराम से बैठा था। स्वामी जी को क्लांत देख करके अनेक प्रकार के व्यंग कर रहा था। वह व्यक्ति और उसके कई साथी स्वामी जी के साथ रेलगाड़ी में एक डब्बे में बैठकर आए थे और रास्ते में भी वह ऐसा करने से बाज नहीं आ रहा था।
0: यहाँ आने पर भी उसका व्यंग नहीं रुका। प्लेटफॉर्म पर छाया में आराम से बैठकर वो पुनः उपदेश झाड़ने लगा। अरे देखा, पैसे की क्या शक्ति है, तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, उसका फल भी देखा, और मैं रुपए पैसे कमाता हूँ, उसका सुफल भी देख लो। ये कहकर वे अपने साथ लाए खाद्य पदार्थों को खोलकर खाने लगा और स्वामी जी को वे सब वस्तुएं दिखा दिखा कर कहने लगा, ये सारी पूड़ियां, कचौड़ियां, पेड़े, मिठाइयां क्या बिना पैसे के मिल सकती हैं? स्वामी जी सब कुछ देख और सुन रहे थे तथा बिना कुछ कहे सारे अपमानों को सहन करते जा रहे थे।
1: उसी समय अचानक एक दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसके दाएं हाथ में थी एक गठरी, एक लोटा तथा बाएं हाथ में एक गगरी जल और एक दरी थी। स्टेशन पर इधर उधर घूमकर फिर स्वामी जी के निकट आकर के उसने कहा,
3: अरे बाबा जी, आप धूप में क्यों बैठे हैं? छांव में चलें। मैं आपके लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आया हूँ, दया पूर्वक ग्रहण कीजिए।
0: स्वामी जी तो अचानक विश्वास ही नहीं कर सके। व्यंग करने वाला व्यापारी भी तब आश्चर्य से अवाक हो गया। नवागत व्यक्ति द्वारा स्वामी जी को बार बार भोजन के लिए अनुरोध करने पर स्वामी जी ने कहा,
2: भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो, शायद किसी दूसरे को देने के लिए आकर भूल से मेरे पास चले आए हो।
3: नहीं नहीं, आप ही हैं वो बाबा जी जिन्हें मैंने देखा है।
2: मतलब अब तुमने मुझे कब देखा?
3: महाराज मैं आपसे कभी मिला तो नहीं।
2: फिर?
3: मैं हलवाई हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। दोपहर को भोजन के बाद सोया था, उसी समय सपने में देखा कि श्री राम जी आकर मुझसे कह रहे हैं कि मेरा एक साधु स्टेशन पर खड़ा हुआ बिना खाए दुख भोग रहा है, कल से ही उसने खाया पिया नहीं है, तुम तुरंत जाकर उसकी सेवा करो। महाराज मेरी नींद खुल जाने पर भी दूसरे ही क्षण से मैंने मन का भ्रम समझकर करवट बदल कर सो गया, परंतु श्री राम कृपा कर पुनः आए और मुझे सचमुच में धक्का मार कर उठा दिया और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही करने का आदेश दे दिया। तब महाराज मैं बिस्तर त्याग कर उठा और तुरंत कुछ पूड़ियां और सब्जियां बनाई और सुबह की बनाई हुई कुछ मिठाइयां, जल और तम्बाकू लेकर जल्दी स्टेशन आ गया।
2: मैं ही वो साधु हूँ, तुमने कैसे जाना?
3: महाराज पहले मुझे भी ये संदेह हुआ था, इसलिए यहाँ आते ही एक बार चारों ओर घूमकर देख लिया, किंतु किसी दूसरे साधु को नहीं देखकर मैं समझ गया महाराज कि आपके अतिरिक्त कोई और साधु हो ही नहीं सकता।
2: अच्छा अच्छा, तब ठीक है,
3: चलिए महाराज छांव में चलिए।
2: धन्यवाद भाई।
3: अरे नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, सब राम जी की लीला है।
0: इसके बाद उसने स्वामी जी को छाया में बैठा कर भोजन करवाया, भोजनोपरांत हाथ पर जल डाल दिया तथा चिलम भर कर दिया। व्यापारी अब तक अवाक होकर सारी घटनाएं देख रहा था और कान लगाकर सब सुन रहा था। अंत में उसे और संदेह नहीं रहा कि स्वामी जी एक उच्च अवस्था संपन्न महात्मा हैं। उसे भय भी हुआ कि इनका अपमान करने के कारण उसका भयंकर अनिष्ट होना निश्चित है। तब उसने अनुनय हृदय से प्रणाम करने के बाद अपने किए गए अपराध के लिए स्वामी जी से क्षमा याचना की।
1: स्वामी अभिदनंद जी की अस्वस्थता का समाचार पाकर के स्वामी जी गाजीपुर छोड़ चले। काशीधाम पहुंचकर उन्होंने अभिदनंद जी की चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था की। जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो स्वामी प्रमदा दास जी को उनकी टहल में नियुक्त करके स्वामी जी बाबू प्रमदा दास मित्र के बगीचे वाले मकान में रहने लगे। इसी समय एक दिन स्वामी जी को श्री रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त बाबू बलराम बसु के परलोक सिधारने का समाचार मिला। इससे स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। गुरु भाई के वियोग की व्यथा से कातर होकर के स्वामी जी को विलाप करते देख प्रमदा बाबू ने कहा,
4: ये क्या स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, शोकाकुल होना आपको शोभा नहीं देता।
2: आप क्या सोचते हैं, कि प्रकृत सन्यासी में हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं होती। प्रकृत सन्यासी दूसरों के लिए साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सहानुभूति का अनुभव करते हैं। विशेषता मैं तो मनुष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, और फिर वे मेरे गुरु भाई जो थे, हमने एक साथ ही श्री रामकृष्ण के चरणों के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी। उनके वियोग में जो मैं कातर हूं, इसमें विचित्र बात क्या है? पत्थर की तरह अनुभूति शून्य सन्यासी का जीवन मेरे लिए इप्सित नहीं है।
0: बलराम बाबू की मृत्यु के बाद शोकाकुल बसु परिवार को सांत्वना देने के लिए तथा वराहनगर मठ की व्यवस्था आदि के लिए स्वामी जी काशी से कलकत्ता लौट आए। इसी बीच 25 मई को मठ के एक मित्र तथा सहायक एवं श्री रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्य सुरेश चंद्र मित्र का देहांत हो गया। इससे अब मठ का खर्च चलाने के लिए स्वामी जी चिंतित हो गए। 2 महीने कलकत्ता व वराहनगर में रहकर स्वामी जी ने मठ का खर्च चलाने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद उनके मन में भारत भ्रमण की इच्छा फिर तीव्र हो उठी। एक ओर तो नवगठित श्री रामकृष्ण संघ के प्रति तीव्र ममत्व बोध और दूसरी ओर सत्यकाम सन्यासी की निसंग साधना का आवेग, इन दो विरुद्ध भावों के संघर्ष में विचलित होकर स्वामी जी ने मन ही मन संकल्प किया कि सभी बंधनों को, यहाँ तक कि गुरु भाइयों के निस्वार्थ प्रेम बंधन तक को छिन्न करना होगा। जिस शक्ति के बल पर श्री रामकृष्ण के महान आदर्श का प्रचार किया जा सकता है, उसी शक्ति को प्राप्त करूंगा, अन्यथा इसी चेष्टा में प्राण त्याग दूंगा। बस यही संकल्प उनके मन में दृढ़ हो गया।
1: उसी समय श्री रामकृष्ण भक्तों की माता श्री शारदा देवी भगीरथी के पश्चिम तट पर घुड़सी गांव में निवास करती थी। स्वामी जी मठ छोड़कर जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा से वहां गए। श्री माता जी के पवित्र चरणों की वंदना करते हुए गंभीर श्रद्धा में उन्होंने कहा,
2: जब तक श्री गुरु के इच्छित कार्य को मैं संपन्न न कर लूंगा, तब तक नहीं लौटूंगा। तुम आशीर्वाद दो, मेरा संकल्प सिद्ध हो।
0: सन 1890 ईस्वी के जुलाई मास में मठ भवन छोड़ने के बाद स्वामी जी ने पहले भागलपुर में वकील मथुरानाथ सिंह के मकान पर कुछ दिन व्यतीत किए। वहां से विदा लेकर वे अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ देवघर आए। वहां स्वामी जी ने श्रद्धे राजनारायण बसु से भेंट कर एक दिन उनके साथ धर्म चर्चा की। देवघर से काशी आकर उन्होंने प्रमदादास बाबू का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय उन्हें हिमालय आकर्षित कर रहा था, अतएव वे अधिक दिन काशी में ना रहे। विदा लेने से पूर्व वे प्रमदादास बाबू से कह गए,
2: जब मैं लौटूंगा तो समाज के ऊपर बम की तरह फूट पड़ूंगा और समाज मेरे पीछे चलेगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें कल आप सुनेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 189 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:20 से। वतन का राग आप सुनेंगे प्रातः 8 बजे। कल का कार्यक्रम केंद्रित होगा महर्षि अरविंद की जयंती पर। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन का प्रसारण भी कल आप सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम योग संवाद, जगत की भ्रमरूपता का निरूपण कल हम प्रसारित करेंगे। विशेष कार्यक्रम में 9:30 से आप सुनेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास यात्रा। परिक्रमा कार्यक्रम का समय होगा दिन में 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। कल का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा सरदार अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसागर में नीना श्रीवास्तव का गायन। 11:30 पर समय होगा युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थे कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर देश का चैनल, देश के लिए। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता है। सभा समापन की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।